0: और बृहतरंध्र जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्मजीव जीवाणु का रोल क्या है। तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है और उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है, तो उसको क्या करता है ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है। अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु, जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्मजीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम एन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो उस वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजो एस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रोडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम आवश्यक प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ? आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमिडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज़ है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्जीन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं, और ये रिलीज करने से क्या होता है पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है और उसके साथ साथ एक ACCDMNase एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, और वो क्या करता है तो इथिलीन, जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्म जीव जीवाणु है ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं बीटी बैसुलस थुरिंजेनेसिस ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज में बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो या रोगों को कंट्रोल करने में हो या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है वायु मंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा वसा की मात्रा प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज़ हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसी को किसान इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है राइजोबियम, राइजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट पीएसबी के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ से फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो पीएसबी बायो फर्टिलाइजर है और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है जिससे देखा गया कि लगभग 15-40 kg तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे, उस मात्रा में उसका क्वांटिटी घटाएंगे जिससे क्या होगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जैसे चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में ये जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20-25 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का। तो वो क्या करते हैं उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है, जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5-7 cm 8 cm लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 kg प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 kg ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10-15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे और उससे देखा गया कि लगभग 30-40 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30-40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो भी क्या, वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में, और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेबिलिटी बढ़ेगा, और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25-30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं, और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं, और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए, किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा, उसको हम थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे, और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में, या सब्जी के केस में, या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचरा जो 20-21 दिन का बिचरा हो जाता है उसको लगाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी आप, हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचरा का बंडल 50-100 बंडल जितना सूटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे, और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो, ये मेथड, ये विधि है जिसको हम बिचरा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70-80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2-4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें। तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट होकर के जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना, या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना, या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना, या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं, और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में, और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ। इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उस मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर, आपने सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: के आगे 0 0 के पीछे 0, आगे 0 पीछे 0। टिको क्यों है इतने 0?
3: 0 नहीं बल्कि मैं उन 0 डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
2: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इनक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
2: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यावसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञ का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
0: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
2: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
0: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
2: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
0: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
2: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे टीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
0: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
2: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जब जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है, फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
0: मैम आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
2: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो छह चरण से गुजरते हैं, यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिड

0: स्तर पर विस्तार करेंगे। तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है, एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता छह स्टेज होते हैं, छह चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया। ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है?
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में, और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहाँ से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर, बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगे?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से जो हमारे युवा वर्ग हैं उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की एक नई दिशा देने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार। उन्नत कृषि
1: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
5: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
5: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन. जी हाँ, जो ले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर. और जहाँ तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी. तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी खास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है. ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की. बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है. और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. बांस क्या होता है, तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे. बांस जो है वो एक, इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दीजिए.
1: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसके हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है. बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है. और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि भी वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये. और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है. देश का लगभग 60% जो बांस है वो का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है. और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की, उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुलगैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में, ये सारी प्रजातियां हैं.
0: जी जी. बांस लगाने की विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे.
1: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है, पहला है बीजों की सीधी बुआई. ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं. इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं, और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है, और एक सप्ताह के अंदर ही एक पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है. फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं, और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर उसमें हम लोग ताज़ा बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी सफाई करते हैं. अगर हमें उस समय पे नहीं लगाना है तो उसको हम लोग सुखा कर वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं. बोने से पहले बीजों को 48 घंटे पानी में भिंगो कर रखना चाहिए, और फिर जिस पानी में उसे भिंगाए हैं हम लोग, उसमें हम लोग को कवकनाशी को मिला देना चाहिए ताकि बीजों पर कवक का कोई भी प्रभाव ना हो. जो सीधे बीजों की बुआई हेतु उपजाऊ भूमि में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की खुदाई करके बीजों को लगाना चाहिए, और जो हम लोग उसको लाइन वाइज लगाते हैं तो उसमें हर एक लाइन के बीच में 4 से 6 मीटर का अंतराल होना चाहिए, और बोने के बाद हम लोग उसको हल्की मिट्टी से ढक देते हैं. दूसरी विधि जो है जिसमें हम लोग लगाते हैं बीजों को, तो उसमें है पौधा रोपण। इसमें हम लोग सबसे पहले पौधे को नर्सरी में उपजाते हैं, जिससे कि जो हम लोग इस विधि से जब लगाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियां बना के जो ऊपर क्यारियों में हम लोग इसको लगाते हैं, और एक सप्ताह में ही जो नन्हे पौधे बांस के उगते हैं उसको हम लोग थैलियों में डालकर, जिसको हम लोग पॉलीथीन बैग भी कहते हैं, उस पॉलीथीन बैग में डालकर उसको हम लोग हल्की सिंचाई देते रहते हैं। इस सामान्यतः 1 से 2 माह में जो पौधा है वो रोपण हेतु तैयार हो जाता है, और फिर हम लोग को जहाँ भी उसके उसे लगाना है उसके हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। जो जिन गड्ढों में हम लोग को लगाना है, जो हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं, वो 30x30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और हम लोग को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि जहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जब बारिश हो तो वहाँ ज़्यादा जल जमाव की परेशानी ना हो, और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे जो ये चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, तो हम लोग को उसका भी ध्यान रखना है ताकि इसका जो हम लोग अच्छे से इसको लगा सके। तीसरी विधि जो आती है बांस को लगाने में, उसमें हम लोग प्रकंदों द्वारा रोपण। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकंद जो निकलते हैं बांस से, तो हम लोग प्रकंदों को समूह में भी लगा सकते हैं और एकल प्रकंद में भी हम लोग लगा सकते हैं। एकल प्रकंद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग बिना किसी इसको नुकसान किए हुए लगा सकते हैं, और इसमें हम लोग एक उचित दूरी हम लोग को लगाना होता है ताकि जो जब बांस का पौधा बड़ा हो तो उसमें किसी तरीके का दोनों एक दूसरे, जो दो पौधे निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। जो अगली विधि है वो है ऑफसेट रोपण। ये सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसके लिए 1 से 2 वर्ष की आयु का कल्म सबसे उपयुक्त होता है। यदि कल्म अधिक बड़ा है तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 से 1.5 सेंटीमीटर उसको तिरछा काट कर जिस प्रकंद से वह पैदा हुआ है उसे जड़ सहित उसी आकार में हम लोग लगाते हैं, और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम उसमें एक आँख हो। प्रकंद को इतनी ग्रीवा से काटा जाता है ताकि जो हम लोग कटाई कर रहे हैं तने का, उसमें कोई भी दरार या फिर जो मातृ तना है उसमें कोई भी नुकसान ना हो, और प्रकंदों को हम लोग एक आद्र युक्त बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो। उसमें कलम के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेजी से बढ़े और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं, और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं, और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं, और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है, और जहाँ हम लोग को लगाना है वहाँ पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है, और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियाँ जिससे हम लोग बांस की खेती आसानी से कर सकते हैं
2: जी।
0: इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं, बांस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
1: बांस की बात करें तो बांस में जो प्रमुख रोग है, सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है, जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उस उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की जरूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है, इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन, भारत और जापान में। और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सीन है, थिया बेडाजोल है, इन फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूट मोट, जो कि भारत, चीन, कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है, जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा, मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो ये एफिड्स हैं वो प्राकृतिक शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ब्लैक मिल्ड्रू, ये जो है आप सब इसमें भी क्या होता है कि काले रंग की चूर्ण, आपको ऐसा लगेगा कि पत्तों के ऊपर एक चूर्ण, काले रंग का चूर्ण आ गया है और ये भी डंठ जैसे जैसे संक्रमण फैलता जाएगा ये पत्तियों के ऊपरी सतह से नीचे निचली सतह पर और फिर जो छोटी छोटी शाखाएँ होती हैं उन पर ये फैलने लगती हैं। इसके लिए भी हम लोग जो फफूंदी नाशक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट में देखें कि इसको कैसे हम लोग रोकेंगे तो इसके लिए हम लोगों को जो कैनोपी होती है जो कैनोपी है पौधे की उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले, कहीं भी उनको छाया ना हो, क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है।
0: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
1: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है तो इस वजह से जैसा हम पहले भी हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में और छप्पर जो होता है जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी, और बहुत सारे कृषि यंत्र, और जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक जैसे जैसे हम लोग पानी की बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स में हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा आपका अलमीरा, और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है जो जो कास्ट है जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है। तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि मॉडल्स कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
0: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे?
1: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार के तरफ से। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है, और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदवार के साथ साथ उचित किस्मों जो उचित किस्म है बांस की उनको भी बढ़ाना, फिर बांस आधारित हस्तशिल्प शिल्प को भी बढ़ावा देना, पारंपरिक विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी जो है वो किसानों के बीच पहुंचाना, और कुशल और अकुशल व्यक्तियों को विशेष रूप से जो बेरोजगार युवक हैं उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बांस मिशन का हम लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार, नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना। बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती मुनाफे की हो सकती है। किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का विकास करना और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको समाप्त करते हुए सीधे जो ये राष्ट्रीय मिशन है इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना ताकि सबसे ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी खेती पर एक विशेष चर्चा। आशा करते हैं आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी और अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार श्रोताओं, ये है 90.8 MHz, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और मैं आप सभी को बता दूं कि हम उन्नत कृषि की बात करते हैं और ऐसे में जैविक खाद की बात करना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि जैविक खाद हमारी फसलों के लिए सुरक्षित हैं, हमारी मिट्टी के लिए सुरक्षित हैं, हम सभी के लिए सुरक्षित हैं। तो जैविक खाद आप कैसे बनाएंगे, घरेलू उपाय क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक हमारा जो आज है, विषय है, वो है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय। और इस विषय को लेकर, जी हाँ, मृदा विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सोनल कुमारी हमारे साथ हैं, जो आप सभी को एक पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में, घरेलू उपाय के द्वारा आप जैविक खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैविक खाद होता क्या है, क्या है ये।
6: मैं सोनल, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की सॉइल साइंटिस्ट हूँ, उस पद पे कार्यरत हूँ। और मैंने आज का विषय चुना है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय क्या हैं, इसको कैसे हम घर पे ही रहकर बना सकते हैं। ये आज के जरूरत समय में सारे लोग जाने, बहुत जानकारियाँ हमें गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे ये जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म का अगर कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो हमारे जो भी रिमोट विलेजेज है वहाँ पर लोग एटलीस्ट रेडियो के अभी भी शौकीन है, रेडियो को सुनते हैं। अगर आप मेरी बातें आप तक पहुँच रही है तो आप जरूर इसको सुनेंगे, कैसे हम घर पे रहते हैं, हमारे पास जो भी किचन वेस्ट अवेलेबल हैं, हम आपके पास उतने जगह जमीन नहीं है, तो कैसे उस लिमिटेड रिसोर्स में हम अपने चीज़ों को, अपने जैविक जो हमारे जैविक चीज़ें हमारे हैं, जो हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जो हमारे प्रकृति में डेली उसको उसको एज अ कचरा समझ के, वेस्ट समझ के उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, उसका कैसे हम सही यूटिलाइज कर सकें, उससे कैसे हम एक जैविक खाद का बना सकें, उसका सही से उसका संरक्षण कर सकें, सही से उसको स्टोर कर सकें, एंड देन उसके फर्दर हम जो हमारे फसल है, हमारे जो हमारे सीजनल हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो भी हमारे जो भी हम साग सब्जी घर में भी अपने लगाते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसमें ही प्रयोग कर सकें। तो हमारा पहला हमारा आज क्वेश्चन हमारे लिए है, जैविक खाद क्या है। पहले हम जैविक खाद के बारे में जानेंगे, जैविक खाद आखिर है क्या, हम क्यों जैविक जैविक सबको आज के डेट में बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एवरीवन इज टारगेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी या ऑर्गेनिक फार्मिंग वो जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, और जैविक खेती में जही सी जो खाद प्रयोग करते हैं वो जैविक खाद होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैविक खाद जो है एक प्राकृतिक खाद है, जिसमें और कुछ नहीं, कोई भी रासायनिक पदार्थ या हमारे जो होते हैं उसमें प्रयोग नहीं किया जाते हैं, जो भी हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पौधे हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, हमारे जो भी जैविक और इसके अलावा जो हमारे अन्य जैविक अवशेष हैं, उस जैविक अवशेषों से उसको सड़ा गला कर, और या जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रयोग से जो खाद तैयार किया जाता है उसको ही हम जैविक खाद कहते हैं। यह पूर्णतः कम्प्लीटली जिसको बोलते हैं ये प्रकृति रूप से ही प्राप्त की जाती है। जैविक खाद में जैसे हम जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे जो मुख्य पोषक तत्व सत्र है, हमारे इसेंशियल जिसको बोलते हैं, उसको प्रदान करने को, जिससे हमको पौधे प्रदान कर सकें उसको, इसके लिए हम डालते हैं अपने पौधों के लिए, वैसे ही हमारा जैविक खाद है। जैविक खाद में जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सारे, जब ये विघटन इसकी हो जाती है तो सारे इसमें आवश्यक पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, और जब इसको हम अपने मिट्टी पर अप्लाई करते हैं, मृदा पर अप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारे फसल है उसको उस सारे आवश्यक पोषक तत्व को वहाँ से प्रदान करते हैं, और वो इसके साथ साथ वो तो प्रदान करते ही करते हैं। और जैविक जैसे मैं बोली रही, बिल्कुल कम्प्लीटली पूर्णतः यह प्राकृतिक रूप से होता है, तो मिट्टी का जो हमारा गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है, उसकी जो हमारे प्रॉपर्टी है उसकी जो गुणवत्ता है उसको कभी घटाता नहीं है और बढ़ाता ही है।
5: जी, अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने की विधि की, तो कैसे बनाया जा सकता है घर पर।
6: हाँ, अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, हम जहाँ भी जिस लोकेशन में रहते हैं, वेदर हमारा चाहे हमारा बहुत बड़ा लोकेशन हो, छोटा लोकेशन है, चाहे बहुत छोटे से घर में आप रह रहे हैं, 1 BHK घर में रह रहे हैं, गांव में बहुत कम छोटे किले हैं, बहुत हमारे जो मार्जिनल किसान हैं, हमारे बहुत छोटे स्तर के जो किसान हैं, उनके पास उतने जगह जमीन नहीं होते हैं, तो उनके पास जो ही रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ से तो वो अपना जैविक खाद बना ही सकते हैं। क्योंकि किचन जो हमारा रसोईया हम जब खाना पकाते हैं तो बहुत सारे हमारे फल साग सब्जी उसके जो छिलके आते हैं तो उस साग सब उसको हम क्या, अगर आपके पास मवेशी है तो मवेशी को देते हैं, मवेशी का वो भोजन हो जाता है, नहीं तो अगर नहीं है तो वो ऐसे आप वेस्ट कर देते हैं, उसको वेस्ट करने से बेटर है उसको हम कंपोस्ट खाद तैयार कर लें, जैविक खाद तैयार कर लें। तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन कुछ कुछ विधियों के बारे में बताऊँगी मैं जिसको आप बहुत आसानी तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं, जिससे कौन कौन सा हमारे विधियाँ हैं जिसको हम घर पर आसानी से तैयार कर सकें। एक खाद हम जिसको बोलते हैं जिसको हम घर पर ही तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं किचन वेस्ट खाद, जिसको किचन वेस्ट खाद मतलब कंपोस्टिंग करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स है कंपोस्टिंग। किचन वेस्ट जो हमारा है, किचन वेस्ट का मतलब जो हम रसोई में हमारे वेस्ट चीज़ मिलते हैं, मैंने बोला जैसे ही बोला आपको फल होते हैं, साग होते हैं, सब्जी होते हैं, इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं उसको तो हम उतार फेंकते हैं ना, उसको तो हम नहीं खाते हैं, उसको हम कंज्यूम मनुष्य नहीं करता है, तो उसका प्रयोग हम खाद बनाने में कर लेंगे, उसी से जो खाद तैयार होता है उसको हम किचन वेस्ट खाद कहते हैं। अब इसके लिए जैसे मान लो आप साग सब्जी कुछ भी सब्जी घर में बनाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं उसके लिए एक रेसिपी लोग बोलते हैं ना, रेसिपी के लिए हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स हिंदी में अगर बोले तो सामग्री, क्या क्या उसमें सामग्री लगेंगे। अगर हम पनीर प्याजा की बात करें तो हम बताते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वैसे ही हमारा खाद है, खाद को भी हम जब तैयार करते हैं ना उसके लिए हमें कुछ कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में बोले तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो ऐसे ही हम जब किचन वेस्ट खाद की बता रहे हैं तो हम पहले बताएंगे आपको क्या क्या इसमें सामग्री आपको लग जाएंगे बनाने के लिए। पहले तो आपको जो भी हमको रसोई में हमारे कचरा, जिसको कचरा ना बोले तो बेटर होगा, कचरा बोले बैड टर्म्स हो गया उसको, हमारे लिए हम उसको वेस्ट समझ रहे हैं, बट इट इज नॉट वेस्ट, वो वेस्ट नहीं है, वो हमारा धन है, उससे हम एक बढ़िया बहुत बढ़िया चीज बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो कचरा ना बोल के मैं रसोई में जो भी मेरे फल सब्जियां जो चाय पत्ती होते हैं, अंडे के छिलके हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े आपके हैं, जो भी हम सब्जियां खाते हैं उनके जितने छिलके हैं आप उनको क्या करें एक जगह इकट्ठी कर रखें। और पेड़ पौधे कहीं भी आपको देखते सूखी पत्तियां मिल जाती हमें, और नहीं भी कुछ हुआ था हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं बहुत सारे कागज को ऐसे वैसे फाड़ कर फेंक देते हैं, बहुत सारे हम जिसके हम न्यूज़पेपर आते रहते हैं उसके भी टुकड़े मिल जाते हैं, उसकी भी वो सब चीज़ बहुत बर्बाद होते हैं, तो कागज को टुकड़े को भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हैं। और मिट्टी थोड़ी मिट्टी तो कहीं भी आपको सबको अवेलेबल हो सकते हैं, वेदर वो बहुत ज़्यादा एक मेट्रोपोलिटन सिटी में रह रहे हों, अर्बनाइजेशन में अर्बन एरिया में रह रहे हैं, या रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में रह रहे हैं, इतने चीज़ें तो आपको किसी को अवेलेबल हो जाएंगे। तो सामग्री क्या क्या आपको लगेगी, जो भी हमारे रसोई के हमारे जो भी रसोई समय जो बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स आप बोल लो, हमारा खाना बनाने के बाद जो भी बचते हैं, मतलब फल सब्जियां के छिलके हो गए हैं, अंडे के छिलके हो गए हैं, चाय पत्ती बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाते हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े हो गए हैं, हमारे साग सब्जी के जो भी हमारे छिलके हो गए हैं, कागज के टुकड़े हो गए, सूखी पत्तियां हो गई, थोड़ी सी मिट्टी है हमारी सामग्री हो गई। और इसकी विधि बनाने के लिए जब ये चीज़ हम बोलते हैं कुछ चीज़ हमें बनाना है, अगर मैं बोलूँ चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो इट मीन्स हमें कुछ ना कंटेनर चाहिए इसको बनाने के लिए, उसको हवा में तो हम नहीं बना सकते ना, कंटेनर आपको लगेंगे। तो ऐसे ही है जब हमको इसको बनाना है, जब इसकी सामग्री की बात करें तो जाहिर सी बात इसके लिए हमको कुछ बनाने की चीज़ चाहिए, तभी तो हम इसको बना पाएंगे। वेदर मेरे पास चाहे मेरे पास कंटेनर रहे, एक कंटेनर का हम व्यवस्था कर लें, नहीं तो किसी पास अगर जमीन है तो गड्ढा खून ले, और गड्ढा भी ऐसा खोलना है, कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो, जिससे हवा आ भी सके जा भी सके, और नमी भी उतना ही मेंटेन रख सके जितने हमें नमी चाहिए। ये चीजों को ध्यान में हमको रखना है। फिर वो क्या, अगर मान लो आपके पास नहीं ज्यादा जमीन है, छोटा सा कोई प्लास्टिक का कंटेनर उसमें छोटे छोटे आपने छेद कर दिया जिससे हमारा हवा पास होता रहे, हवा आता रहे जाता रहे, जिसको हम इंग्लिश वर्ड्स में बोले तो एरेशन बोलते हैं, मतलब हवा का आदान प्रदान होता रहे, और हमारा मॉइस्चर भी जिसको नमी बोलते हैं हिंदी में वो मेंटेन रहे, ये चीज़ें का हमें व्यवस्था कर लेना है। फिर क्या करना है हमको, उस जो हमारा कंटेनर हमने लिया है, जो हम डब्बा एक बोल लें अगर हिंदी में बोलते हैं, डब्बा लें, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा किचन वेस्ट है, जो हमारा रसोई में जो हमारे आ रहे हैं, जो भी हमारे सब चीज़ के बचे हुए जो जिसका मैंने बताया जिक्र किया, उसको एक लेयर डाल देना है आपको, उसको पहले बिछा देना है, पहला लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारी थोड़ी मिट्टी है उस थोड़ी मिट्टी को डाल देना है, उस फिर सेकंड लेयर जिसको बोलते हैं सेकंड लेयर, उस सेकंड लेयर मिट्टी के लेयर को डाल देना है। फिर से इसी मिश्रण को आपको 4-5 लेयर करके ऐसे बनाने हैं, और फिर से इस मिश्रण को क्या करना है आपको, हर 2-3 दिन पे या उसको आपको हिलाते रहना है। हिलाना क्यों है, हिलाने के पीछे भी रीजन है, उसमें जो एरेशन होता है, उसमें जो हवा है, जो नमी है, जितना चाहिए उतना उसमें मेंटेन रहे, उसमें जितना हमें जरूरत है उतना उसमें रहे वो, इसलिए हिलाते रहना उसको, और उसको ज़्यादा भी नमी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, इसको कोशिश करना है कि थोड़ा छायादार जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट सूर्य का धूप ना पड़ता हो, और थोड़ा सूखा रखें नमी भी उतना ही रहे जितना जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं पानी उसमें से निकल रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं जैसे हम बोलते हैं, नहीं, नमी जितनी जरूरत है उतनी ही, कोशिश करें हल्का भुरभुरा टाइप सूखे टाइप हल्का रहे, और फिर इसको ढक कर रखना है, और यही इस ढक के बस आपको डालते रहना। आप देखेंगे 2 से 3 महीने जैसे होगा ये भीतर ये खाद तैयार हो जाएगा। जैसे आपने जो डाला था जिसके बड़े बड़े टुकड़े थे, आप वो टुकड़े को देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए हैं, और सर हल्के भूरे से काले रंग में बदल जाएंगे, और इनकी गंध से भी पहचान सकोगे कि ये हमारी खाद क्या है, तैयार हो गई है। ये तो पहला हमारा रहा जो हमारा किचन खाद, जिसको हम किचन वेस्ट खाद बोलते हैं। और दूसरी भी विधियां हैं जिसमें अगर मान लो इसी खाद में प्रयोग करने में मैंने अगर जिसको केचुआ होता है, केचुआ का प्रयोग कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस खाद को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको, हम केचुआ खाद बोलते हैं। तो इसकी भी सामग्री की हम बात कर लेंगे, क्या क्या हमें सामग्री इनको लगेगी बनाने के लिए। इनकी सामग्री में आपको केचुआ लगेगा ही लगेगा, जब मैंने केचुआ खाद ही बोला तो केचुआ से ही तैयार होगा। रसोई का हमारे जो कचरे हो गए, हमारे जो भी हमारे हो फल साग सब्जी जितने अंडे के छिलके वो हो गए, वो सारे लगेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, पहले वाली विधि में बताया। दूसरी सूखी पत्तियां भी बताया था, गोबर भी मैंने आपको बताया था। गोबर आप याद रखिए, गोबर जब भी डालना है कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर डालिएगा, कि ताजा गोबर जो रहता है ना उस पर जल्दी हमारे जो सूक्ष्म जीव है ग्रो करने का ज्यादा चांस रहता है, अटैक ज्यादा करते हैं वो, तो कोशिश कीजिए 15 से 20 दिन पुराना गोबर ले लीजिएगा आप। और नमीदार मिट्टी जो हमारी होती है वो मिट्टी का थोड़ा हमको प्रयोग करना है। इसके लिए भी हमें क्या लगेंगे, आपके पास डब्बे हैं तो वो सही है, अगर नहीं है तो आप एक बक्सा ले भी सकते हैं, उसको छेद नुमा बना देंगे जिसे हमारा हवा का आदान प्रदान होता रहे। और फिर उसमें हमें क्या करना है, एक नमी की मिट्टी जो हमने बोला उसको बिछा देना है। फिर उसमें हमें क्या करना है, आपको जो हमारे रसोई के हमारे कचड़े आए सूखी पत्तियां उनको क्लियर बना देना है। फिर हमारे जो केचुए लगे, केचुए के हम मैं ये आपको यहाँ नहीं बताऊंगी कितना स्क्वायर फीट का बना रहे हो, जब हम कभी अपने जाम कॉमर्शियल इसकी खाद की प्रोडक्शन करते हैं तो इतना स्क्वायर फीट के लिए हमको इतना 1500 से 2000 केचुए छोड़ने पड़ते हैं, उसमें लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ हमें कोई तय नहीं है, हम अपने घर के लिए बस जो डेली यूज में हम जिसको बर्बाद करते थे फेंक देते हैं रोड पर, ऐसी कचरा फैलता है देखने में हमारा अच्छा नहीं लगता है, जो भी हम जगह पर रहते हैं गंदगी फैलती है, उससे अच्छा है कि इसका हम खाद का प्रयोग कर लें। तो जैसा आप कंटेनर ले लें उसके अनुसार अपनी सूझबूझ को प्रयोग करते हुए आप केचुओं का प्रयोग कीजिए। कितना इसमें अगर बड़ा सा कंटेनर है मान लो 200-500 लीटर का कंटेनर है तो आप उसमें कितना केचुआ जाने जिससे मेरा केचुआ बन जाए। केचुआ क्या करता है, जो भी हम ये सब डाल रहे हैं हमारे रसोईया से जो हमारे पदार्थ मिले हैं, जो हमारे किचन वेस्ट मिले हैं, जो हमें सूखी पत्तियां हम डाल रहे हैं, उसको केचुआ क्या करता है, मट्टी हम जो नमीदार डाले उसका ये भोजन का है, भोजन का स्रोत है। और ये जो भोजन के स्रोत में ये खाता है उसको तो खाएगा तो क्या करता है, जब ये उसका कास्ट निकलता है खाने के बाद जो उसकी कास्ट निकलते हैं जिसको हम उसका क्या बोल सकते हैं, हाँ, तो जो मैं बता रही थी केचुए का क्या ये भोजन का स्रोत है। तो भोजन का स्रोत है, जब भोजन करता है तो जाहिर सी बात वो भी मलमूत्र त्याग करता है, और उससे जो मलमूत्र का त्याग होता है और उससे जो खाद बनते जाते हैं ना, वो देखोगे कास्ट जिसको बोलते हैं अर्थ होम कास्ट बोलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक खाद तैयार कर देता है, और ऐसे ही करके इसका भी लेयर तैयार कर देते हैं। और हर इसको ढक कर हमें रखना है कि दूसरा जो सूक्ष्म जीव है उसमें ग्रो ना कर जाए। और थोड़ा इसको अगर आपको गोबर मिलता है तो गोबर डाल दें, नहीं तो थोड़ा नमी मेंटेन करने के कागज जो अवेलेबल होता है ना, तो कागज को थोड़ा गीला करके भी आप फैला सकते हैं। और इसको आप क्या करें, ढक कर रखें, हर 15 दिन पे थोड़ा आपको उलट फेर करना होगा, जिसे हमारा प्रॉपर एरेशन जिसको हवादार नमी हवा उसकी सब वर्तमान जितनी हमें चाहिए संतुलित मात्रा में सब उसमें अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वहां पर मौजूद रहें। और 15 दिन पे जैसे उलट फेर कर रहे हैं तो, और ऐसे ही करना है हमको 2-3 महीने तक। और 2-3 महीने के लास्ट में आप देखेंगे ना ये केचुआ खाद जो हमारा जैविक खाद केचुआ खाद जो हमारा था ये बिल्कुल अच्छे तरह से अपने हल्के भूरे रंग, इसका भी रंग वैसा ही होगा हल्के भूरे रंग का, इससे काला रंग में अब बिल्कुल दानेदार में ये बदल जाता है, जो अच्छा वाला खाद जैविक खाद बनता हमारा केचुआ के माध्यम से जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं। और 2-3 महीने में खाद हमारा तैयार करते हैं कर सकते हैं। ये हमारा केचुआ खाद के बारे में हो गया। इसके अलावा हमारे और चीज हैं, बहुत सारे हमारे पारंपरिक खाद तैयार किए जाते थे जो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे पहले जमाने में, जब हम जीवामृत करते थे हमको वो सब हम तैयार करते थे। और अभी भी हम जब जैविक खादी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, जैविक खेती की बात करें, तो सारे प्रयोग हमारे फिर से हमारे ज्ञान में आ गए हैं और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जहां तक ये बात हमारी नहीं पहुंच पा रही उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, हम जहां रहते हैं हर हमारे अड़ोस पड़ोस में अवेलेबल है, बस उनको हमको अपने आँख उठाकर देखने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने देखने की जरूरत भी है और इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने प्रयोग में लाने की जरूरत है। प्रयोग में लाने के बाद हमें जहां इसको उपयोग करना है उसको उपयोग करने की बात है। ये बहुत चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं बट उसको हम ना कभी एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तो हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है एंड देन उसको एक्शन में भी लाना है। और तीसरा मैं आपको बताने जा रही थी वैसा जीवामृत, ऐसे तो बहुत तरीके हैं हमारे बनाने के, और तीसरी मैं बता रही हूँ जीवामृत जिसको बड़े इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, मैं उसी खाद को लिस्ट की हूँ यहाँ पर। तीसरी खाद के बारे में बता रही हूँ आपको, जीवामृत। ये जीवामृत कैसे तैयार करते हैं? जीवामृत सब समझ ही रहे हो क्या होगा, जो हमारे हमारे मवेशी होते हैं, हमारे गाय भैंस ये सब होते हैं, तो उनके चीज़ों से हमें तैयार करना है। जिसके यहाँ मवेशी ओवेशी है, तो आपको इसके लिए क्या सामग्री लग जाएंगे? गोबर लग जाएंगे, गोमूत्र लग जाएंगे, गुड़ लग जाएगा, थोड़ा बेसन लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगा। जब इसके बनाने की विधि क्या है ना, जब आप इसकी बनाने की विधि बने, तो जो इसका अनुपात मैंने बताया ना, अनुपात अभी बोला नहीं है, बस सामग्री में जो बताया, इसका अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अनुपात में आप गोबर ले रहे हो, कितने अनुपात में गोमूत्र ले रहे हो, कितने अनुपात का आप गुड़ का प्रयोग कर रहे हो, बेसन का प्रयोग और मिट्टी का प्रयोग कर रहे हो। अब बनाने से पहले आती है बात आती है कि आप कितने लीटर क्वांटिटी में, जैसे ये आप यूजुअली क्या होता है, इसको मिट्टी पे भी प्रयोग करते हैं और पौधे के ऊपर भी प्रयोग करते हैं। ये जो जीवामृत बनाते हैं हम ना, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसको हम बोलते हैं तरल जैविक खाद है, ये तरल नुमा होता है। तो कितने लीटर पानी में इस घोल को तैयार करना चाहते हो, बात ये आती है। तो मैं आपको सामग्री का जो लिस्ट दूंगी 200 लीटर के बेसिस पे दे रही हूँ, आप अपने अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हो, आप अपने अनुसार इसका गणना करके कैलकुलेशन करके आप बढ़ा सका घटा सकना है। अगर मैं 200 लीटर की कैपेसिटी के अनुसार बता रही हूँ आपको, 200 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करने हैं, तो 200 लीटर में कितना किलो गोबर लगेगा? 200 लीटर के लिए आप इसको जरूर कहीं आप होगा सुन रहे होगे, आप इसको मेंशन करना। अगर 200 लीटर पानी में आप घोल तैयार करना चाहते हो, उसमें 10 किलो हमको गोबर डालना है। गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए, 15 से 20 दिन, जैसे उसका जो हमारा तापमान हो ना, जो ताज़ा गोबर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें तापमान में कमी आ जाए, कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। 10 किलो आपको गोबर प्रयोग करना है और सेम मात्रा में 10 किलो आपको गोमूत्र यूज करना है। और सेम मात्रा, देखो गोबर और गोमूत्र दोनों का मात्रा क्या हो गया, सेम हो गया। 200 लीटर के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 10-10। गुड़ बोला, बेसन बोला, तो ये गुड़ और बेसन का भी मात्रा अनुपात जो है एक सेम रहेगा, एक एक रहेगा। 1 kg गुड़ हो जाएगा, 1 किलो, 1 किलो आपका बेसन हो जाएगा। और थोड़ी मिट्टी प्रयोग करना है हमें, थोड़ी मिट्टी को उसमें 200 लीटर पानी ले लेंगे और घोल को तैयार कर लेते हैं। और इस मिश्रण को हम क्या करते हैं ना, ढक कर रखते हैं। हर 2 से 3 दिन पर इसको हम क्या करते हैं, एक लकड़ी बड़ा सा ले लेते हैं, अगर ड्रम में तैयार कर रहे हो तो, जो हमारे ड्रम होते हैं, और 2-3 दिन पे इस लकड़ी, हमारे पास बड़े जो लकड़ी होते हैं कहीं भी ये मिल जाते हैं, उस घोल को हमें मिश्रण को घुलाते रहना है, जिससे प्रॉपर हमारा जो मिक्सिंग हो रही है ना, जब इसका विघटन तैयार हो, जो हम डाल विघटित होता है, तो प्रॉपर विघटित हो, पूर्णतः हो जाए ये। और 5 से 7 दिन में ये जीवामित्र आपको देखोगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 5 से 7 दिन ओनली लेगा, 5 से 7 दिन में ये जो जीवामित्र हमको तैयार हो जाएगा। और इसका तैयार हो जाने के बाद आप इसका प्रयोग डायरेक्ट आप फसलों पर छिड़काव करके कर सकते हो। ये ना ओनली पोषक तत्व प्रदान करता है पौधों को, इसके अलावा आप जानते हो गोमूत्र, गोबर में बहुत पावर होता है, इसमें जो उसमें रोग लगते हैं, जो उसमें हमारे कीटनाशक कीट लग जाते हैं, उससे भी ये पौधा को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये बहुत चीज़ों के लिए फायदेमंद होता है। ये जो मैं सरल विधियाँ थी, वो विधियाँ को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की हूँ अपने तरफ से।
5: अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है?
6: हाँ, अब बात आती है कि अब तो हम बनाने की विधि हमने बता दिया, क्या क्या सामग्री लगेंगे, क्या लगेंगे, अब आते किन किन बातों को हमें ध्यान रख रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, इन छोटी छोटी बातों को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा जैविक खाद घर पे ही हम तैयार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने अगर आपको बोला है कंटेनर, आपके पास उतनी जगह जमीन नहीं है जहाँ आप गड्ढे खोद कर बना सकें, प्लास्टरिंग कर सकें, प्लास्टिक मतलब एक सीमेंटेड आप एक एरिया तैयार कर लो उसके लिए, गड्ढा नहीं आपके पास है तो कंटेनर लेना आता है। कंटेनर आप जब भी लोगे ना, जो हम कंटेनर सामग्री में, जो हम सामग्री को डालने के लिए कंटेनर का प्रयोग या डब्बे का प्रयोग जो भी करते हैं, उसका चयन सही होना चाहिए। जो भी हम जैविक खाद हमको बनाना है, तो कभी भूल कभी जैसे हम कर तो लेते हैं ऐसा, बहुत जगह आप देखो जैविक खाद प्लास्टिक का या धातु का या कोई भी रासायनिक, जो हमारे धातु मतलब वो रासायनिक चीज है, उसका प्रयोग लोग कर लेते हैं। आप उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, उसका ना करें, आप इसका प्रयोग ना करें। और दूसरी बात है, जब हम खाद बनाने के दौरान जो हम कंटेनर पर्याप्त कंटेनर लेते हैं ना, उसमें कभी कभी बहुत जगह देखा गया कि उसमें पर्याप्त छेद नहीं किया हुआ रहता है, अगर नहीं बनाया आप तो उसमें पर्याप्त हवा और नमी बना नहीं रहता है। और पर्याप्त अगर हवा नमी नहीं बना रहेगा तो खाद हमारा पूर्णतः विघटित नहीं होता है और खाद मेरा अच्छा तैयार नहीं होता है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हमको सूखापन या बहुत ज़्यादा अधिक नमी में खाद में हमको बनाए नहीं रखना है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही बनाना है, मीन्स बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है उसको और बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं रखना है कि जिससे हमको वहाँ से पानी निकलने लगे। तो अगर ऐसा होगा कंडीशन तो आपकी जो खाद की गुणवत्ता है ना, वो प्रभावित हो सकती है। चौथी बात आपको क्या रखना है, हमको जो जैविक खाद की मैंने आपको सामग्री बताया उसका अनुपात आप बिल्कुल सही रखिएगा। जैसे हम जैविक कचरे के लिए हमारे जो हमारे किचन का वेस्ट हो गया, सूखी पत्तियां हो गई, मिट्टी हो गई, इसका अनुपात सही बना कर रखिए कितने कितने जाएंगे, जिससे हमारे खाद अच्छे प्रयोग में आ सके। और चौथी बात है, पांचवी बात यह है, जब हम खाद बनाने के सही स्थान का चयन करते हैं ना, वो स्थान का चयन सही कीजिएगा। वो स्थान जो होना चाहिए आपको डाइट, जो हमारे सूर्य की धूप होती है वो जगह का कभी ना चयन करें। वो जगह कोशिश करें कि छायादार हो, सूखे स्थान पर हो। सूखे स्थान पर हो मतलब ऐसा जगह ना चयन करें जहाँ पानी बहुत जल्दी लग जाता हो, पानी लग जाते हैं, जहाँ उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाता है, थोड़े पानी वहाँ पर लगे रह जाते हैं, तो ऐसा स्थान का प्रयोग कभी ना करें। जगह छायादार होनी चाहिए, अगर धूप आ रही है तो धूप आए, धूप भी जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए, ये कोशिश करनी है। ये पांच छह बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं।
5: इसके बाद जैविक खाद को हमें स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे स्टोर?
6: अब आते हैं बनाने का, तो ये हो गया, हम जैविक खाद को स्टोर कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि जिस कंटेनर में आपने बनाया उसी में छोड़ दोगे, क्योंकि आपने एक लॉट तैयार कर लिया था। किचन जो हमारे वेस्ट होते हैं उनको कंटिन्यू प्रोसेस है, हम डेली खाना बनाते हैं, डेली हमारे वेस्ट जनरेट होते हैं किचन से, तो आप और बनाना चाहोगे। जो आपने खादें बना लिया, अब उसको कैसे उसको हम उसको स्टोर करें, संरक्षित करके अपने जगह पर रखें, जिससे हम आगे चल के हम अपने फसल के लिए जो भी हम मतलब छत पे उगाते हैं साग सब्जी उसमें भी प्रयोग कर सकें, चाहे थोड़े से जमीन हमारे वहाँ पर भी फल साग सब्जी उगा रहे हैं उसमें भी प्रयोग कर सकें। तो इसको स्टोर कैसे किया जाए? आपको जैविक खाद को क्या करना है, एक सूखे और छायादार स्थान पर रखें जो बन गए हमारे, और इसे ढक्कन वाले जो कंटेनर होते हैं ना उसका प्रयोग करें, जो बन गया है उस डब्बा में डाल दें और उसका ढक्कन का प्रयोग जरूर करें। अगर ढक कर रखोगे ना, जितने सूक्ष्म जीव उस पर ग्रो ना करें, अब बाकी चीज़ में जिसका गुणवत्ता हमारा मेंटेन रखें, और नमी से बहुत ज़्यादा नमी नहीं उसमें होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी, ऐसा नहीं कि जब खाद को आप हाथ में ले उसे पानी निकलने लगे, थोड़ा सा भी दबाया तो पानी निकल जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, नमी से भी उसको बचा कर रखना है। और कंटेनर कैसा प्रयोग करना है, जो डब्बा है उसका जिसका ढक्कन वाला होना चाहिए, उसमें आपको जो हमारे खाद तैयार हो गए उसमें रखें, नमी से बचा कर रखना है। और यही सरी इस तरीके से आप ना जो हमारे बने हुए खाद हैं, हमारे जो कंपोस्ट खाद तैयार हो गए हैं उस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। लंबे तक सुरक्षित रखेंगे तभी आप अपने फसलों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। छोटी सी विधि है कि उसको कैसे प्रयोग, कैसे इसको स्टोर कर रख सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे जूट सैक, जूट वाली बोरा उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, कट लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है, हमारा नमी बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, कहीं थोड़ी बारिश वारिश हुई तो नमी वो बहुत इजीली ऑब्जर्व करता है। जो हमारा खाद बनाते हैं ये बहुत पोरस नेचर का होता है, तो बहुत जल्दी पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, ये शोषित कर लेता है। तो वो कोशिश करना है कि आप ऐसा कंटेनर लें जिसमें छेद वेद कहीं ना हो, उसमें रख दें, ढक्कन लगा दें उसका, नमी बहुत ज़्यादा ना जाए, नमी उतना ही जितना ऑलरेडी बना था उतना ही नमी उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उसमें होना चाहिए, तभी आप लंबे समय के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं।
5: जी, जैविक खाद के उपयोग के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ फायदे होंगे अगर किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करते हैं।
6: जैविक खाद करने के उपयोग और फायदे तो आपको इस बातें से समझ में आ रही है, मैंने पहले ही बोला जैविक खाद मतलब प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक खाद बोलने का मतलब जहाँ प्राकृतिक चीजों का जिसके जो हमारे यूज में नहीं है उस चीजों का प्रयोग करके हम बनाते हैं उसको हम जैविक खाद कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक चीजों का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो पहला फायदा तो हमारा यही हो गया कि रासायनिक जब इसका प्रयोग से हम खेती करेंगे तो हमारा खेत कैसा होगा, वो रासायनिक मुक्त खेती होगा हमारा। इसमें जैविक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं तो जो जैविक खाद का प्रयोग करें फसल भी वही खाएगा, क्योंकि फसल का भोजन वही है। तो जो हम और उस फसल में रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो फसल आ जाते हैं, जो फसल का इल्ड आता है वो हम खाते हैं, तो जैविक चीज़ें जो हमारे हैं वो हम तक पहुँचेंगे, तो हम भी शुद्ध, पौधा भी शुद्ध, हमारे मृदा भी शुद्ध, हम भी स्वस्थ, तीनों चीज़ स्वस्थ हो गए हमारे। हम जो चेन में बोलते हैं ना, एक फूड चेन से हम कनेक्टेड होते हैं, तो फूड चेन हमारा बिल्कुल शुद्धता हो गया, बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें आ गई, ये फायदा हो गया। प्रकृति का संरक्षण हो ही रहा है, प्रकृति संरक्षण आप इसे समझ सकते हो, जहाँ रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये जैविक प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना रहे हैं, ऐसी के प्रयोग मिट्टी में कर रहे हैं, और जो चीज़ मिट्टी में जाती है वो फसल में जाती है, फसल में जो जाती है वही हम खाते हैं, वही जानवर तक पहुंचती है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है, और वही मिट्टी में जो चीज़ डालते हैं तो ये पोषक तत्व, तो मैंने पहले ही बताया पोषक तत्व तो प्रदान करता है फसलों को, जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व तो चाहिए पौधों को वो प्रदान करता है। अब बहुत से हमारे पोषक तत्व होते हैं पौधे उसको वहाँ से ग्रहण किए तो किए, नहीं तो वो बहकर पानी में चला जाता है। अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे पानी भी प्रदूषित होता है, हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है, तो जब हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो जो वहाँ से बहकर पानी में जाएगा तो वो भी प्राकृतिक है, वो पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं होगा, मिट्टी प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा जलवायु प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा हम मनुष्य हम जानवर कोई भी प्रदूषित नहीं होगा, सब प्योर प्राकृतिक रहेंगे। ये हमारे फायदे हो गए, जो हमारे मतलब हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें आते हैं सब सुरक्षित रहेंगे, सब प्राकृतिक तरह से स्वस्थ रहेंगे, धनी रहेंगे।
5: तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय के बारे में। तो इसके क्या कुछ फायदे हैं ये आपने जाना। तो आशा करते हैं कि जैविक खाद की तरफ आप भी जोर देंगे, इस प्राकृतिक खाद की तरफ, और अपने भूमि, अपने खेत को, आप अपनी मिट्टी को आप स्वस्थ बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
9: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
10: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
10: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
9: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ

0: वाले सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन।
0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में

0: विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की परती।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
4: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
5: हाउ आर यू?
6: Thank you.
5: Congratulations.
6: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine.
6: Thanks for coming in. Please come in. Please.
4: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
3: Come. Yeah. Hey.
4: Come.
3: John, please come here.
4: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओ।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूँ, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरे दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
9: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
11: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
12: हाँ।
11: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
13: आग का गोला?
11: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
13: सूरज।
11: सूरज, वाह, एकदम ठीक भाई। तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
13: रोज बहुत आसान पूछते हो।
11: ओफो, क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
13: कि अगली बार में बहुत मुश्किल।
11: हाँ, मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी, फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली ही नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
13: हाँ।
11: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
13: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
11: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
14: वो तारा होता है।
11: हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक।
15: वो रात और दिन भी बनाता है।
11: एकदम सही, एकदम सही।
14: हमें धूप भी देता है।
11: बिल्कुल, धूप भी देता है। सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
13: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
11: हाँ, हमें क्या मिलता है पता है उससे?
13: विटामिन डी।
11: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो। विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है? तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
14: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
11: हाँ बिल्कुल,
13: पेड़ों को खाना भी देता है।
11: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
13: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
11: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
13: हाँ,
15: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
11: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
13: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
11: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
13: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
14: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
11: ना।
14: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
11: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता।
13: हाँ।
11: तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
13: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
11: बहुत बड़ा होता है,
14: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
11: हम क्योंकि कहीं
13: दूर होता है, इसलिए
11: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
13: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
11: हाँ,
14: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
11: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
12: सर्दी।
11: ओह, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
13: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
11: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
14: नहीं
11: है।
14: करता।
11: सूरज आग का गोला, लेकिन
12: सूरज आग का गोला
11: फिर भी जीवन दाता है।
12: फिर भी जीवन दाता है।
11: धरती काटे चक्कर इसके।
12: धरती काटे चक्कर इसके।
11: लगे ये चलता जाता है।
12: लगे ये चलता जाता है।
11: सर्दी गर्मी बनते इससे।
12: सर्दी गर्मी बनते इससे।
11: ये दिन रात बनाता है।
12: ये दिन रात बनाता है।
11: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
12: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
11: सूरज ये
12: कहलाता है।
11: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
13: मौसी, कर पहेली आज ही बता दो।
11: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
14: जल्दी आना मौसी।
11: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
13: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
16: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं
13: आऊँ? वो भी दस पूछेंगे।
16: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
17: उमंग उमंग उमंग उमंग
18: सीरो के आगे सीरो, सीरो के पीछे सीरो, आगे सीरो पीछे सीरो। क्यों है इतने जीरो?
19: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
18: लेकिन ऐसा क्यों?
19: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
18: तो इसका हल क्या है?
19: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
18: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
19: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली की ओर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में पेश हैं, यानी उन्नत कृषि कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, तो ज़रूर आपके लिए कुछ खेती बाड़ी की बातें होंगी, जिससे कि आज के हमारे जो युवागण हैं वो भी जुड़ें और वो भी समझें खेती से क्या क्या आप संभावनाएँ आपके लिए लाई जा सकती हैं और कैसे आप खेती कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इससे जुड़े आप जान सकते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसे, और बहुत ही खास विषय लेकर हमारे बीच आज डॉक्टर AK झा हैं, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। हमारा विषय है जल कुंभी के प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। तो आज डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे हम इसे जलकुंभी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें इसके बीच में आएंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
6: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, खास करके जैविक खाद है, जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब, गोबर और फसल अवशेष का प्रयोग करके
5: जी
6: केचुआ की सहायता से बनने वाला खाद, जो कि सामान्यतः भूरे रंग का या काले भूरे रंग का होता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
5: जी,
6: वर्म मतलब केचुआ और उसकी सहायता से बनने वाला खाद यानी वर्मी कंपोस्ट ये होता है।
5: यानी गोबर और जो केचुआ है उससे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, और हमारे फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, आज के परिवेश की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है?
6: देखिए, वर्मी कंपोस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि यदि हम समान गोबर की खाद की बात करते हैं, तो उसकी तुलना में इसमें पोषक मान काफी होता
5: बिल्कुल
6: है, और साथ ही साथ में इसमें एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बताऊं, जो गोबर की खाद है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होगा, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1% से ज्यादा नाइट्रोजन होगा। फॉस्फोरस भी गोबर की खाद में सिर्फ 0.2% होगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में यदि देखते हैं तो इसमें 0.8% से ज्यादा आपको फॉस्फोरस होगा। पोटास भी उसमें यदि हम गोबर की खाद में देखते हैं तो सिर्फ 0.5% होगा, यानी आधा परसेंट, और यदि हम पोटास इसमें देखते हैं वर्मी कंपोस्ट में, तो उसमें 0.8% के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो आपका पोषक मान है वो ज़्यादा है, यानी कि कम मात्रा में हम खाद डाल करके, वर्मी कंपोस्ट डाल करके ज़्यादा पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा पहले था, क्या था कि हमको गोबर खाद की बहुत ज़्यादा मात्रा लगती थी।
5: बिल्कुल,
6: यह जरूरी हो गया हुआ है कि हम ऐसे जैविक खाद की बात करें जिसमें कम मात्रा में हमको प्रयोग करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमको पोषक मान की पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके, जिससे कि कम मात्रा में ही हम अपने खेती को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, हम अपनी मिट्टी को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत है।
5: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें आपने बताई कि आजकल जो है क्यों बढ़ रही है इसकी मांग, लेकिन अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में, तो क्या जल कुंभी का उपयोग हम कर सकते हैं, और अगर उसकी जगह पर हम पुआल का उपयोग करें तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा?
6: देखिए, एक तो पहली बात कि पुआल आदमी जानवर को खिलाने के लिए भी प्रयोग करता है, तो उतना पुआल तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग फसल जलाते भी हैं। लेकिन ये जो जलकुंभी है, ये हमारे यहाँ खास करके यदि देखें तो यह एक प्रॉब्लमेटिक वीड की तरह है।
5: अच्छा।
6: समस्या पैदा करने वाला ये खरपतवार है, जो हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित करता है। तो यदि हम यह बात देखें कि जो हमारे पास फालतू में पड़ा हुआ है, यदि हम सिर्फ बिहार की बात देखते हैं, तो बिहार में लगभग आपको 9.12 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो कि वेटलैंड है, और वहां पर जो ये वाटर हाइसेंथ यानी जलकुंभी जो है वह एक प्रॉब्लमेटिक वीड है। तो इसका यदि हम प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में, तो एक तो ये बात है कि यह फायदेमंद है। दूसरी बात, यदि हम पोषक मान की बात यदि देखते हैं, तो पोषक मान भी इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यदि हम इसमें देखें जलकुंभी में, जलकुंभी में नाइट्रोजन आपको ज्यादा है यानी 2.373% है, जबकि यदि हम पुआल को देखें तो पुआल में सिर्फ 0.61% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस इसी तरह से देखें तो जलकुंभी में जहां पर 0.583% है वहां पर पुआल में सिर्फ 0.1% पाया जाता है। पोटास लगभग लगभग दोनों में बराबर पाया जाता है। जस्ता यदि देखते हैं तो 250 ppm के आसपास पाया जाता है जलकुंभी में, जबकि 17.7 यानी 18% के आसपास आपको जस्ता पाया जाता है पुआल में। और इसी तरह से हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा लगभग 1824 ppm पाया जाता है ये जलकुंभी में, लेकिन सिर्फ 57.9 ppm पाया जाता है आपको पुआल में। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें पोषक मान ज्यादा है, और कोई जो केचुआ की खाद बनाते हैं बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो कहीं बाहर से तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या पोषक मान लाता नहीं है।
5: बिल्कुल,
6: जो आप सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में यदि ज्यादा मात्रा में पोषक मान है तो उससे बनने वाला जो बर्मी कंपोस्ट है उसमें ज्यादा पोषक मान होगा। तो इसीलिए यह यदि हम जलकुंभी से बनाए तो उसका पोषक मान ज्यादा होगा। साथ ही साथ जो यह एक समस्या ग्रस्त हमारे पास ये है जो हमारे जल संसाधन को प्रदूषित कर रहा है, उसका एक उपचार भी हो जाएगा, एक उपयोग भी हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आप पुआल के स्थान पर, जैसे मान लीजिए 2 भाग आप प्रयोग करते हैं पुआल और 3 भाग प्रयोग करते हैं आप गोबर की खाद, उसके स्थान पर यदि 2 भाग यदि आप जलकुंभी को प्रयोग करें और 3 भाग गोबर का प्रयोग करें, तो उससे जो बनने वाला बर्मी कंपोस्ट होगा उसका पोषक मान ज्यादा होगा। इसीलिए जिसकी संभावना बहुत बढ़िया है, और आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि इसका हम प्रयोग करें।
5: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हम समझ गए कि जल कुंभी का प्रयोग अगर हम ज़्यादा करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तो बिहार के परिवेश में जो देखा जाता है जल कुंभी का प्रयोग लोग करना चाहते हैं, इसको तो इसकी क्या संभावनाएँ हैं?
6: अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बिहार में लगभग 9.12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो समस्याग्रस्त है, खास करके वेटलैंड है। तो उस वेटलैंड में आपको जल कुंभी वैसे ही पैदा हो जाता है, और जलकुंभी वहां पर पैदा होकर के वहां न तो कोई फसल पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके जल संसाधन है उसको भी प्रदूषित करता है। तो बिहार में काफी ज्यादा जगह पर आप देखते हैं कि ये जलकुंभी है और काफी ज्यादा मात्रा में है। तो यदि हम बिहार की बात करें, वहां के जल संसाधन को हम ठीक ठाक करना चाहते हैं, उसके क्वालिटी को ठीक रखना चाहते हैं, तो वहां पर काफी इसका इसकी संभावना है, काफी इसका स्कोप है। यानी इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक तरफ तो हमको गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट बनता है, और साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो जो हमारा प्रदूषण की समस्या है उससे भी निजात मिलता है। यानी इसकी काफ़ी संभावना है बिहार के परिवेश में।
5: जी, तो इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं बिहार के परिवेश में। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे हैं जलकुंभी का, तो इसका प्रयोग अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो पोषक मान में क्या अंतर आता है?
6: अभी हमने आपको बताया है कि आपने देखा भी है, सुना भी है कि ये जो जलकुंभी है, जलकुंभी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं इसकी मात्रा पुआल के तुलना में ज्यादा है। यानी उससे यदि हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान जो होगा वो ज्यादा होगा। अब जैसे हम एक बात कहें कि हमने केवल गोबर से यदि बनाया हुआ है या जो जलकुंभी है और इसको जैसे हमने बताया कि 40% आप जलकुंभी ले लीजिए और इसको क्या कहते हैं 60% आप गोबर लीजिए, तो उससे यदि आप बनाते हैं तो उसके पोषक मान में कितना अंतर होता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि ये जो पैडी स्ट्रॉ है
5: जी,
6: उसको यदि बनाएंगे तो आपको उतना पोषक मान नहीं मिलेगा। सिर्फ गोबर से यदि हम बनाते हैं तो 1.667% अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 1.5% के आसपास उसमें आपको नाइट्रोजन रहता है। यदि हम वही जलकुंभी और इसका जो अभी हमने बताया 2 भाग जलकुंभी और 3 भाग जो आपका गोबर है इसको मिला करके बनाए तो वहां 2% के आसपास 1.983% नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से फास्फोरस भी सिर्फ गोबर से यदि बनाते हैं तो वो 0.8% के आसपास होता है, 0.719% पाया गया हमें। और वहीं पर यदि हम जो जलकुंभी के साथ मिला करके यदि देखा तो वहां पर 0.88% के ऊपर हमको फास्फोरस पाया गया। पोटास भी यदि हम देखते हैं तो सिर्फ गोबर से बनाते हैं उसकी तुलना में इसमें पोटास भी थोड़ा सा ज्यादा हमें मिला। और वहीं पर यदि हम पुआल से बनाते हैं तो पुआल में देखिए फास्फोरस हमने अभी बताया 0.1% ही फास्फोरस होता है, तो उसमें सिर्फ पुआल से यदि आप बनाते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होगी। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं मित्रों कि अब जो बर्मी कंपोस्ट है यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आ गया हुआ है, यानी आप ऐसा ही बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या उसको बेच सकते हैं जिसमें 1% कम से कम नाइट्रोजन हो, 0.8% फास्फोरस हो, 0.8% पोटास हो या उससे ज्यादा हो, उसी को आप बेच सकते हैं। तो यदि आप इसका व्यापार भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को मिला, और यदि हम उसमें जलकुंभी मिलाते हैं तो यह हमारी समस्या कुछ हद तक दूर करती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग काफी फायदेमंद है और जरूरी भी है।
5: जी डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की और जलकुंभी की, तो जलकुंभी का प्रयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे कर सकते हैं वो भी बता दें।
6: अब देखिए, एक किसान था सुपौल का, उस वो जो करता था वो क्या करता, एक भाग आपको ये लेता था जलकुंभी और 5 भाग इसमें आपको गोबर मिलाता था। अच्छा। और उसमें भी उसके जड़ को काट के हटा देता था जलकुंभी के जड़ को, और उसमें जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है वह भी थोड़ा सा कम है, हालांकि उसी के आसपास है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके जड़ को आपको काट के हटाना है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहां पर शोध करके ये देखा गया कि आखिर हम इसमें कितना परसेंट तक मिला सकते हैं, तो हमने देखा, जो हमने पाया है कि इसमें यदि आप 40% तक, यानी 2 भाग जितना पुआल का करते हैं, यानी 40% तक यदि आप जलकुंभी मिलाते हैं वहां तक आपका केचुआ उछुआ बढ़िया बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, केचुआ का भी विकास होता रहता है, उसकी मोटाई वगैरह वगैरह भी बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब कि आपको ये करना है कि 40% जो आपका ये है जलकुंभी, उसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में 1 इंच के टुकड़े में काट दें, और इसको 60% गोबर इसमें मिला दें, गोबर मिला करके इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता के लिए, और उसके बाद उसे ढेर बना करके उसमें फिर केचुआ का प्रयोग कर दें। और जैसे आप सामान्य बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कि उसमें सिंचाई करते हैं, नमी 60-70% बना करके रखते हैं, तो ये आप करके रखेंगे। अब ढेर विधि ज़्यादा आपके लिए सहूलियत है तो ढेर विधि में ही कीजिए। अच्छा। तो ढेर विधि में आपको हमने बताया कि 40% उसमें जलकुंभी लेंगे, 60% गोबर लेंगे, दोनों को मिला करके प्री डाइजेशन के लिए 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उससे ढेर बना लीजिए। ढेर की चौड़ाई कभी भी 4-6 फीट के बीच में ही रखिए।
5: अच्छा।
6: उसकी ऊंचाई 2.5-3 फीट से ज्यादा नहीं रखिए, और लंबाई जितना बड़ा आपका छप्पर है, सेड है, उसी के हिसाब से आप लंबाई रखें। उसके बाद जब आपने देखा कि ये जो हमारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया, हाथ डाल करके देखा कि ये ठंडा हो गया, तो उसके बाद उसमें आप केचुआ डाल देते हैं, और केचुआ डाल करके आप उसको छोड़ देते हैं, और यह आपको धीरे धीरे बर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित होने लगता है। जब चाय की पत्ती जैसी संरचना आपको बनना शुरू होता है, उसमें 2-3 दिन के लिए सिंचाई रोकिए, और ऊपर में वो चाय की पत्ती जैसी जो संरचना है उसको हटा लीजिए, हटा करके फिर चाल करके आप पैक कर लीजिए, जिससे कि 15-25% नमी हो, क्योंकि यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत है कि उसमें 15-25% के बीच में नमी रहनी चाहिए, जो आपका टोटल कार्बन है वो 18% से ज्यादा होना चाहिए। तो यह तो गुणवत्ता तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप नमी बरकरार किए हुए हैं, उसके बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
5: जी तो डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
6: मैं तो यही सुझाव देना चाहूंगा कि आपके पास उतना पुआल है नहीं, उतना गोबर है नहीं, तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास पुआल उतना है नहीं जिसका प्रयोग या भूसा का ही प्रयोग आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में करें, और उतना गोबर भी नहीं है। तो गोबर नहीं है तो गोबर का एक 40% सब्स्टिट्यूशन तो इससे हो सकता है, वाटर हाइसेंस से, और वो तो फालतू चीज पड़ा हुआ है, तो उस फालतू चीज का प्रयोग आप बर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा वो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो जो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है कि यह जो हमारे पास एक वीड है, हमारे पास जो खरपतवार है, एक तरह का ये खरपतवार ही है, इसका प्रयोग बर्मी कंपोस्ट बनाने में करें, इससे आपका जो जल संसाधन है वह भी आपको प्रदूषण मुक्त होगा, साथ ही साथ आपको फायदा भी होगा। आप जो बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। इसके चलते ये होगा कि जहां पर ज्यादा मात्रा में बर्मी कंपोस्ट, अब एक छोटी सी बात समझिए ना, यदि आप बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें 1% नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही, तो वहां पर यदि मान लीजिए 40 क्विंटल लग रहा है तो 2% वाला जो होगा वहां पर आपको सिर्फ 20 क्विंटल ही लगेगा, तो बर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी बचेगी और तब आप इसका प्रयोग आप अपनी खेती में कर सकते हैं।
5: जी, तो किसान भाइयों आपने सुना कि जल कुंभी का प्रयोग आप करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है और संभावनाएं भी हमारे बिहार क्षेत्र में इसकी बहुत ही अच्छी है। तो फायदा इसी में है कि आप इसके प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाइए। और साथ ही कुछ अच्छी बातें यहाँ पर आपको जानने को मिली हैं इस संदर्भ में, तो अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी FM ग्रीन। उन्नत कृषि
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
10: कौन सी कहानी टीकी?
9: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
11: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
9: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
10: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
9: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
12: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
5: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഭാരത് കൃഷി. नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, जिसमें हम बातें करते हैं किसान भाइयों की. आज किसान भाई, जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, खेती बाड़ी के नए नए गुण अपना रहे हैं, और इसी में से एक आता है जलवायु अनुकूल या मौसम अनुकूल खेती. जी हाँ, आज हमारा विषय है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व. और आप सभी को पता है कि वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ख़ास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए. तो इस विषय पर खास चर्चा होगी. आज हमारे बीच हैं वरीय वैज्ञानिक अंशुमन कोहली, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं ये, और आज पूरी जानकारी मिलेगी हमें इनसे. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: जी धन्यवाद. किसान भाइयों को, आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार.
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज कहा जाता है कि जैसे कि आज का ये एरा है, उसमें मौसम अनुकूल या जलवायु अनुकूल खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये समझा दें, हमारे श्रोताओं को आप ये समझाएं कि मौसम अनुकूल खेती और जलवायु अनुकूल खेती में क्या अंतर है, क्या है ये.
1: धन्यवाद. किसान भाइयों को जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले कुछ और जानकारी मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहूँगा. देखिए, किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं, और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है. मौसम और जलवायु दोनों के तत्व समान ही हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि तापमान, वायु का दबाव, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इत्यादि. और यदि हम बात करें कि आज गर्मी अधिक है, आज उमस अधिक है, आज वर्षा हो रही है, अथवा आज तेज़ हवा चल रही है, तो यह तो ही मौसम की बात. परंतु यदि हम कहें कि मेघालय में वर्षा अधिक होती है, या जून में भागलपुर में उमस अधिक होती है, भागलपुर में वर्षा का वार्षिक औसत 900 मिलीमीटर है इत्यादि, तो यह बात है जलवायु की. अब मौसम के अनुकूल कृषि क्या हुई? जैसे कि रबी और खरीफ की फसलों की खेती, जो कि आमतौर पर सभी किसान करते हैं. कुछ प्रगतिशील किसान ग्रीनहाउस पद्धति से गैर मौसमी फसलों की भी खेती करते हैं तथा भरपूर लाभ उठाते हैं. यह सब अपनी जगह ठीक है, पर जलवायु अनुकूल कृषि क्या हुई? जो हमारे दीर्घकालिक मौसम का जो औसत है उसके अनुरूप की जाए.
0: जी, तो सर आपने अभी कहा था शुरुआत में कि जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो बेहतर तरीके से अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दें तो और ज़्यादा उन्हें ज्ञान हो जाएगा इनके बारे में.
1: जी, तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम दीर्घकालिक मौसम के औसत के हिसाब से खेती करें तो वो होगी जलवायु अनुकूल कृषि, यानी उस जलवायु के हिसाब से खरीफ में कौन सी फसलें किस पद्धति से लगाई जाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, तो वो जलवायु के अनुकूल हो सकती हैं. अब किसी भी पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति वहाँ की जलवायु के अनुसार ही अवतरित होते हुए पनपे हैं. सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों की पारंपरिक फसलें अधिकतर जलवायु के अनुकूल ही हैं. जो हमारी पुराने ज़माने से जो पारंपरिक फसलें चल रही थीं वो सब जलवायु के अनुकूल ही हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या एवं प्रगति की होड़ में अक्सर गैर टिकाऊ प्रक्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को कम करने के लिए कृषि में जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए. इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही स्तर पर परिवर्तन करने होंगे. सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों स्तर पर, अर्थात किसान के व्यक्तिगत स्तर पर तथा एक वृहद भौगोलिक स्तर पर फसलों का चयन जलवायु के अनु

0: मृदा, जल, प्रकाश, वायु अथवा जैव संसाधन कुछ भी हो सकते हैं।
1: तो जैसा कि डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। तो अगर हम बात करते हैं वर्षा जल संचयन की, हम इसे करके कैसे मतलब जलवायु अनुकूल कृषि की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: जी, अब आज की चर्चा का विषय चूंकि जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन है, आगे की चर्चा में हम जल प्रबंधन पर ही केंद्रित रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तम फसलोत्पादन में सिंचाई और जल निकासी का बहुत महत्व है। किसी पारिस्थितिकी में वर्षा का होना या ना होना, किस वेग से होना, कितनी वर्षा होना इत्यादि वहाँ की जलवायु का प्रतीक है। इसी तरह तापमान, आर्द्रता इत्यादि, यह सब भी वहाँ की जलवायु को डिफाइन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को भान है, हर फसल के लिए जल की आवश्यकता कितनी हो, यह फसल के साथ साथ मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करता है। अर्थात फसल का चुनाव व जलवायु, इन दोनों पर ही यह निर्भर करता है कि जल की आवश्यकता आपकी फसल के लिए कितनी होगी। सिंचाई के लिए जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यथा जीवाश्म ईंधन, भूमिगत जल स्रोत, सतही जल स्रोत इत्यादि, उन सभी का योगदान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सराहनीय है, आशातीत है। साथ ही साथ कृषि हेतु भूमिगत जल के प्रयोग से भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। इसकी वजह से गैर कृषि कार्यों के लिए जल और अधिक गहराई से निकाला जाता है, जिससे कि जल के उपभोग की पर्यावरण लागत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सतही जल के सिंचाई हेतु प्रयोग से सतही जल की उपलब्धता गैर कृषि कार्यों के लिए घट जाती है। वर्षा जल का संचयन करने से जल के भूमिगत एवं सतही संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही साथ कृषि की पर्यावरण लागत भी कम की जा सकती है तथा कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वर्षा जल संचयन के द्वारा परंपरागत जल स्रोतों के दोहन को कम करके कृषि की पर्यावरण लागत को कम करते हुए जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि के सभी क्रियाओं को बेहतर ढंग से करते हुए तथा जल की बचत करते हुए कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें लिमिट लेस तो नहीं है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी में से एक है हमारा जल। जी हाँ, क्योंकि ये हमें बचाना, इसे संरक्षित रखना है, और क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी में अगर किसान भाइयों से हम इसे जोड़ें, तो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्षा जल वो संचयन करें तो बेहतर होगा कि उनकी जो पानी है उसकी बर्बादी कम होगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे वो वर्षा जल संचयन कर सकते हैं अपनी खेती के लिए, और इसका भरपूर इस्तेमाल वो अगर वर्षा ना हो तो उस समय भी कैसे कर सकते हैं, वो बताएं।
0: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाई अपने खेतों में वर्षा का जल संचयन करें। कैसे करें, इस पर अब हम थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए मूल मंत्र एक ही है कि खेत का पानी खेत में ही रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि खेत में जो वर्षा होती है उसका जल खेत में ही इकट्ठा रहे, बाहर बह के ना जाने पाए। इसके लिए किसान भाइयों को खेत में वर्षा जल संचयन हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा तथा सदैव तैयार रहना होगा। अपने खेत में प्रबंध रखने से यदा कदा पड़ने वाली वर्षा का जल संचयन किया जा सकता है। जैसे कि खेत के चारों ओर की मेड़ मजबूत एवं ऊंची रखनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी खेतों के अंदर ही एकत्रित रखा जा सके तथा खेत की जमीन में पानी को रिसने के लिए समुचित अवसर मिल सके। और दूसरी बात कि खेत में समुचित मात्रा में कार्बनिक खाद का व्यवहार निरंतर करना चाहिए ताकि मृदा की भौतिक अवस्था स्थिर एवं कायम रह सके तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अच्छी बनी रहे। इसके बाद तीसरी बात कि यथासंभव न्यूनतम जुताई तथा श्रेष्ठ फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाना चाहिए, जो कि मिट्टी की भौतिक अवस्था को अच्छा रखने में सहायक होते हैं तथा वर्षा जल संचयन में मददगार साबित होते हैं। फिर खेतों

0: को जोत के अनुसार लेजर लेवलर इत्यादि उपकरणों की मदद से समतल करना चाहिए ताकि सिंचाई एवं वर्षा जल नियंत्रित रखा जा सके तथा समान रूप से पूरे खेत में सिंचाई एवं जल निकासी की व्यवस्था की जा सके। और फिर किसान भाइयों को यह भी चाहिए कि अपने खेतों में सदैव वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप ही कीटनाशक एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि अपरिहार्य स्थिति में खेत से निकासी किया गया जल पर्यावरण को दूषित ना कर सके। इसके बाद फसल चक्र का सही चुनाव से एक फसल के बाद मृदा में बचा हुआ जल अगली फसल के प्रयोग में आ सकता है। अतः पारिस्थितिकी के अनुसार फसल चक्र का चुनाव करने से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वर्षा जल का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। एक और बात कि आकस्मिक एवं असामयिक वर्षा तथा तीव्र गति की वर्षा होने की स्थिति में खेतों से जल निकासी का भी समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। निकासी किया गया जल किसी गड्ढे या पोखर में इकट्ठा करने से हम आने वाले दिनों में उसको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर अंत में एक बात कि खेत के बाहरी किनारों एवं मेड़ों पर साल भर हरी रहने वाली चारे की फसल या घास जैसे कि हाइब्रिड नेपियर इत्यादि लगाने से वर्षा जल का बहाव धीमा होने के साथ साथ मृदा का अपरदन भी कम हो जाता है तथा मृदा की भौतिक अवस्था भी अच्छी बनी रहती है। तो यदि किसान भाई इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है और इस परिस्थिति में सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ऐसी व्यवस्था होने से हमारा कृषि तंत्र एक बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की ओर अग्रसर होगा तथा जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ व्यवस्था का हिस्सा बन सकेगा।
1: जी, तो इस प्रकार आपने श्रोताओं जाना कि कैसे जलवायु अनुकूल कृषि में जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच थे डॉक्टर अंशुमन कोहली, जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस खास विषय के बारे में। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और ख़ुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है। महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियां थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं, और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
8: कौन सी कहानी टीकी?
7: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
7: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
8: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
7: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
10: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम जिसमें हम बातें करते हैं खेती से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज भी कुछ ऐसी ही बातें हम लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। आज का हमारा विषय है केचुआ खाद बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता यानी कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शिव पूजन यादव जो कि वैज्ञानिक हैं, KVK बसूली महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, जो आप सभी को बताएंगे बताएंगे कि क्या होता है ये केचुआ खाद, इसे बनाने का तरीका क्या है, इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद मैम।
4: सबसे पहले तो केचुआ खाद क्या है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
12: तो जो हम आज बात करेंगे केचुआ खाद की या बर्मी कंपोस्ट की, तो हम चाहेंगे कि जो जैसा हम जानते हैं कि विगत वर्षों में जब हरित क्रांति आई तो हमने रासायनिक खादों का अंधाधुंध और अनियंत्रित तरीकों से प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई और आज हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की भी कमी होने लगी है। ऐसे में हमें ऑर्गेनिक खाद, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, उसमें केचुआ की खाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो केचुआ की खाद है क्या, तो हम बात करेंगे कि केचुआ जो हमारे अपशिष्ट हैं, चाहे कृषि से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे किचन से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर है, गौमूत्र है, उसके द्वारा जब हम उसको सड़ा के केचुआ डाल के, केचुआ अपने मल के रूप में उसको खा के मल के रूप में जो निकालता है, या केचुए का कोकून सड़कर खाद बन जाता है, तो इसे हम केचुआ खाद कहते हैं।
4: इसे बनाने की विधि के बारे में जानना चाहेंगे।
12: तो सबसे पहले हम केचुआ खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहला जरूरी होता है कि हम स्थान का चुनाव कैसे करें। जहाँ पे हम केचुआ खाद बनाने जा रहे हैं उसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ जो समतल जगह है उससे लगभग 3 फीट ऊंचा हो, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए और वो जगह छायादार स्थान में होना चाहिए। अगर छायादार स्थान में नहीं है तो हमें टीन का शेड लगाना पड़ेगा जिससे उसको छायादार बनाया जा सके। इसके साथ ही उसकी बनाने की विधि क्या है, तो हम इसको क्यारी बना के ईंट से तैयार, कंक्रीट से तैयार क्यारी बना के उसमें केचुआ की खाद बनाते हैं। तो क्यारी का साइज हमें क्या रखना चाहिए, तो 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की या 50 सेंटीमीटर का क्यारी बनाएंगे। इसमें 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1/2 मीटर गहरा क्यारी बनाएंगे। इस तरह की अगर हम क्यारी बनाते हैं ईंट से तो उसमें लगभग 5 टन सड़ा हुआ हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है हमारे पास वो उसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें होता है हम उसको अवशिष्ट पदार्थ को किस तरह से क्यारी में डालना है। तो कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जिसको, जिससे भी हम अपना खाद बनाने जा रहे हैं, केचुए की खाद बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी अवशिष्ट हमारे पास है उसको हम कहीं एक छायादार स्थान में ढेर बना के इकट्ठा कर लें और लगभग 15 से 20 दिन तक उसको कूड़ बना के, ढेर बना के रखे रहें और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे क्या होगा कि वो पार्शली डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कुछ मात्रा में वो सड़ जाएगा बाहर ही। पूरी तरह अगर हम डायरेक्ट उसको क्यारी में डाल देंगे, बनाने वाले गड्ढे में डाल देंगे, तो उसका तापमान अच्छा नहीं रहेगा और केचुए पे नुकसान पहुंचाएगा केचुए को। तो इसीलिए उसको हम पहले पार्शली डिकम्पोज कर लें, उसके बाद ले जाके हम जिस जो क्यारी हमने बनाई है छायादार स्थान में उसमें हम उसको भर देंगे। भरने के बाद लगभग 4 से 5 दिन तक हम उसको पानी छिड़कते रहेंगे और भर के रखे रहेंगे। जब उसका तापमान एक पूरे गड्ढे में देखेंगे अगर बराबर आ जाता है, लगभग केचुए के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, अगर इस तापमान पे जब हमारा गोबर या जो कंपोस्ट बना रहे हैं, जो भी सड़ा मटेरियल है उसमें भरा हुआ है वो आ जाए, तो हम उसमें केचुआ डालेंगे। एक टंकी में जो एक क्यारी मैंने बनाई है उसमें लगभग 1 किलोग्राम केचुआ डालेंगे, जिसमें लगभग 5,000 केचुआ होंगे। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम केचुआ किस प्रजाति का केचुआ डालेंगे, तो उसमें होता है एसिनिया फोइटिडा है, एडुलस इजैनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केचुआ की प्रजाति है, इसको हम डाल के इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता खाद बदलने की बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे कि उसमें केचुआ भरने के बाद जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको भरने के बाद हम उसमें पानी का छिड़काव 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे, जिससे उसका तापमान बना रहेगा और उसमें नमी बनी रहेगी और केचुआ अपना विकास उसमें अच्छे से कर पाएगा और खाद को खाकर अच्छे से बदल पाएगा।
4: अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग के बारे में कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है।
12: तो जो हमारा खाद बनकर तैयार हुआ है उसको अगर हम एक ही क्यारी में बनाए हैं तब तो हमें लेयर बाय लेयर उसको आसानी से निकालेंगे। अगर कई क्यारी में बना लिए हैं, जैसे अगर हम 100 वर्ग मीटर में अगर हम केचुआ की खाद बना रहे हैं तो इसमें लगभग 90 क्यारी हमारी, जितना मैंने साइज बताया है, तीन मीटर गुणे दो मीटर गुणे हाफ मीटर की क्यारी लगभग 90 क्यारी बन जाएंगी। इस तरह से अगर हम खाद बनाते हैं तो हमें उसको लगभग खाद बनने में लगभग 30 से 40 दिन लगेगा डिकम्पोज होने में। तो उसमें हम 30 से 40 दिन बाद एक क्यारी में ऊपर की 6 इंच लेयर को निकालते रहेंगे और वो खाद केचुआ अपना नीचे की तरफ जाता है तो खाद बनाता हुआ चला जाएगा और हमारा खाद भी हम प्रयोग करते जाएंगे। केचुआ एक क्यारी से इस तरह बनाते हैं तो दूसरी क्यारी में अपने आप ही मूव करता है चला जाएगा और खाद बनती निकल जाएगी। तो उसको निकालने के बाद हम उसको छानते हैं, 2 मिलीमीटर छन्नी से उसको अच्छे से छान लेंगे, जो उसमें कंकड़ पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, जो खाद होगी हमारी वो अच्छे से हमें मिल जाएगी। तो इस खाद में जो वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार होगा इसमें लगभग 1.5% नत्रजन होता है, 1.5 से 3% फास्फोरस होता है और 1.5% ही के आसपास पोटास होता है। इसके साथ इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी मिट्टी में अभी खासकर कमी दिखने लगी है। तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, उसके साथ ही इसमें बहुत कई तरह के एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अब इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, किस फसल में इसका कितना प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जो धान्य फसलें हैं जैसे चावल है, धान है, गेहूं है, ये सब हैं, इसके साथ ही सब्जी है, तिलहन की फसलें हैं, दलहन है, तो इसमें हम 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे। इसको हम बुआई से पहले खेत में बिखेर देंगे और उसको जुताई करके अच्छे से खेत में मिला देंगे। इसी के साथ ही अगर हम फलदार वृक्षों में इसको प्रयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को हम प्रत्येक पौधे पे डाल के अच्छे से खुरपी से मिला देंगे। इसी तरह अगर हम घास के लान में डाल रहे हैं तो 3 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं।
4: और इससे क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा किसान भाइयों को?
12: तो जैसा मैंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट जो हमारा जैविक खाद है, तो जैविक खाद होने के कारण ये इसमें किसी तरह का कोई रसायन नहीं होता है, रसायन ना होने के कारण ये हमारी मृदा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। मृदा के भौतिक गुण में, भौतिक गुण मतलब उसकी संरचना और उसके संगठन में सुधार लाता है। उसी के साथ ही मृदा में वायु संचार, क्योंकि इसका पोरोसिटी अच्छा होता है तो वायु संचार मृदा में पोरोसिटी बढ़ा के उसका वायु संचार अच्छे से करता है। और जो हमारे वर्मी कंपोस्ट अगर हम खेत में डालते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव, जो हमारे बेनिफिशियल जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, उनका भी संख्या बढ़ जाती है, जिससे खेत में वातावरण से नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण बढ़ जाता है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट को लघु या कुटीर उद्योग के रूप में हम बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
4: इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: धन्यवाद मैम।
4: और श्रोताओं, आप सभी से फिर मुलाकात होगी। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
7: के आगे 0 0, के पीछे 0, आगे 0 पीछे 0। टिकू, क्यों है इतने 0?
13: 0 नहीं, बल्कि मैं उन 0 डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
13: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: तो इसका हल क्या है?
13: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
7: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
13: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और आज हम जानेंगे कि क्या हैं बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर RB वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं।
6: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हटके अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
5: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
6: बिल्कुल।
5: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी।
6: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
5: जी,
6: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या, भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
5: जी, जी।
6: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
5: जी जी।
6: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
5: प्राइस कम,
6: हाँ, उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं, कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है।
5: जी जी।
6: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर आगेती कर लेते हैं
5: पहले,
6: तो ये हाँ थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं, मौसम से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50-60 रुपए गोभी बिक जाती है।
5: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से थोड़े महीने पहले,
6: थोड़ा सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन, पर डे, पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
5: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
6: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय में गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो है संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
5: जी जी।
6: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें बेमौसमी सब्जियों का, एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों की खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
5: चैलेंजिंग हो जाता है,
6: चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाईटेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
5: अच्छा।
6: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है, वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
5: ज्यादा होती है,
6: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ट
5: नहीं
6: कर सकते हैं। तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ट कर सकते हैं, तो उसको एफर्ट मतलब उसको एडाप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडाप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सके, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली,
5: और
6: जो कूलिंग, हाँ, ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर से हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर हम उसको हटा देते हैं।
5: अच्छा।
6: तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
5: लो
6: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं, तो उसको ले जाकर के अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा जो होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
5: हमारे छोटे किसान,
6: हाँ, छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
5: अच्छा।
6: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
5: अच्छा।
6: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की, वैसे
5: हम
6: अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी, कद्दू की जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
5: ठंडी के,
6: हाँ, ठंडी का मौसम
5: आने से पहले, कुछ
6: गर्मी आने से पहले,
5: अच्छा,
6: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च में, तो सबके मार्च अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता
5: जी,
6: है
5: जी।
6: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक, कुछ
5: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
6: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
5: हाँ,
6: थोड़ा सा हमने,
5: हाँ,
6: क्या किया, ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया, दिसंबर में ही लगा लिया
5: जी।
6: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
5: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
6: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई है उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
5: जी।
6: तो ये लो टनल पॉली हाउस को, इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
5: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें। हाँ, तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
6: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की। थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
5: मिट्टी चाहिए।
6: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
5: नवसिखिए नहीं होना चाहिए बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए,
6: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
5: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
6: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको बताते हैं, लो वैल्यू हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
5: जी
6: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
5: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
6: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
5: नहीं
6: होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़वार वाली सब्जियां में आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इससे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
5: नहीं हुआ।
6: तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है।
5: जी जी।
6: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है
5: जी।
6: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पे खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी
5: जी।
6: 15,000 रुपए आपको लगाना है। जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं,
5: 50% सब्सिडी सरकार की, 50%
6: सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
5: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है, 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके?
6: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गया, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है और कम क्षेत्रफल से। देखिए ना, आप कितना जो है
5: लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट,
6: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते हैं, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं। और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में, आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर एक एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पोली हाउस बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है,
5: जी जी,
6: बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस, क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया, आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त
5: पैसा
6: निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
5: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं, और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
5: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि,
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
10: कौन सी कहानी टीकी?
9: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
11: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
9: एक था शिकारी जिसने ने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
11: माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
9: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
9: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
11: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
12: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
4: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्र छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर दी। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है। समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon, Fire Stick, Google Chromecast और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं है तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है। और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं। ऐसे

वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है पर उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कोलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,
5: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और खास कर जब और बात करें किसानों की, तो आप सभी को पता है कि किसान जो है आजकल रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान भी होता है। फायदा तो होता है लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे मैं पूछना चाहूंगी, सर कैसे जो किसान हैं वो अपनी उत्पादकता, फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाएं, और तो इन रासायनिक उर्वरकों से बचकर कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से।
6: देखिए, इसमें जो किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद से आजकल क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसको उत्पाद हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, उसका जो अवशेष, रासायनिक खादों का अवशेष हमारी बॉडी के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। तो प्रश्न आता है कि हम पोषक तत्व किससे दें। यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक। पहले जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का प्रायोगिक सम्मिश्रण है, जो कि समुचित मात्रा एवं तकनीक से व्यवहार करने पर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक कभी भी किसी कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जाकर के अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन का स्थिरण करते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं या बेकार होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु जाकर के मिट्टी में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील या बेकार पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, और उस अवस्था में उपलब्ध कराते हैं जिस अवस्था में पौधा लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सही तरह से करते हैं, तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं और पौधों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
5: तो सर ने बताया यहाँ पर कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं आप उनसे हटकर जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों, और उनके महत्व पर और भी ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और इनसे हम और भी बातें जानेंगे। और आगे सर हमें क्या बताना चाहेंगे आप इस जैविक उर्वरक के बारे में?
6: इसके बारे में हमको जानना होगा कि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है। तो ये हमको जानना बहुत अत्यावश्यक है कि जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में।
5: तो सर ने हमें बताया कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये और किस प्रकार ये रासायनिक खादों से अलग ये अपना काम करता है, सर आप हमें बताना चाहेंगे?
6: देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करते हैं या फिक्सेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78.6% नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, चना, मसूर, अरहर, उसकी जड़ों के अंदर ये गांठें बनाता है और गांठों के अंदर उस वायुमंडल को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अवस्था में चेंज कर देता है जिस अवस्था में पौधा लेता है, जैसे कि अमोनिकल है या नाइट्रेट है। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता, जो कि हम DAP से यूरिया से देते हैं, तो इस तरह से ये उससे अलग होता है केमिकल से, और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है खेती पर या मिट्टी पर। इसलिए ये बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा होता है पौधों को ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। तो फास्फोरस मुख्यतः पौधा आयनिक फॉर्म में लेता है, जो कि हम लोग आयन बोलते हैं। और जब हम डीएपी अप्लाई करते हैं तो डीएपी या एसएसपी जो फास्फोरस किसान भाई अप्लाई करते हैं तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 15-20% होती है। मतलब कहने का यह है कि 80% से 85% भाग मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है या उस अवस्था में हो जाता है जो कि पौधे के लिए बेकार होता है, अनुपलब्ध होता है। तो ये जो बैक्टीरिया या जीवाणु खाद है जब मिट्टी में जाता है और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसको अनुपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध कराता है और पौधा उसको यूज़ करने लगता है अपने कार्य के लिए।
5: तो आज ही उन्नत कृषि में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
10: कौन सी कहानी टीकी?
9: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
11: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
9: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
10: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
9: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
12: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। ने हमें बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो इसमें एक जीवाणु का नाम आता है सर, और उसका नाम है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम। सर, इसका क्या काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी बातें होंगी उनके लिए।
6: देखिए, अभी जो राइजोम के बारे में बताया, तो राइजोम का प्रयोग केवल दलहनी फसलों में किया जाता है। और अभी आपने जो पूछा है एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम का क्या काम होता है, तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी के अंदर करते हैं। और ये जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी वाली फसल जितनी भी हैं, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल वाले वृक्ष जैसे कि लीची, आम, अमरूद, पपीता, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यदि किसान भाई साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने खेतों के अंदर, तो ये जीवाणु प्रति हेक्टेयर एक साल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनका प्रयोग करते हैं तो हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि डीएपी या यूरिया से देते हैं उसको सेव कर सकते हैं।
5: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो सर, हमने अभी बहुत सारी बातें जानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जाना और जीवाणु के बारे में जाना, और इसके बाद सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि खेतों में और मिट्टी में खासकर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, और इन अगतिशील पोषक तत्वों से पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जैव उर्वरक इन अगतिशील पोषक तत्वों को गतिशील बनाकर जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सके।
6: देखिए, आपने जो बात करी है अगतिशील पोषक तत्व, तो मृदा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि अगतिशील होते हैं, उसको उदाहरण बताना चाहूंगा। नंबर एक पे आता है फॉस्फोरस, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिंक है और आयरन है। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि मृदा घोल में अगतिशील होते हैं और पौधे की जड़ जहाँ होती है वहाँ तक वो आ नहीं पाते, तो पौधे की जड़ के आसपास जो भी पोषक तत्व होता है फास्फोरस जिंक या आयरन वो पौधे के द्वारा यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसकी फिर से कमी हो जाती है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो दूर रखा हुआ फास्फोरस है वो उसके पास आ नहीं सकता क्योंकि उसका लक्षण होता है कि वो अगतिशील है। तो इसके अंदर एक जैव उर्वरक आता है माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो माइक्रोराइजा एक फंगस या फफूंद का एसोसिएशन होता है, सहजीवी होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ में, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है और ये अपना भोजन उस पौधे से ही लेता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो हाइफी होती है या माइसिलियम होते हैं ये पौधे की जड़ों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो दूर तक फैलते हैं, कितना फैल जाते हैं, जो मान लीजिए पौधे की जो जड़ है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो भी अनुपलब्ध फास्फोरस था उसको ये लेकर के आती है पौधे की जड़ के अंदर दे देती है। तो इसका मुख्य कार्य है कि पौधे की जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देना और दूर से अगतिशील पोषक तत्वों को मृदा और पौधे की जड़ के अंदर लेकर के आना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। यदि किसान भाई इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम तक हम कटौती कर सकते हैं जो कि हम रासायनिक खाद के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक खादों के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं इसके बायोफर्टिलाइजर के या जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से,
5: या फिर यूं कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करते हैं अगतिशील पोषक तत्वों को मतलब गतिशील बनाने में और पौधों तक इसे अच्छे तरीके से पहुँचाने में।
6: हाँ, क्योंकि जो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बेकार पड़े होते हैं क्योंकि पौधे से वो दूर है, पौधे से दूर है, पौधे के जब तक जड़ के पास में नहीं आएगा तो पौधे के लिए तो बेकार है। तो माइक्रोराइजा क्या करता है कि जो दूर पड़ा हुआ था अपनी हाइफी के द्वारा उसको पौधे की जड़ के अंदर डाल देता है और पौधे की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज करने लगता है।
5: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, और आगे कुछ बातें और भी जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि। हमारे आज चर्चा का विषय है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग, और डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं जैव उर्वरक के बारे में यानी कि फर्टिलाइजर के बारे में। और अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ये इनका जो इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, किस तरीके से वो इन्हें अपने खेत में डालकर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सर, अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनकी प्रयोग विधि है या फिर क्या होती है।
6: देखिए, सबसे अहम पहलू होता है जैव उर्वरकों की मात्रा और उसकी प्रयोग विधि। किसान भाई यदि सही से इसका प्रयोग विधि जानते हैं तभी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल पाता है खेत में। तो प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर एक पे आता है बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ द बीज होता है, यानी 20 से 25 ग्राम हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं और 1 kg बीज के लिए लेते हैं। जितना हम बायोफर्टिलाइजर या कल्चर लेते हैं उसका दुगनी मात्रा में पानी लेते हैं, और जितना पानी लेते हैं उसका 10% हम गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का जो गुड़ होता है जैगरी और या गुड़ ले लेते हैं। पानी के अंदर गुड़ को डाल लेते हैं और हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद केवल होता है कि गुड़ अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। जब ये गुड़ पानी में घुल जाता है तो उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में जो मैंने अभी मात्रा बताई थी जैव उर्वरक की या बायोफर्टिलाइजर की, उसको डाल करके हम एक लकड़ी की सहायता से उसको घोल देते हैं और ये अब ये घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद में जो सारे काम जो कर रहे हैं हम, ये छायादार स्थान होना चाहिए या कोई कमरा हो या पेड़ हो, उसके नीचे सारा काम करते हैं और एक फ़र्श पर पॉली शीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं और जो आपके बीज की मात्रा थी उस बीज को हम उस पर पॉलीथीन की शीट पर डाल देते हैं और ढेर लगा करके छोड़ देते हैं। फिर जो घोल आपने जैव उर्वरक का बनाया उसके ऊपर डाल करके उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं। हथेली से नहीं करेंगे, हथेली से करते हैं तो क्या होता है कि वो लेप उसका आ नहीं पाता है और लेप छूट जाता है, तो उंगलियों की सहायता से हम उस पर लेप लगाते हैं और लेप लगाने के बाद में, उस सॉल्यूशन का लेप लगाने के बाद में उस प्लास्टिक की शीट पर हम बीज को बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूखने में लगभग 45 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। यदि हवा चले जल्दी सूख जाता है, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो देर में सूखता है। सुखाने के बाद जिस खेत में आपको इसको बोना होता है या छींटना होता है, लाइन में लगाना होता है, उस खेत में ले जाते हैं और इसको बुवाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। दूसरा विधि होती है मृदा उपचार। तो बायोफर्टिलाइजर के द्वारा या जैव उर्वरक के द्वारा हम मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दर है उसकी 2 किलोग्राम पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, चाहे वो एजिटोवेक्टर हो या एजस्पाइलम हो या PSB हो। तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेकर के उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको 5 किलोग्राम कल्चर को और पूरी नाइट या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद में सुबह जा करके जिस खेत में बिखेरना होता है उसमें हम इसको बिखेर देते हैं और हल्का सा हल्का कल्टीवेटर या हैरो से इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रखते हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट करें बायोफर्टिलाइजर को खेत के अंदर तो धूप ना हो। तो हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो बखेरते हैं इसको सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और बखेरने के तुरंत बाद इसको मिक्स करना होता है। तीसरी विधि आती है बिचड़ा उपचार या पौध उपचार। तो पौध उपचार के लिए इसकी जो दर है वो 2 kg पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसको मात्रा को लेकर के 100 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं और एक घोल बन जाता है। घोल बनाने के बाद जो बिछड़ा है वो बिछड़ा को उखाड़ेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं और फिर 45 मिनट के बाद में जिस खेत में रोपाई करनी होती है उसमें हम इसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये 3 विधियाँ मैंने बताई हैं। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो इसका भरपूर और जो जितना हर संभव लाभ है वो मिल पाता है और पौधों को अधिक से अधिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो जाती है।
5: तो सर, आपने बताया अभी जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, उनके प्रयोग विधि के बारे में आपने बताया और अब हम जानना चाहेंगे आपसे और किसान भाइयों, और किसान भाई भी आपसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि हम किन किन फसलों के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
6: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो जैव उर्वरक का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से किया जाता है और हर एक फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए मुख्यतः हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं और यह रिकमेंड करा जाता है, संशोधित किया जाता है कि जब भी हम राइजोबियम का प्रयोग करें उसके साथ में फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB का प्रयोग करना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए 2 जैव उर्वरक मैंने बताए, एक तो राइजोबियम है और दूसरा है PSB। और एजोटोवैक्टर का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली फसलें हों, धान्य फसलें हों, फूल वाली सब फसलें हों, फलों वाली सब फसलें हों। और इसके साथ में भी हम संशोधित किया जाता है कि PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि PSB का काम होता है पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराना। जब पौधों को फास्फोरस उपलब्ध ज़्यादा होती है तो पौधों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और साथ ही साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा होता है एजोस्पाइलम जैव उर्वरक। एजोस्पाइलम का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान्य फसलें, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि, और जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, गोभी हो, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फल वाली फसलें और पुष्प वाली सब फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा हमने बताया था माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, या फूलों वाली फसलें हैं, या फिर धान्य फसलें होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको किन किन फसलों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात और है जो कि होती है, क्या ध्यान रखें इनका जब हम प्रयोग करते हैं, तब ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमेशा बोला जाता है कि नाइट्रोजन वाले बायोफर्टिलाइजर के साथ में पीएसबी या फास्फोरस वाले बायोफर्टिलाइजर या जैविक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है, कभी भी रासायनिक खादों के साथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया डीएपी भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ हो जाती है उसकी और वो मर जाता है।
5: तो सर आपने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए और जितने भी बहनें हैं, किसान बहनें हैं मेरी, उन सभी के लिए सवाल है। और वो ये है कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ, यानी कि इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है?
6: देखिए, जैव उर्वरक आपको किसी भी जो रासायनिक खाद बेचता है या दवाई बेचता है उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं। और यदि आपको हमारे विश्वविद्यालय का लेना है तो हम लोगों के यहाँ पर भी, हम लोगों की जो प्रोडक्शन इकाई है, उत्पादन इकाई है, उसकी क्षमता 500 मेट्रिक टन है। 500 मेट्रिक टन आप जानते हैं कि बहुत होता है, तो साल भर जितना आपको चाहिए उतना उपलब्ध रहता है। तो हमारे यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बायोलैब है जिसके अंदर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है, और आपको ये राउंड द ईयर कभी भी आप आए, किसी भी टाइम आए, किसी भी प्रकार का जैव उर्वरक लेना हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
5: तो किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम उन्नत कृषि में आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दी हैं, और आपसे आगे भी मुलाकात होगी, हमारे किसान भाइयों और बहनों से भी आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
14: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
15: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 वीपीडी यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
14: लेकिन ऐसा क्यों?
15: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
14: तो इसका हल क्या है?
15: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
14: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
15: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें खासतौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी, और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है, तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए, और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही ये कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है, ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है, तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन

0: बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज़ करना वो रिस्की होता है, और ख़ास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ़ किए रीयूज़ करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ़ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ़ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखा कर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे ख़ास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ ख़ास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स है, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एक आध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा। लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज़ है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है। तो इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमज़ोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमज़ोर नहीं होंगी। आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है। आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब हैं, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की ज़रूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे ख़त्म कीजिए। और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, थोड़े आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य

0: की सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज एक बार फिर आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु आप सभी के पास लेकर आई है एक अलग विषय और एक अलग चर्चा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशु पालन करते हैं, पशु पालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है और इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं पशुओं। आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है।
3: देखिए, टीका वही चीज़ है जो जीव रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई जीवाणु है, विषाणु है, वो पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं, और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो टीका पशु के अंतर्गत, पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है। रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है, लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है।

0: है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। ये एक टीका हुआ। और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं, हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है यानी कि विकसित होता है, और वो जब हमारे जो पशु हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई टीका के बारे में, और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें, और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है।
0: देखिए वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
1: जी जी।
0: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत हो जाते हैं। पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है। यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में विदिन वीक एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है यानी कि उसका उद्देश्य है। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका, उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही। तो आप एक शेड्यूल बना लें या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें, और उसमें ये चीज़ पशु जो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए और क्या जरूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की, और इसके बाद जब हम किसी भी चीज को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि उसके महत्व को समझे, और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की, और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हम टीकाकरण का महत्व क्या होता है।
0: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम एंटी सीरम कहते हैं। और कुछ ऐसा जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन वो बदलते रहते हैं, तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और

0: कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से, आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब पशुओं को टीकाकरण करवाया जाए तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम पशुओं को टीकाकरण करवाने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें।
1: देखिए, किसान बंधुओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि पशु को पहचानना कि वह बीमार है या स्वस्थ है। जब आप पशु पालन करते हैं तो पशु के व्यवहार लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह बीमार पड़ गया, और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पशु बीमार पड़ा, आप उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु से बीमार पशु को अलग रखें, उसका खान पान, उसका देख रेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है, तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें, और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता है। और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के समय अवधि पर किया जा सकता है,
0: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र
1: हार्ड
0: होता है।
1: हार्ड टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है। उसको सपोज़ कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका लगा दिए हैं, FMD में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। FMD रोग यदि देखा जाए, खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरिएंट्स हैं, एशिया AO करके आता है। तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं, कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है। तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी है, थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। आप कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और खासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार पशु का ना खरीदें जिस क्षेत्र में पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं, एक्सपायर्ड टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं, बिल्कुल कम टेम्परेचर पर उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
0: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों आप सभी का उन्नत कृषि में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, अध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब से आज हम बातें कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में, और बहुत सारी जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, आप सबों के सामने रखी हैं, और कुछ बातें और बाकी हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया था कि पशुओं को टीका देने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर पहले की बात हो गई तो अब बाद की भी बात हो जाए, तो टीकाकरण कराने के बाद पशुओं को किस तरीके से रखा जाए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे।
5: बिल्कुल, आप ये तो इंश्योर कीजिए कि जहाँ पशु रखते हैं साफ सफाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि पशु का आप टीकाकरण तो कर दिए हैं लेकिन फिर भी दूसरी बीमारी भी हो सकती है उसमें।
4: यानी कि साफ सफाई बहुत
5: उसका जो आवास प्रबंधन है, बिल्कुल आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पशु को साफ सुथरा रखें, और उसको जो आप खाना देते हैं वो कभी भी दूषित ना हो, कभी भी गंदा ना हो, कभी भी जो परचेज करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं, तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो। ऐसे खाना को दें, दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें। चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं, और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो, तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें, जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें। कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है, तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें। बछड़ा है, बछड़ा को एक साथ रखें, जो गाय है उसको एक साथ रखें, बाछी को एक साथ रखें। अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं।
4: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं, छोटे और बड़े पशु जो होते हैं, उन्हें अलग अलग रखें, और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रखरखाव की, और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग विरोध टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है, और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
5: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है, जो हो मतलब देखने को मिलता है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुरहा मुँहपका रोग, इसको खुरपका अच्छा। मुँहपका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से, यह तो विषाणु जनित रोग।
4: हाँ, ये किस जानवर में देखा जाता
5: ये
4: है?
5: ये गाय और भैंस में देखा जाता है, बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है,
4: गाय और
5: भैंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको, यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है। इस बीमारी से गला में सूजन होता है, और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया। कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है, गला, इसलिए इसका नाम गला घोटू रखा गया है। यह जीवाणु जनित रोग है।
4: अच्छा,
5: ठीक है। इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, यह भी जीवाणु जनित है। यह भी गाय भैंस में होता है, यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसा सड़न सा रोग हो जाता है, मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है। अच्छा। इसलिए इसका इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पे चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है।
4: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है?
5: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है, और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता है। और बहुत ही संक्रामक बीमारी है, एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं। इससे इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है।
4: अच्छा।
5: यह जो समय से गर्भवती पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं। ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है।
4: इसमें
5: मृत्यु तो बहुत कम होती है, लेकिन यह जो है एबॉर्शन कॉज करता है। पूरा का पूरा एक किसान को जो नई गाय मिलती, बछड़ा मिलता, वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है।
4: अच्छा।
5: यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा। और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं,
4: यानी ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब।
5: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है, और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है। आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुरहा, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ी, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण करके हम अपने पशु को, अपने पशुपालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं। आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
4: और सर, इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
5: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है। यह पशुओं में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें, टीकाकरण कराएं। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं। मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू, हेमराजिक सेप्टिसीमिया। बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है। मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी, इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं।
4: पॉलीवेलेंट,
5: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है। आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है। यह भी गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में दिया जाता है और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं। इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए। यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात को रोकता है। जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में। यह फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। मेल में होता है या बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स, इस रोग में स्पोर का टीका दिया जाता है। एंथ्रेक्स का स्पोर टीका के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह टीका है, 1 मिलीलीटर टीका दिया जाता है।
4: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जो बहुत सारे रोगों के नाम बताएं, और इसके साथ ही इन्होंने रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में टीकों के नाम भी बताएं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो पशुपालक भाई हैं, अगर वो सफल टीकाकरण करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए?
5: बिल्कुल, सावधानियाँ ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है, और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
4: प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन इज प्रिकॉशन कहते हैं,
5: बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें, और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं, उसे आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य
4: चेक करवाएं, या फिर कुछ
5: जो भी ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी जरूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों में के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है, और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा
4: थनेला रोग
5: के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है हमने उस जीवाणु को पहचाना है।
4: हमारे यहाँ
5: रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है, और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
4: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए, तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए, और उनके जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियां बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा।
5: बिल्कुल, हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसान बंधु कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है और बस, उससे कोई मतलब नहीं रहा, बांध दिए रस्सी में, बंधा हुआ है, और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर, ऐसा नहीं हो। आप पशु के साथ जुड़ें, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
4: लेकिन मनुष्य के जैसे जुबान नहीं है,
5: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है। आप उसकी आंख देख करके, उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ठीक हो जाएगा। आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उचित उपचार कराएं। और हमेशा आप देखते रहें अगल बगल के क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैला है।
4: इस बात का भी ध्यान रखना,
5: हाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से हम देखते हैं ठंडे के दिन में खुरहा मुँहपका रोग बहुत फैलता है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में खुरपका मुँहपका रोग FMD के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज। यह रोग ठंडी के दिन में फैलता है। और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी। यह बरसात के सीजन में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में ये रोग ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने पशु को इस समय में इस रोग से बचाएं और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें, जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएं और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन उसका शरीर
4: जो पोषक तत्व तो उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है,
5: हाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित समय अवधि पर जरूर करवाएं।
4: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी, या फिर कहीं उसके बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की। तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए, तो आपको अगर आप नए पशु पालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है।
5: बिल्कुल।
4: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
4: और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
8: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
9: कौन सी कहानी टीकी?
8: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
10: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
8: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
11: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
8: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
11: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया।
14: इस घर में हम 3 लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि 2 गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई।
15: पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं।
16: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
15: अच्छा,
16: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
15: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
14: 2-3 दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
16: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
17: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
16: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
17: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
16: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। तो यहाँ से इसमें हंसने की क्या बात है?
17: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
16: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
17: ठीक है,
16: चल हट, हट, उड़।
17: ये अब नहीं निकलेंगी।
16: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
14: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
17: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
16: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
15: जी?
16: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
15: जी।
16: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
15: जी। अच्छा पिताजी।
14: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
17: अरे अरे,
16: अरे
17: क्या करते हो जी?
16: गलती से लग गया।
17: आराम से।
14: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
17: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
14: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
16: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
14: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
16: अरे
17: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
14: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
17: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
16: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
17: सुनो तो। रुक जाओ।
14: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
16: गई।
14: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही हैं। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
16: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी सुन ये।
14: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो ना जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
17: तुम्हारे बस की नहीं है।
16: फिर कोशिश करता।
14: तभी मेरी नजर बाहर बैठे गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
16: अब देखो,
14: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके, बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
15: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो, माँ पिताजी वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
17: अरे हाँ बेटी।
14: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
17: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया, आ जाओ गोरैया।
14: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
16: अरे
14: वो उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
16: सच में

0: दो गौरैया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका पसंदीदा चैनल, जी हाँ 90.8। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, ड्रम सीडर से धान की बुआई के बारे में। और इस बारे में इस बहुत ही खास चर्चा को लेकर हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी। और मैं आपको बता दूं, ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से कृषि अभियंत्रण विभाग से। और आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंकज सर से हम कि धान की कौन सी प्रजाति, अगर हम ड्रम सीडर विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो धान की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहेगी?
4: कि धान की खेती दो तरह से होता है, जैसे असिंचित एवं सिंचित, दोनों परिस्थितियों में की जाती है। असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मुख्य जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों व पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेत में पानी भरने में व्यय यानी कि खर्च अधिक आता है
3: जी।
4: इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई की तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है और दूसरी विधि में खेत में कदवा करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। अब है क्या कि बहुफसलीय बिजाई यंत्र खेत को कल्टीवेटर या डिस्क हैरो के द्वारा अच्छी जुताई करने के बाद लेजर लैंड लेवलर यंत्र द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उपर्युक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है तथा खेत के समतल होने से सिंचाई के समय में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। बुआई के समय खेत अच्छी तरह जुताई किया हुआ होना चाहिए और भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बुआई करें। अब बुआई का समय, धान की सीधी बुआई का उपर्युक्त समय 20 मई से 30 जून तक होता है। मानसून आने से 10 से 15 दिन पहले है या मई के आखिरी सप्ताह से लेकर मध्य जून तक है। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे अधिक गहराई होने पर जमाव कम हो जाता है। अब आप का क्वेश्चन है कि प्रजातियां इसमें कौन सी लेना चाहिए और बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो लंबी अवधि की अगर धान आप अगर लेते हैं तो 145 से 60 दिन की अगर धान यहां पर ले सकते हैं, जो 20 मई से 10 जून तक आप इसमें बुआई कर सकते हैं। मध्य अवधि वाली अगर आप बुआई करते हैं, जो 135 दिन की अवधि होती है वाली बीज, जिसको आप 25 मई से 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और छोटी अवधि वाली अगर आप बुआई करना चाहते हैं बीज को, तो 115 से 120 दिन का वो फसल होगा, जो 1 जून से 30 जून तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। यदि 30 जून के बाद बुआई करनी है तो कम अवधि वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए, जैसे पढ़वात है, तुरंता है, ये सब वैरायटी आपको प्रजाति आपको ले लेना चाहिए।
3: जी, तो ये कुछ प्रजातियों के नाम है जो सर ने आपको बताया कि कौन कौन से आप प्रजाति लगा सकते हैं ड्रम सीडर विधि से अगर आप लगाना चाहते हैं। तो सर, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी होता है धान की सीधी बिजाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
4: पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ड्रम सीडर है क्या। ड्रम सीडर, अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बुआई किया जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है, ये तो हम पहले बता दिए हैं। खेत में पानी भरकर कदवा कर लें, यदि खेत में पानी भरा हो तो उसे निकाल दें। कादो करने के 48 घंटे पूर्व बीज को पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो दें। जूट की बोरी को भिंगोकर बीज को उपचारित करके लगभग 15 से 20 घंटे तक अंकुरण होने के लिए छोड़ दें। बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दें और इसे ड्रम सीडर में आधी आधी मात्रा भरकर आप कदवा किए हुए खेत में चला दें। बीज बोते समय खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, बीज को चिड़िया से शाम के वक्त बचाना चाहिए।
3: तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं ड्रम सीडर की जो आप बता रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है, कार्य क्षमता इसकी कितनी होती है।
4: देखिए, इस मशीन का बनावट एवं कार्य क्षमता, जैसे कि इसमें दो चक्का होता है, 4 से 6 तक वाली ड्रम इसमें हो सकता है, जिसे 4 ड्रम का अगर होगा तो ये 8 लाइन में बुआई करेगा, और 6 ड्रम का अगर आप लेते हैं तो आप उसमें जो है 12 लाइन में आपको उसमें बुआई होगा। लेकिन इसको एक हैंडी बनाने के लिए, जैसे कि आप इजी से अगर यूज कर सकने के लिए 4 ड्रम ठीक होता है। हाथ से खींचने के लिए हैंडल होता है। यंत्र का कार्य क्षमता 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकते हैं। आप जैसे पहले आप क्वेश्चन किए कि धान की सीधी बुआई क्यों, वर्षा एवं सिंचाई जल की कमी होता है, वर्षा का असमान वितरण और भूमि जल में निरंतर गिरावट हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य में निरंतर ह्रास हो रहा है, मृदा में दरारें फटना, सिंचाई नमी का तीव्र ह्रास हो रहा है।
3: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कार्य क्षमता और बनावट ड्रम सीडर मशीन की, और इसके साथ ही सीधी बिजाई के बहुत सारे लाभ हैं। तो सर, आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को।
4: धान की सीधी बुआई से लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कम जल की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व ईंधन की बचत होती है। आप जानते हैं कि 1 लीटर अगर आप डीजल जलाते हैं तो 2.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो वातावरण को गर्म कर रहा है, और आप उत्पादन के कुछ खर्चे में बचत होता है, किसान के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी, मृदा की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होता है, अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल की परिपक्वता अवधि में कमी होती है। वो कमी इस कारण से होता है कि आप जब कदवा करके जब बिचड़ा को आप जब खेत में लगाते हैं तो लगभग 6 दिन तक बिचड़ा जो है एक स्टैंडिंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो उसमें कोई तरह का बढ़वार नहीं होता है, तो ये इसमें वो समय को काउंट किया जाता है। और मृदा जैव कार्बन में वृद्धि एवं मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, और मीथेन उत्सर्जन, जो कदवा आप करते हैं मीथेन उत्सर्जन में, उसमें आप कमी आता है, कदवा की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। और हमें एक कहना चाहेंगे कि इसमें कि पोषक तत्व भी कुछ प्रबंधन करना चाहिए। बुआई के समय में 50 किलोग्राम DAP बुआई के साथ तथा 25 किलोग्राम MOP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव 3 बार में देना चाहिए, एक तो 15 किलोग्राम बुआई के 15 दिन बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए, 30 किलोग्राम कल्ले निकलते समय, 45 किलोग्राम बाली निकलने के पूर्व प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व की अगर कमी दिखाई दे तो आप आयरन और जिंक 1% यूरिया और 0.5% जिंक और 0.5% फोरस सल्फेट के घोल में 2-3 बार 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करें
3: जी।
4: और इसमें जो ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, रिक्त स्थानों को भरना। तो बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद देखें कि यदि कहीं कहीं जमा ना हुआ हो और जगह खाली हो तो सिंचाई या वर्षा के समय उसी खेत में से जहां अतिरिक्त पौधे हों उखाड़ कर खाली स्थानों पर रोपाई कर दें, इससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
3: तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और अगले दिन अगले विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
5: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
8: कौन सी कहानी टीकी?
7: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
7: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
8: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
7: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
10: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। वैसे तो पता है आप सभी को किसान भाइयों की हमारे राज्य में धान की खेती बहुत आयात में हो रही है और अगर समय पर खरपतवार प्रबंधन ना किया जाए तो 50-70% तक उत्पादन में गिरावट दर्ज हो सकती है, तो ज़रूरी है कि खरपतवार का प्रबंधन किया जाए। तो डॉक्टर साहब आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि में।
12: थैंक यू।
3: और डॉक्टर साहब हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खरपतवार प्रबंधन है क्या?
12: देखिए, खरपतवार प्रबंधन में अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी फसल हो, जितने भी उसमें अनवांटेड बीड हैं, जैसे कोई पौधा है धान की, हम कोई प्रजाति लगाए हुए हैं, उसके अलावा धान का दूसरी प्रजाति हो या कोई दूसरा प्रकार का पौधा हो, उसको हम खरपतवार की श्रेणी में लाते हैं। तो उसका सही समय पे उसका पूर्णतया नियंत्रण करना, जिससे कि मुख्य फसल पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े, हम उसको खरपतवार प्रबंधन में कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत सी विधियाँ हैं हमारे पास, कुछ एग्रोनॉमिकल मेथड हैं, सस्य वैज्ञानिक मेथड्स हैं, कल्चरल मेथड्स है, इंजीनियरिंग मेथड्स है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं, खरपतवार नाशी हैं, इत्यादि बहुत सी विधियों का हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार के प्रबंधन के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि धान के खेत हमारे बिहार राज्य में 3.5 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में हो रही है, और अगर शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन ना किया जाए, इन खरपतवारों को समय नियंत्रण ना किया जाए, तो शुरू के 40-50 दिन का समय जो होता है, 40 दिन तक का जो समय होता है, वो बहुत ही क्रांतिक होता है। अगर इसमें हम इसका प्रबंधन कर देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और 40 दिनों तक हम खरपतवार को नहीं प्रबंधन कर पा रहे हैं तो उत्पादन में 40% से लेकर के 70-80% तक भारी कमी देखी गई है, उत्पादन में कमी हो जाती है। इसलिए इन खरपतवार का प्रबंधन ससमय करना बहुत जरूरी है।
3: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया किसान भाइयों और बहनों कि 40 दिन के अंदर खरपतवार का प्रबंधन हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उत्पादन में कमी आ सकती है, और अगर आप उत्पादन में वृद्धि लाना चाहते हैं तो खरपतवार प्रबंधन 40 दिन के अंदर कर दें। इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार प्रबंधन क्यों करना चाहिए?
12: देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जरूरी है कि हमारे पास जो मुख्य फसल धान है या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन बढ़ जाती है। या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन।
3: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, और इनसे हम चर्चाएं कर रहे हैं आज धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी, आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि।
7: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
8: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
8: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: तो इसका हल क्या है?
8: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
7: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि

0: पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आज हम बातें कर रहे हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो कौन कौन से जो खरपतवार हैं वो धान में आते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
5: धान जो है खरीफ फसल है, जिसकी बुआई हम विभिन्न जिलों में मानसून के शुरुआत होने से लेकर के जुलाई 15 अगस्त तक कर लेते हैं। तो चूँकि खरीफ मौसम में खरपतवार बहुत अच्छे से उगते हैं और इनका ग्रोथ रेट जो विकास दर है बहुत फास्ट होता है, तो जितने भी खरीफ के खरपतवार हैं लगभग सभी आते हैं। इन खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बाँट सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें आपका गाजर घास है या ऐसे घास जिनकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं और लंबाई कम होता है। दूसरा ग्रुप होता है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार में अपेक्षाकृत देखा जाए तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जनरली थोड़ा सा लंबा होता है और चौड़ाई इनका कम होता है। जैसे आप धान में देख लीजिए सावा, सवई इत्यादि, ये सब प्रमुख हैं सकरी पत्ती के ग्रुप में। तीसरा ग्रुप हम बांटते हैं मोथा कुल के खरपतवारों का, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो 6 प्रकार के मोथा होते हैं, जैसे साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफार्मिस, साइप्रस एरिया, इस प्रकार के मोथा कुल के कुल 6 खरपतवार हैं जो इस सीरीज में आते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं तो जो हमारा खरपतवार नाशी दवाइयां हैं वो खरपतवारों के प्रकार के आधार पर भी हम देते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले ग्रुप के खरपतवार हैं तो उसके लिए हम 2,4-D या ऐसी दवाएं जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारती हैं वो प्रयोग करेंगे। सकरी पत्ती वाला खरपतवार, उसके लिए हमारे पास अलग दवाइयां होंगी, और सिर्फ मोथा कुल का खरपतवार, उसके लिए अलग दवाइयां होंगी। तो अब हम बात करते हैं धान में जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। चूँकि धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे राज्य की, और ससमय इसकी बुआई किया जाए तो खरपतवार एक प्रमुख समस्या के रूप में आती है। खरपतवार का ससमय प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन देखा गया है कि अगर हम शुरू के 40 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हैं, अर्थात खरपतवारों का हम 40 दिनों के अंदर अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं, तो उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाती है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम खरपतवारों को ऐसे ही छोड़ दें, 40 दिनों तक उसका कोई नियंत्रण ना करें, तो हमारे खेत में जो है 50 से 70%, 75% तक उत्पादन में कमी आ जाती है। तो हम बात करते हैं खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए जैसे हमने पहले बताया कि खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 बड़े ग्रुपों में बांट सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार एवं मोथा कुल के खरपतवार। अब हम धान की आज अपने राज्य में 2 तरह से बुआई होती है। एक जो है धान की हम सीधी बुआई कर लेते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवाएं थोड़ा सा दूसरी प्रयोग होती हैं, और दूसरा है रोपित धान, जिसको हम नर्सरी डालते हैं, नर्सरी के बाद हम मुख्य फसल में, मुख्य खेत में जो है 20-21 दिन बाद जो नर्सरी है और सीडलिंग है उसकी रोपाई कर देते हैं। तो चूंकि जो रोपित फसल है उसमें एक सेचुरेटेड कंडीशन होता है, उसमें हम धान में कादवा लगा देते हैं जिसको हम पडलिंग कहते हैं, पडलिंग करके उसको रोपाई करते हैं, तो खरपतवार उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं धान की सीधी बुआई, जो आजकल बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है अपने क्षेत्र में, राज्य में। तो धान की सीधी बुआई हम जब किए हैं या कर रहे हैं, तो उसमें हमें खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि हम खरपतवार प्रबंधन के

0: विभिन्न जो विधियां हैं उनका प्रयोग में लाएं। तो सबसे पहले अगर हम धाम में धान की सीधी बुआई करना है तो हमें ध्यान देना होता है कि हम जो है खेत की एक गहरी जुताई कर दें गर्मी में। जो ही हमारा धान रबी फसलें जैसे गेहूं है या दलहनी फसल है रबी की सीजन की, तो वो जनरली अप्रैल तक या मई के फर्स्ट सप्ताह तक जो है कट के खाली कर देते हैं खेत को। जो ही हमारा खेत खाली होता है गर्मी में गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है जो खरपतवार के बीज हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे चले जाते हैं। तो जब खरपतवार के बीज जो है एक बार जमीन में नीचे की सतह में चले जाते हैं तो उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, प्रकाश न मिलने से उनका जमाव नहीं होता है। तो पहला तो हमें खेत की गहरी जुताई करना है जिससे कि सरफेस लेयर पर जो भी खरपतवार के बीज हैं वो जमीन के नीचे चले जाएं। दूसरा जो पेरेनियल वीड्स होते हैं जो बहुवर्षी खरपतवार जैसे मोथा है, दूब है, ये सभी कास है, ये सभी जो है शकर से या उसकी गांठों से फैलाव करते हैं। तो जब हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं एक बार तो क्या होता है कि ये गांठे या इसके शकर से हैं ये सब सूख जाते हैं और आगे खरपतवार का प्रेशर जो है मुख्य फसल में कम हो जाता है। तो ये जरूरी होता है कि सबसे पहले हम गर्मी की गहरी जुताई करें, उसके बाद हम खेत की जब बुआई कर देते हैं तो दूसरा विधि है धान की सीधी बुआई में हम ब्राउन मैन्योर का प्रयोग कर सकते हैं, या धान की सीधी बुआई जब हम करते हैं तो उसमें हम 25 से 30 किलोग्राम बीज धान का लेते हैं, उसी में हम 30 किलोग्राम ढैंचा का बीज भी मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है धान और ढैंचा दोनों साथ साथ जमाव करता है। उसके बाद हम जब फसल हमारा 30 दिन का हो जाता है, 30 से 35 दिन का हो जाता है, उसमें हम सबसे सस्ती दवा जो है 240 हम लेते हैं और 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं। क्योंकि 240 जो बाजार में है वो 50% का भी है और 38% का लिक्विड वाला भी आता है। तो हम सक्रिय तत्व की बात कर रहे हैं, 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, अर्थात अगर हम लिक्विड वाला 240 लेते हैं तो जो बाजार का प्रोडक्ट आएगा वो करीब 1.5 लीटर हो जाता है। 1.25 से 1.5 लीटर हम प्रोडक्ट को लेकर के छिड़काव कर सकते हैं खड़ी फसल में, धान की खड़ी फसल में जिसमें ढैंचा का बीज हम लगाए हुए हैं। तो क्या होता है उस समय 30 दिन पर ढैंचा करीब 1 से 1.5 फीट का हो जाता है। तो ढैंचा का जब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा पौधा होता है, तो उसे बाकी जो खरपतवार है वो नहीं उग पाते, या उगे भी होते हैं तो बहुत पतले पतले रहते हैं। और 30 दिन पर 35 दिन पर हम जब 240 डाल करके उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसके बाद उसके फसल पर छिड़काव कर देते हैं, तो जो ढैंचा है, ढैंचा धीरे धीरे क्या होता है 24 घंटे में ही वो झुलस करके ज़मीन पर गिर जाता है। गिर जाने के बाद क्या करता है, वो पतवार का काम करने लगता है। तो वो फिर जो पतवार का काम करता है तो शेडिंग इफेक्ट बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो खर पतवार ज़मीन में भी अगर हैं भी उसके बीज तो वो जम नहीं पाते हैं। और शुरू के 30 दिन तक ऑलरेडी जो जमे हुए खरपतवार है वो ऑलरेडी बहुत पतले और कम संख्या में थे। तो 240 के साथ जब हम ढैंचा पर देते हैं तो ढैंचा तो मर ही जाता है और उसको एक मल्च का काम करता है ज़मीन पर, तो आगे खरपतवार लगभग नहीं के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हम ब्राउन मैन्योरिंग भी कर लेते हैं और खरपतवारों को भी धान की सीधी बुआई में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के खरपतवारनाशी दवाएँ हैं इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, चूँकि खरपतवारनाशी दवाएँ भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचाती हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। लेकिन अंततः मजबूरी में हमें खरपतवारनाशी दवाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये सस्ते भी हैं और प्रभावी भी हैं। तो इसके लिए जो प्रमुख रूप से खरपतवारनाशी दवाएँ हैं उसमें हम पेंटीमिथिलीन का प्रयोग करते हैं। पेंटीमिथिलीन एक पीले रंग का लिक्विड आता है जो 30% का मौजूद है बाजार में। तो इसका जो सक्रिय तत्व लेते हैं हम लोग, 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं वो प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। चूँकि 30% वाला आता है प्रोडक्ट, तो बाजार का जो प्रोडक्ट आएगा विभिन्न नाम से आता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को हम बाजार का जो पेंडीमिथिलीन प्रोजेक्ट है उसका हम 3.3 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए लगता है, अर्थात बाजार का प्रोडक्ट जो है 1 लीटर से 1.25 लीटर प्रति एकड़ जो है प्रयोग कर सकते हैं। जबकि हमने जो सक्रिय तत्व बताया जो केमिकल रूप में पेंडीमिथिलीन होता है वो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है। तो इस प्रकार हम देखें तो सक्रिय तत्व 1 लीटर या 1 किलोग्राम पेंडीमिथिलीन लेते हैं, उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं, धान की जो सीधी बुआई किए हैं उसके 48 घंटे के भीतर यानी 2 दिन के भीतर ही हमें प्रयोग करना होता है। ध्यान हमें रखना होता है कि हम जब नाजल का प्रयोग करें, जब हम कोई भी खरपतवारनाशी दवा प्रयोग करते हैं तो जो स्प्रे होता है उसका जो नाजल होता है वो फ्लैट फैन नहीं रखा जाता है। फ्लैट फैन से एक फ़ायदा होता है कि सभी जगह जो आपका खरपतवारनाशी दवा है वो बराबर मात्रा में गिरता है, बराबर मात्रा में स्प्रे होता है, और स्प्रे करते हुए हम पीछे की ओर हटते हैं। पीछे की ओर हम इसलिए हटते हैं क्योंकि जब जो ही हम दवा का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं ज़मीन पर, बुआई के 48 घंटे के भीतर, तो वो जो है एक पतला सा लेयर बना देता है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन एक पतला सा बिल्कुल लेयर बना देगा जमीन पर, और जो ही खरपतवार अंकुरण करते हैं उस लेयर को छूते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम जो धान की सीधी बुआई है उसमें पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा सीधा बुआ हुआ धान लगभग 20 से 25 दिन का हो जाता है, उसमें हम दूसरी प्रकार की खरपतवारनाशी दवाएं प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, क्योंकि इन सभी दवाओं का प्रयोग हम खरपतवार तथा फसल की जमाव के बाद करते हैं, इसलिए हम इनको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं। तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में हम प्रयोग कर सकते हैं, सबसे अच्छी दवा है बिसपायरीवेट सोडियम, क्योंकि बिसपायरीवेट सोडियम एक ऐसी दवा है जिसका मात्र 40 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं और प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसको भी हम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के वहीं 20 से 25 दिन बाद हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इससे जितने भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं ये सब लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। सिर्फ मोथा जो है या मोथा कुल का दूसरा खरपतवार है तो ये नियंत्रण में नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पर हमें दूसरी दवा प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पाइरोजोसल्फ्यूरान ले सकते हैं। पाइरोजोसल्फ्यूरान जो बाजार में साथी के नाम से भी उपलब्ध है और जो बिसपायरीवेट सोडियम हमने बताया वो बाजार में नामनी गोल्ड और ओडीसी के नाम से भी उपलब्ध है, क्योंकि वो 10% का आता है। तो हमने बताया था बिसपायरीवेट सोडियम का 40 ग्राम सक्रिय तत्व लेना है, अर्थात जो बाजार का प्रोडक्ट होगा 10% वाला उसका 400 ml मात्रा हो जाता है प्रति हेक्टेयर के लिए। उसको हम 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसका 20-25 रुपये छिड़काव कर देते हैं। दूसरी दवा हम बोल रहे थे पाइरोजोसल्फ्यूरान, जो बाजार में साथी के नाम से उपलब्ध है, तो पाइरोजोसल्फ्यूरान का 20 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रखिए मात्रा बहुत कम है, मात्र 20 ग्राम सक्रिय तत्व है और उसको 1 हेक्टेयर अर्थात 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया में या 2.5 एकड़ में आपको देना है। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले 20 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा जो है जो बाजार का प्रोडक्ट है साथी के नाम से वो 10% का आता है, तो उसका 200 ml मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर पड़ जाता है प्रोडक्ट का, जो ब्रांड है जो प्रोडक्ट है साथी नाम का या और भी किसी नाम से ब्रांड से आएगा 10% का है अगर, तो 200 ml प्रति हेक्टेयर लगेगा। इसको भी आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए और बुआई के बाद आप 20 से 25 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखिए चाहे बिसपायरीवेट सोडियम या पाइरोजोसल्फ्यूरान दोनों में से किसी एक को ही देना है और इसका छिड़काव करके हम जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं हम साथ ही देने से क्या होता है जो मोथा कुल के खरपतवार है अगर नरम अवस्था में है मोथा तो लगभग वही 50 से 60% नियंत्रण में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम धान की जो सीधी बुआई है उसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों कभी कभी ये देखा गया है कि
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ?
7: अरे बच्चों,
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
7: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
7: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
9: Sir,
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर,
4: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
7: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
4: हाँ हाँ, कहो।
7: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
4: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
7: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
4: गो अहेड यंग मैन।
7: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
7: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
7: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
5: जी जनाब।
8: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
7: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
7: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
7: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
7: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
7: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोग्रांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोग्रांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
4: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इसे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
3: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग समझते हैं। उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोंटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबिये छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है। पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
2: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्त चलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
3: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पेट पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे तभी हम पेट पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की असल शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है, और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
2: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
3: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, जिनको धूल फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से वितरित करते हैं।
2: जी,
3: भुड़काव यंत्रों को हस्त चालित रोटरी या हस्त चालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्त चालित रोटरी भुरकाव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है
2: जी।
3: इसीलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह
2: जी।
3: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हत्थे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहां पे भी अलग से हम
2: डाल सकते हैं जी।
3: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं, और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकलकर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ है, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
2: जी।
3: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
2: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित, जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं, उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को जरूर अवगत कराएं।
3: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
2: यानी समय का बहुत महत्व है,
3: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
2: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
3: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
2: जी,
3: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
2: सेट हो सकता है, चिपक सकता
3: हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से
2: जी।
3: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
2: जी,
3: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
2: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
3: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए। ठीक है, और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है।
2: जी, डब्बे पे भी लिखा हो एक उसमें कॉशन,
3: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी उस तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
2: जी,
3: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर खुले में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
2: जी,
3: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
2: जाने अनजाने में उसको कोई
3: उसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
2: जी।
3: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वाशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वाशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी मुँह से फूंक मार कर इन यंत्रों को
2: ना चलाएं
3: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
2: पड़े, फंस जाए अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
3: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
2: जी। तो किसान भाई, ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में दो या तीन बार या पांच बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
3: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर वन ये है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए, हाँ हाथ हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके
2: जी,
3: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं, उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें
2: जी।
3: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
2: जी,
3: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें, और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए। उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें
2: जी।
3: अगर वो फट गया या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा
2: जी।
3: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें, ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है
2: जी।
3: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, दो तिहाई भाग तक ही भरना चाहिए
4: ताकि प्रेशर बने,
3: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो दो तिहाई से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया हो तो
2: जी,
3: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
2: जी,
3: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
2: जी।
3: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
2: जी।
3: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं
2: जी।
3: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को खराब कर देगा
2: जी,
3: ठीक है। तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
2: बिल्कुल,
3: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
2: जी,
3: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
2: जी,
3: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
2: बंद कर देगा
3: ठीक है। और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
2: जी,
3: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें
2: जी।
3: शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़े देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को न जमने दें, ठीक है? अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
4: जी।
3: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है? और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग जहाँ जहाँ भी जरूरत है

0: चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें। तो हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
1: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रख रखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
0: जी।
1: फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनका आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को अब पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
0: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं, तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का

0: संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीजें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो जमाना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
1: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं, नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में, AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है, और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन न समझें, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
0: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है, और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
1: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं, और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप के आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
0: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती हैं। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनी हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी, तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
0: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं, अब उसमें क्या होता है कि एआई को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
0: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
1: हाँ, देखिए जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सबको जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाज़ार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
1: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती है उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहां पर भी इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
0: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
1: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उसके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पर लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें तो देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए, एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था।
2: तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया। तो क्या हुआ, वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लरिकल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही AI का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से AI के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। AI आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर AI ही AI का बोलबाला रहेगा। अगर आप AI से डरेंगे तो AI वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, AI से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस AI से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस AI के मास्टर बन जाएंगे, AI आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
0: यानी कि AI से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब AI से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से AI के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, AI से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप AI का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
2: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब, जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से, उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारे परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही हैं, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, ना सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना ज़रूरी है नौकरी करना, उतना ही ज़रूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना ज़रूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा समझेगा समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये ज़रूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले ख़ास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें ख़ास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और आज हम बातें करने वाले हैं अपने विशेष कार्यक्रम में सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
0: सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से, और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
9: जी, तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों, भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है, उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है, जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और यह मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्मजीव करते हैं, जो सूक्ष्मजीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु पॉलीसेक्रेड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है वो गैस का जो एक्सचेंज है उस मिट्टी में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है जो सूक्ष्म रीड और रंध्र और

ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं, तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्म जीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्म जीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्म जीव जीवाणु का रोल क्या है, तो वो क्या करता है जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो उसको क्या करता है ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है, अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्म जीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है, कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए, तीसरा है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या है तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह
वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम एन के फॉर्म में परिवर्तित करता है। तो पौधा क्या करते हैं, उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो

0: लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो उस वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजो एस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रोडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम आवश्यक, प्रथम विधत्त और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है, उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ? आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमीडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी, निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज़ नेक्स्ट चीज़ है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं तो वो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं, और ये रिलीज करने से क्या होता है पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ एक ACCDMNase इंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, और वो क्या करता है तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्मजीव जीवाणु है ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्मजीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसिलस थुरिंजिएंसिस ये क्या है ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट, जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज़ में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है, फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में प्रयोग उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया, और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसान के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक का जो है वो एक जैविक, जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो प्रदूषण होने में, प्रदूषण करने में या प्रदूषण को लेकर रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है, और इससे क्या होता है, वायु का मंडल का जो प्रदूषण होने में, प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है, और इसी को किसान, इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है राइजोबियम, राइजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है, दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया

0: इनके फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है, जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट पीएसबी के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है, जो अन जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ से फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है, जो पीएसबी बायोफर्टिलाइजर है। और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15 से 40 केजी तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है। और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी, रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे, उस मात्रा में उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे राय चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में ये जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का, तो वो क्या करते हैं, उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अल्गी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो वो क्या करते हैं, वो फॉस्फोरस को अवेलेबल कराने में माने फॉस्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अरबस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में, और व्हीट मेज, राइस, वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गए कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं, और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं, और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे, और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है, वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में, या सब्जी के केस में, या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचरा जो 20-21 दिन का बिचरा हो जाता है उसको लगाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचरा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे, और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो, ये मेथड, ये विधि है जिसको हम बिचरा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट होकर के जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना, या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना, या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना, या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं, और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में, और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल के वृद्धि में, और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है, और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है, ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है, उसका एप्लीकेशन में प्रयोग भी निधि होगा उस पर दिया हुआ। इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में, वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है। क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वियबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें, ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उसको मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें। उसको डायरेक्ट सनलाइट से, तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें, और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद।
1: सर, आपने सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों, अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: के आगे 0 0 के पीछे 0, आगे 0 पीछे 0। टिको, क्यों इतने 0?
3: 0 नहीं, बल्कि मैं उन 0 डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति है कृषि प्रसार विभाग से और साथ ही मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
3: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इनक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
3: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताए, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सकते

0: के वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इंक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना, और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना। हम आगे बात करेंगे कि इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
1: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
0: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
1: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
0: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है, और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
1: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
0: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे टीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो। इसमें नया क्या होगा और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे, उनके बारे में हम सोचेंगे। और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए

0: दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जब जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ही है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है, फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो छह चरण से गुजरते हैं, यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना, इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है, एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता छह स्टेज होते हैं, छह चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया। ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है?
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में, और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहां से ही जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर, बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगी?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें, स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से, जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की एक नई दिशा देने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन. जी हाँ, चले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर. और जहाँ तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी. तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी ख़ास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है. ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की. बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है. और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. बांस क्या होता है, तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे. बांस जो है वो एक, इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दीजिए.
1: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसके हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है. बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है. और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि भी वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये. और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है. देश का लगभग 60% जो बांस है वो का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है, और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुलगैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में ये सारी प्रजातियां हैं.
0: जी जी. बांस लगाने की विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे.
1: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है पहला है बीजों की सीधी बुआई. ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं. इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं, और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है, और एक सप्ताह के अंदर ही एक पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है. फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं, और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर उसमें हम लोग ताज़ा बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी सफाई करते हैं. अगर हमें उस समय पे नहीं लगाना है तो उसको हम लोग सुखा कर वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं, वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं. बोने से पहले बीजों को 48 घंटे पानी में भिंगो कर रखना चाहिए, और फिर पानी में, जिस पानी में उसे भिंगाए हैं हम लोग उसमें हम लोग को कवकनाशी को मिला देना

0: जाते हैं, जिससे कि जो हम लोग इस विधि से जब लगाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियां बना के जो ऊपर क्यारियों में हम लोग इसको लगाते हैं और एक सप्ताह में ही जो नन्हे पौधे बांस के उगते हैं उसको हम लोग थैलियों में डालकर, जिसको हम लोग पॉलिथीन बैग भी कहते हैं, उस पॉलिथीन बैग में डालकर उसको हम लोग हल्की सिंचाई देते रहते हैं। इस सामान्यतः 1 से 2 माह में जो पौधा है वो रोपण हेतु तैयार हो जाता है और फिर हम लोग को जहाँ भी उसके उसे लगाना है उसके हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। जो जिन गड्ढों में हम लोग को लगाना है, जो हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं वो 30x30 सेंटीमीटर का होना चाहिए और हम लोग को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि जहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जब बारिश हो तो वहाँ ज़्यादा जल जमाव की परेशानी ना हो और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे जो ये चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, तो हम लोग को उसका भी ध्यान रखना है ताकि इसका जो हम लोग अच्छे से इसको लगा सके। तीसरी विधि जो आती है बांस को लगाने में, उसमें हम लोग प्रकंदों द्वारा रोपण, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकंद जो निकलते हैं बांस से, तो हम लोग प्रकंदों को समूह में भी लगा सकते हैं और एकल प्रकंद में भी हम लोग लगा सकते हैं। एकल प्रकंद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग बिना किसी इसको नुकसान किए हुए लगा सकते हैं और इसमें हम लोग एक उचित दूरी हम लोग को लगाना होता है ताकि जो जब बांस का पौधा बड़ा हो तो उसमें किसी तरीके का दोनों एक दूसरे, जो दो पौधे निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाएं। जो अगली विधि है वो है ऑफसेट रोपण। ये सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसके लिए 1 से 2 वर्ष की आयु का कलम सबसे उपयुक्त होता है। यदि कलम अधिक बड़ा है तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 से 1.5 सेंटीमीटर उसको तिरछा काट कर जिस प्रकंद से वह पैदा हुआ है उसे जड़ सहित उसी आकार में हम लोग लगाते हैं और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम उसमें एक आँख हो। प्रकंद को इतनी ग्रीवा से काटा जाता है ताकि जो हम लोग कटाई कर रहे हैं तने का उसमें कोई भी दरार या फिर जो मातृ तना है उसमें कोई भी नुकसान ना हो और प्रकंदों को हम लोग एक आद्र युक्त बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो उसमें। कलम के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेजी से बढ़ें और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है और जहाँ हम लोग को लगाना है वहाँ पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियाँ जिससे हम लोग बांस की खेती आसानी से कर सकते हैं।
1: जी, इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं। बांस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
0: बांस की बात करें तो बांस में जो प्रमुख रोग हैं, सबसे पहले डैम

0: टाइपिंग ऑफ है, जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उस उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की जरूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है, इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन, भारत और जापान में। और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सीन है, थिया बेडाजोल है, इन फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूट मोट, जो कि भारत, चीन, कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है, जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा, मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो ये एफिड्स हैं वो प्राकृतिक शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ब्लैक मिल्ड्रू, ये जो है आप सब इसमें भी क्या होता है कि काले रंग की चूर्ण, आपको ऐसा लगेगा कि पत्तों के ऊपर एक चूर्ण, काले रंग का चूर्ण आ गया है और ये भी डंठ जैसे जैसे संक्रमण फैलता जाएगा ये पत्तियों के ऊपरी सतह से नीचे निचली सतह पर और फिर जो छोटी छोटी शाखाएँ होती हैं उन पर ये फैलने लगती हैं। इसके लिए भी हम लोग जो फफूंदी नाशक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट में देखें कि इसको कैसे हम लोग रोकेंगे तो इसके लिए हम लोगों को जो कैनोपी होती है जो कैनोपी है पौधे की उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले, कहीं भी उनको छाया ना हो, क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है।
1: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
0: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है तो इस वजह से जैसा हम पहले भी हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में और छप्पर जो होता है जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी और बहुत सारे कृषि यंत्र और अब जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक जैसे जैसे हम लोग पानी के बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में। फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं। फर्नीचर्स में हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा आपका अलमीरा और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है जो जो कास्ट है जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है। तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग उपचार इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि मॉडल्स कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
1: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे?
0: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है। और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदवार के साथ साथ उचित किस्मों जो उचित किस्म है बांस की उनको भी बढ़ाना, फिर बांस आधारित हस्तशिल्प शिल्प को भी बढ़ावा देना, पारंपरिक विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी जो है वो किसानों के बीच पहुंचाना, और कुशल और अकुशल व्यक्तियों को विशेष रूप से जो बेरोजगार युवक हैं उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बांस मिशन का हम लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार, नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना। बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती मुनाफे की हो सकती है, किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का का विकास करना

0: और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको समाप्त करते हुए सीधे जो ये राष्ट्रीय मिशन है इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना ताकि सबसे ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी खेती पर एक विशेष चर्चा। आशा करते हैं आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी और अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, ये है 90.8 MHz, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और मैं आप सभी को बता दूं कि हम उन्नत कृषि की बात करते हैं और ऐसे में जैविक खाद की बात करना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि जैविक खाद हमारी फसलों के लिए सुरक्षित हैं, हमारी मिट्टी के लिए सुरक्षित हैं, हम सभी के लिए सुरक्षित हैं। तो जैविक खाद आप कैसे बनाएंगे, घरेलू उपाय क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक हमारा जो आज है, विषय है, वो है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय। और इस विषय को लेकर, जी हाँ, मृदा विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सोनल कुमारी हमारे साथ हैं, जो आप सभी को एक पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में, घरेलू उपाय के द्वारा आप जैविक खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैविक खाद होता क्या है, क्या है ये।
6: मैं सोनल, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की सॉइल साइंटिस्ट हूँ, उस पद पे कार्यरत हूँ, और मैंने आज का विषय चुना है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय क्या हैं, इसको कैसे हम घर पे ही रह के बना सकते हैं। ये आज के जरूरत समय में सारे लोग जाने, बहुत जानकारियाँ हमें गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे ये जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म का अगर कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो हमारे जो भी रिमोट विलेजेज है वहाँ पर लोग एटलीस्ट रेडियो के अभी भी शौकीन है, रेडियो को सुनते हैं। अगर आप मेरी बातें आप तक पहुँच रही है, तो आप जरूर इसको सुनेंगे।

0: कैसे हम घर पे रहते हैं, हमारे पास जो भी किचन वेस्ट अवेलेबल है, हम आपके पास उतने जगह जमीन नहीं है, तो कैसे उस लिमिटेड रिसोर्स में हम अपने चीज़ों को, अपने जैविक, जो हमारे जैविक चीज़ें हमारे हैं, जो हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जो हमारे प्रकृति में डेली उसको उसको एज अ कचरा समझ के, वेस्ट समझ के उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, उसका कैसे हम सही यूटिलाइज कर सकें, उससे कैसे हम एक जैविक खाद का बना सकें, उसका सही से उसका संरक्षण कर सकें, सही से उसको स्टोर कर सकें, एंड देन उसको फर्दर हम जो हमारे फसल है, हमारे जो हमारे सीजनल हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो भी हमारे जो भी हम साग सब्जी घर में भी अपने लगाते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसमें ही प्रयोग कर सकें। तो हमारा आज क्वेश्चन हमारे लिए है, जैविक खाद क्या है? पहले हम जैविक खाद के बारे में जानेंगे, जैविक खाद आखिर है क्या, हम क्यों जैविक सबको आज के डेट में बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, एवरीवन इज टारगेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी या ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, और जैविक खेती में जही सी जो खाद प्रयोग करते हैं वो जैविक खाद होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैविक खाद जो है एक प्राकृतिक खाद है, जिसमें और कुछ नहीं, कोई भी रासायनिक पदार्थ या हमारे जो होते हैं उसमें प्रयोग नहीं किया जाते हैं, जो भी हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पौधे हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, हमारे जो भी जैविक और इसके अलावा जो हमारे अन्य जैविक अवशेष हैं, उस जैविक अवशेषों से उसको सड़ा गला कर, और या जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रयोग से जो खाद तैयार किया जाता है उसको ही हम जैविक खाद कहते हैं। यह पूर्णतः कम्प्लीटली जिसको बोलते हैं, ये प्रकृति रूप से ही प्राप्त की जाती है। जैविक खाद में जैसे हम जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे जो मुख्य पोषक तत्व सत्र है, हमारे इसेंशियल जिसको बोलते हैं, उसको प्रदान करने को, जिससे हमको पौधे प्रदान कर सकें, उसको इसके लिए हम डालते हैं अपने पौधों के लिए, वैसे ही हमारा जैविक खाद है। जैविक खाद में जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो सारे जब ये विघटन इसकी हो जाती है, तो सारे इसमें आवश्यक पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, और जब इसको हम अपने मट्टी पर अप्लाई करते हैं, मृदा पर अप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारे फसल है उसको उस सारे आवश्यक पोषक तत्व को वहाँ से प्रदान करते हैं, और वो इसके साथ साथ वो तो प्रदान करते ही करते हैं। जैविक जैसे मैं बोली रही, बिल्कुल कम्प्लीटली पूर्णतः यह प्राकृतिक रूप से होता है, तो मिट्टी का जो हमारा गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है, उसकी जो हमारे प्रॉपर्टी है उसकी जो गुणवत्ता है उसको कभी घटाता नहीं और बढ़ाता ही है।
1: जी, अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने की विधि की, तो कैसे बनाया जा सकता है घर पर?
0: हाँ, अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, हम जहाँ भी जिस लोकेशन में रहते हैं, वेदर हमारा चाहे हमारा बहुत बड़ा लोकेशन हो, छोटा लोकेशन है, चाहे बहुत छोटे से घर में आप रह रहे हैं, 1 BHK घर में रह रहे हैं, गांव में बहुत कम छोटे किले हैं, बहुत हमारे जो मार्जिनल किसान हैं, हमारे बहुत छोटे स्तर के जो किसान हैं, उनके पास उतने जगह जमीन नहीं होते हैं, तो उनके पास जो ही रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ से तो वो अपना जैविक खाद बना ही सकते हैं, क्योंकि किचन जो हमारा रसोईया हम जब खाना पकाते हैं तो बहुत सारे हमारे फल साग सब्जी उसके जो छिलके आते हैं, तो उस साग सब उसको हम क्या करें, अगर आपके पास मवेशी है तो मवेशी को देते हैं, मवेशी का वो भोजन हो जाता है, नहीं तो अगर नहीं है तो वो ऐसे आप वेस्ट कर देते हैं, उसको वेस्ट करने से बेटर है उसको हम कंपोस्ट खाद तैयार कर लें, जैविक खाद तैयार कर लें। तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन कुछ विधियों के बारे में बताऊँगी मैं, जिसको आप बहुत आसानी तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं, जिससे कौन कौन से हमारे विधियाँ हैं जिसको हम घर पर आसानी से तैयार कर सकें। एक खाद हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम घर पर ही तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं किचन वेस्ट खाद, जिसको किचन वेस्ट खाद मतलब कंपोस्टिंग करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स है कंपोस्टिंग। किचन वेस्ट जो हमारा है, किचन वेस्ट का मतलब जो हम रसोई में हमारे वेस्ट चीज़ मिलते हैं, मैंने बोला जैसे ही बोला आपको फल होते हैं, साग होते हैं, सब्जी होते हैं, इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं उसको तो हम उतार फेंकते हैं ना, उसको तो हम नहीं खाते हैं, उसको हम कंज्यूम मनुष्य नहीं करता है, तो उसका प्रयोग हम खाद बनाने में कर लेंगे, उसी से जो खाद तैयार होता है उसको हम किचन वेस्ट खाद कहते हैं। अब इसके लिए जैसे मान लो आप साग सब्जी कुछ भी सब्जी घर में बनाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उसके लिए एक रेसिपी लोग बोलते हैं ना, रेसिपी के लिए हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हिंदी में अगर बोले तो सामग्री, क्या क्या उसमें सामग्री लगेंगे, अगर हम पनीर प्याजा की बात करें तो हम बताते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वैसे ही हमारा खाद है, खाद को भी हम जब तैयार करते हैं ना उसके लिए हमें कुछ कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में बोले तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो ऐसे ही हम जब किचन वेस्ट खाद की बता रहे हैं तो हम पहले बताएंगे आपको क्या क्या इसमें सामग्री आपको लग जाएंगे बनाने के लिए। पहले तो आपको जो भी हमको रसोई में हमारे कचरा, जिसको कचरा ना बोले तो बेटर होगा, कचरा बोले बैड टर्म्स हो गया, उसको हमारे लिए हम उसको वेस्ट समझ रहे हैं, बट इट इज नॉट वेस्ट, वो वेस्ट नहीं है, वो हमारा धन है, उससे हम एक बढ़िया बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो कचरा ना बोल के मैं रसोई में जो भी हमारे फल सब्जियाँ, जो चाय पत्ती होते हैं, अंडे के छिलके हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े आपके हैं, जो भी हम सब्जियाँ खाते हैं उनके जितने छिलके हैं, आप उनको क्या करें एक जगह इकट्ठी कर रखें, और हम पेड़ पौधे कहीं भी आपको देखते सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं हमें, और नहीं भी कुछ हुआ था, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे कागज को ऐसे वैसे फाड़ कर फेंक देते हैं, बहुत सारे हमारा जिसके हम न्यूज़पेपर आते रहते हैं उसके भी टुकड़े मिल जाते हैं, उसकी भी वो सब चीज़ बहुत बर्बाद होते हैं, तो कागज को टुकड़े को भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हैं, और मिट्टी थोड़ी मिट्टी तो कहीं भी आपको सबको अवेलेबल हो सकते हैं, वेदर वो बहुत ज़्यादा एक मेट्रोपोलिटन सिटी में रह रहे हों अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरिया में रह रहे हैं या रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में रह रहे हैं, इतनी चीज़ें तो आपको किसी को अवेलेबल हो जाएंगे। तो सामग्री क्या क्या आपको लगेगी, जो भी हमारे रसोई के हमारे जो भी रसोई समय जो बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स आप बोल लो, हमारा खाना बनाने के बाद जो भी बचते हैं, मतलब फल सब्जियां के छिलके हो गए हैं, अंडे के छिलके हो गए हैं, चाय पत्ती बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाते हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े हो गए हैं, हमारे साग सब्जी के जो भी हमारे छिलके हो गए हैं, कागज के टुकड़े हो गए, सूखी पत्तियां हो गई, थोड़ी सी मिट्टी है हमारी सामग्री हो गई। और इसकी विधि बनाने के लिए जब ये चीज़ हम बोल सकते हैं कुछ चीज़ हमें बनाना है, अगर मैं बोलूँ चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो इट मीन्स हमें कुछ ना कंटेनर चाहिए इसको बनाने के लिए, उसको हवा में तो हम नहीं बना सकते ना, कंटेनर आपको लगेंगे। तो ऐसे ही है जब हमको इसको बनाना है, जब इसकी सामग्री की बात करें तो जाहिर सी इसके लिए हमको कुछ बनाने की चीज़ चाहिए, तभी तो हम इसको बना पाएंगे। वेदर मेरे पास चाहे मेरे पास कंटेनर रहे, एक कंटेनर का हम व्यवस्था कर ले, नहीं तो किसी पास अगर जमीन है तो गड्ढा खून ले, और गड्ढा भी ऐसा खोलना है, कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो, जिससे हवा आ भी सके जा भी सके, और नमी भी उतना ही मेंटेन रख सके जितने हमें नमी चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान में हमको रखना है। फिर वो क्या, अगर मान लो आपके पास नहीं ज़्यादा ज़मीन है, छोटा सा कोई प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें छोटे छोटे आपने छेद कर दिया जिससे हमारा हवा पास होता रहे, हवा आता रहे जाता रहे, जिसको हम इंग्लिश वर्ड्स में बोले तो एरेसन बोलते हैं, मतलब हवा का आदान प्रदान होता रहे, और हमारा मॉइस्चर भी जिसको नमी बोलते हैं हिंदी में वो मेंटेन रहे। ये चीज़ें का हमें व्यवस्था कर लेना है। फिर क्या करना है हमको, उस जो हमारा कंटेनर हमने लिया है, जो हम डब्बा एक बोल लें, अगर हिंदी में बोलते हैं डब्बा लें, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा किचन वेस्ट है, जो हमारा रसोई में जो हमारे आ रहे हैं, जो भी हमारे सब चीज़ के बचे हुए जो जिसका मैंने बताया जिक्र किया, उसको एक लेयर डाल देना आपको, उसको पहले बिछा देना है, पहला लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारी थोड़ी मिट्टी है उस थोड़ी मिट्टी को डाल देना, उस फिर सेकंड लेयर जिसको बोलते हैं सेकंड लेयर, उस सेकंड लेयर मिट्टी के लेयर को डाल देना है। फिर इसी मिश्रण को आपको चार पांच लेयर करके ऐसे बनाने हैं, और फिर इस मिश्रण को क्या करना है आपको, हर दो तीन दिन पे या उसको आपको हिलाते रहना है। हिलाना क्यों है, हिलाने के पीछे भी रीजन है, उसमें जो एरेसन होता है, उसमें जो हवा है, जो नमी है, जितना चाहिए उतना उसमें मेंटेन रहे, उसमें जितना हमें जरूरत है उतना उसमें रहे वो, इसलिए हिलाते रहना उसको। और उसको ज़्यादा भी नमी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, इसको कोशिश करना है कि थोड़ा छायादार जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट सूर्य का धूप ना पड़ता हो, तो और थोड़ा सूखा रखें, नमी भी उतना ही रहे जितना जरूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं पानी उसमें से निकल रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं जैसे हम बोलते हैं, नहीं, नमी जितनी जरूरत है उतना ही, कोशिश करें हल्का भुरभुरा टाइप का, सूखे टाइप का हल्का रहे। और फिर इसको ढक कर रखना है, और यही इस ढक के बस आपको डालते रहना, आप देखेंगे 2 से 3 महीने जैसे होगा ये भीतर ये खाद तैयार हो जाएगा। जैसे आपने जो डाला था जिसके बड़े बड़े टुकड़े थे, आप वो टुकड़े को देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए हैं, और सारे हल्के भूरे से काले रंग में बदल जाएंगे, और इनकी गंध से भी पहचान सकोगे कि ये हमारी खाद क्या है, तैयार हो गई है। ये तो पहला हमारा रहा जो हमारा किचन खाद, जिसको हम किचन वेस्ट खाद बोलते हैं। और दूसरी भी विधियाँ हैं जिसमें अगर मान लो इसी खाद में प्रयोग करने में मैंने अगर जिसको केचुआ होता है, केचुआ का प्रयोग कर लिया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इस खाद को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको, हम केचुआ खाद बोलते हैं। तो इसकी भी सामग्री की हम बात कर लेंगे, क्या क्या हमें सामग्री इनको लगेगी बनाने के लिए। इनकी सामग्री में आपको केचुआ लगेगा ही लगेगा, जब मैंने केचुआ खाद ही बोला तो केचुआ से ही तैयार होगा। रसोई का हमारे जो कचरे हो गए, हमारे जो भी हमारे हो फल साग सब्जी जितने अंडे के छिलके वो हो गए, वो सारे लगेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, पहले वाली विधि में बताया। दूसरी सूखी पत्तियां भी बताया था, गोबर भी मैंने आपको बताया था। गोबर आप याद रखिए, गोबर जब भी डालना है कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर डालिएगा, कि ताज़ा गोबर जो रहता है ना उस पर जल्दी हमारे जो सूक्ष्म जीव है ग्रो करने का ज़्यादा चांस रहता है, अटैक ज़्यादा करते हैं वो, तो कोशिश कीजिए 15 से 20 दिन पुराना गोबर ले लीजिएगा। और नमीदार मिट्टी जो हमारी होती है वो मिट्टी का थोड़ा हमको प्रयोग करना है। इसके लिए भी हमें क्या लगेंगे, आपके पास डब्बे हैं तो वो सही है, अगर नहीं है तो आप एक बक्सा ले भी सकते हैं, उसको छेद नुमा बना देंगे जिसे हमारा हवा का आदान प्रदान होता रहे। और फिर उसमें हमें क्या करना है, एक नमी की मिट्टी जो हमने बोला उसको बिछा देना है। फिर उसमें हमें क्या करना है, आपको जो हमारे रसोई के हमारे कचड़े आए सूखी पत्तियां उनको क्लियर बना देना है। फिर हमारे जो केचुए लगे, केचुए के हम मैं ये आपको यहाँ नहीं बताऊंगी कितना स्क्वायर फीट का बना रहे हो, जब हम कभी अपने जहाँ कॉमर्शियल इसकी खाद की प्रोडक्शन करते हैं इतना स्क्वायर फीट के लिए हमको इतना 1500 से 2000 केचुए छोड़ने पड़ते हैं, उसमें लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ हमें कोई तय नहीं है, हम अपने घर के लिए बस जो डेली यूज में हम जिसको बर्बाद करते थे फेंक देते हैं रोड पर, ऐसी कचरा फैलता है, देखने में हमारा अच्छा नहीं लगता है, जो भी हम जगह पर रहते हैं गंदगी फैलती है, उससे अच्छा है कि इसका हम खाद का प्रयोग कर लें। तो जैसा आप कंटेनर ले लें उसके अनुसार अपनी अपनी सूझबूझ को प्रयोग करते हुए आप केचू का प्रयोग कीजिए। कितना इसमें अगर बड़ा सा कंटेनर है, मान लो 200-500 लीटर का कंटेनर है, तो आप उसमें कितना केचुआ जाने जिससे हमें केचुआ बन जाए। केचुआ क्या करता है, जो भी हम ये सब डाल रहे हैं हमारे रसोईया से जो हमारे पदार्थ मिले हैं, जो हमारे किचन वेस्ट मिले हैं, जो हमें सूखी पत्तियां हम डाल रहे हैं, उसको केचुआ क्या करता है, मट्टी हम जो नमीदार डाले उसका ये भोजन का है, भोजन का स्रोत है, और ये जो भोजन के स्रोत में ये खाता है उसको तो खाएगा तो क्या करता है, जब ये उसका काष्ठ निकलता है खाने के बाद, जो उसकी काष्ठ निकलते हैं जिसको हम उसका क्या बोल सकते हैं, हाँ तो

जो मैं बता रही थी केचुआ का क्या है, भोजन का स्रोत है। तो भोजन का स्रोत है, जब भोजन करता है तो जाहिर सी बात वो भी मलमूत्र त्याग करता है, और उससे जो मलमूत्र का त्याग होता है और उससे जो खाद बनते जाते हैं ना, वो देखोगे कास्ट जिसको बोलते हैं, अर्थ होम कास्ट बोलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक खाद तैयार कर देता है, और ऐसे ही करके इसका भी लेयर तैयार कर देते हैं। और हर इसको ढककर हमें रखना है कि दूसरा जो सूक्ष्म जीव है उसमें ग्रो ना कर जाए। और थोड़ा इसको अगर आपको गोबर मिलता है तो गोबर डाल दें, नहीं तो थोड़ा नमी मेंटेन करने के कागज जो अवेलेबल होता है ना, तो कागज को थोड़ा गीला करके भी आप फैला सकते हैं। और इसको आप क्या करें, ढक कर रखें, हर 15 दिन पे थोड़ा आपको उलट फेर करना होगा, जिसे हमारा प्रॉपर एरेशन, जिसको हवादार नमी हवा उसकी सब वर्तमान जितनी हमें चाहिए संतुलित मात्रा में सब उसमें अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मौजूद रहें। और 15 दिन पे जैसे उलट फेर कर रहे हैं तो, और ऐसे ही करना है हमको 2-3 महीने तक। और 2-3 महीने का लास्ट में आप देखेंगे ना, ये केचुआ खाद जो हमारा जैविक खाद केचुआ खाद जो हमारा था, ये बिल्कुल अच्छे से अपने हल्के भूरे रंग, इसका भी रंग वैसा ही होगा हल्के भूरे रंग का से काले रंग में, अब बिल्कुल दानेदार में ये बदल जाता है, जो अच्छा वाला खाद जैविक खाद बनता है हमारा केचुआ के माध्यम से, जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं। और 2-3 महीने में खाद हमारा तैयार करते हैं, कर सकते हैं। ये हमारा केचुआ खाद के बारे में हो गया। इसके अलावा हमारे और चीज़ें बहुत सारे हमारे पारंपरिक खाद तैयार किए जाते थे, जो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे पहले जमाने में, जब हम जीवामृत करते थे हमको वो सब हम तैयार करते थे। और अभी भी हम जब जैविक खाद की ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो सारे प्रयोग हमारे फिर से हमारे ज्ञान में आ गए हैं, और उसको हम प्रयोग कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ तक ये बात हमारी नहीं पहुँच पा रही उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, हम जहाँ रहते हैं हर हमारे अड़ोस पड़ोस में अवेलेबल है, बस उनको हमको अपने आँख उठाकर देखने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने देखने की जरूरत भी है और इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने प्रयोग में लाने की जरूरत है। प्रयोग में लाने के बाद हमें जहाँ इसको उपयोग करना है उसको उपयोग करने की बात है। ये बहुत चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं बट उसको हम ना कभी एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तो हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है एंड देन उसको एक्शन में भी लाना है। और तीसरा मैं आपको बताने जा रही थी वैसा जीवामृत, ऐसे तो बहुत तरीके हैं हमारे बनाने के, और तीसरी मैं बता रही हूँ जीवामृत जिसको बड़े इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, मैं उसी खाद को लिस्ट की हूँ यहाँ पर। तीसरी खाद के बारे में बता रही हूँ आपको जीवामृत, ये जीवामृत कैसे तैयार करते हैं। जीवामृत सब समझ ही रहे हो क्या होगा, जो हमारे मवेशी होते हैं, हमारे गाय भैंस ये सब होते हैं, तो उनके चीज़ों से हमें तैयार करना है। जिसके यहाँ मवेशी ओवेसी है तो आपको इसके लिए क्या सामग्री लग जाएंगे, गोबर लग जाएंगे, गोमूत्र लग जाएंगे, गुड़ लग जाएगा, थोड़ा बेसन लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगा। जब इसके बनाने की विधि क्या है ना, जब आप इसकी बनाने की विधि बने तो जो इसका अनुपात मैंने बताया ना, अनुपात अभी बोला नहीं है, बस सामग्री में जो बताया इसका अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अनुपात में आप गोबर ले रहे हो, कितने अनुपात में गोमूत्र ले रहे हो, कितने अनुपात का गुड़ का प्रयोग कर रहे हो, बेसन का प्रयोग और मिट्टी का प्रयोग कर रहे हो। अब बनाने से पहले आती है बात आती है कि आप कितने लीटर क्वांटिटी में, जैसे ये आपको यूजुअली क्या होता है, इसको मिट्टी पे भी प्रयोग करते हैं और पौधे के ऊपर भी प्रयोग करते हैं। ये जो जीवामृत बनाते हैं हम ना, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसको हम बोलते हैं तरल जैविक खाद है, ये तरल नुमा होता है। तो कितने लीटर पानी में इस घोल को तैयार करना चाहते हो, बात ये आती है। तो मैं आपको सामग्री का जो लिस्ट दूंगी 200 लीटर के बेसिस पे दे रही हूँ, आप अपने अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हो, आप अपने अनुसार इसका गणना करके कैलकुलेशन करके आप बढ़ा सका घटा सकना है। अगर मैं 200 लीटर की कैपेसिटी के अनुसार बता रही हूँ आपको, 200 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करने हैं, तो 200 लीटर में कितना किलो गोबर लगेगा। 200 लीटर के लिए आप इसको जरूर कहीं आप होगा सुन रहे होगे, आप इसको मेंशन करना। अगर 200 लीटर पानी में आप घोल तैयार करना चाहते हो उसमें 10 किलो हमको गोबर डालना है। गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए, 15 से 20 दिन जैसे उसका जो हमारा तापमान हो ना, जो ताज़ा गोबर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें तापमान में कमी आ जाए, कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। 10 किलो आपको गोबर प्रयोग करना है और सेम मात्रा में 10 किलो आपको गोमूत्र यूज करना है। और सेम मात्रा, देखो गोबर और गोमूत्र दोनों का मात्रा क्या हो गया, सेम हो गया। 200 लीटर के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 10-10। गुड़ बोला, बेसन बोला, तो ये गुड़ और बेसन का भी मात्रा अनुपात जो है एक सेम रहेगा, एक एक रहेगा। 1 kg गुड़ हो जाएगा, 1 किलो आपका बेसन हो जाएगा। और थोड़ी मिट्टी प्रयोग करना है हमें, थोड़ी मिट्टी को उसमें 200 लीटर पानी ले लेंगे और घोल को तैयार कर लेते हैं। और इस मिश्रण को हम क्या करते हैं ना, ढक कर रखते हैं हर 2 से 3 दिन पर। इसको हम क्या करते हैं, एक लकड़ी बड़ा सा ले लेते हैं, अगर ड्रम में तैयार कर रहे हो तो, जो हमारे ड्रम होते हैं, और 2-3 दिन पे इस लकड़ी हमारे पास बड़े जो लकड़ी होते हैं कहीं भी ये मिल जाते हैं, उस घोल को हमें मिश्रण को घुलाते रहना है, जिससे प्रॉपर हमारा जो मिक्सिंग हो रही है ना, जब इसका विघटन तैयार हो, जो हम डाल विघटित होता है तो प्रॉपर विघटित हो, पूर्णतः हो जाए ये। और 5 से 7 दिन में ये जीवामित्र आपको देखोगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 5 से 7 दिन ओनली लेगा, 5 से 7 दिन में ये जो जीवामित्र हमको तैयार हो जाएगा। और इसका तैयार हो जाने के बाद आप इसका प्रयोग डायरेक्ट आप फसलों पर छिड़काव करके कर सकते हैं।

0: करते हो, ये ना ओनली पोषक तत्व प्रदान करता है पौधों को, इसके अलावा आप जानते हो गोमूत्र, गोमन में बहुत पावर होता है, इसमें जो उसमें रोग लगते हैं, जो उसमें हमारे कीटनाशक कीट लग जाते हैं, उससे भी ये पौधा को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये बहुत चीज़ों के लिए फायदेमंद होता है। ये जो मैं सरल सरल विधियाँ थी वो विधियाँ को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की हूँ अपने तरफ से।
1: अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है?
0: हाँ, अब बात आती है कि अब तो हम बनाने की विधि हमने बता दिया, क्या क्या सामग्री लगेंगे, क्या लगेंगे, अब आते किन किन बातों को हमें ध्यान रख रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा जैविक खाद घर पर ही हम तैयार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जैसे मैंने अगर आपको बोला है कंटेनर, आपके पास उतनी जगह ज़मीन नहीं है जहाँ आप गड्ढे खोद कर बना सकें, प्लास्टरिंग कर सकें, प्लास्टिक मतलब एक सीमेंटेड आप एक एरिया तैयार कर लो उसके लिए, गड्ढा नहीं आपके पास है तो कंटेनर लेना आता है। कंटेनर आप जब भी लोगे ना, जो हम कंटेनर सामग्री में जो हम सामग्री को डालने के लिए कंटेनर का प्रयोग या डब्बे का प्रयोग जो भी करते हैं उसका चयन सही होना चाहिए। जो भी हम जैविक खाद हमको बनाना है तो कभी भूल कभी जैसे हम कर तो लेते हैं ऐसा, बहुत जगह आप देखो जैविक खाद प्लास्टिक का या धातु का है, कोई भी रासायनिक जो हमारे धातु मतलब वो रासायनिक चीज़ें हैं उसका प्रयोग लोग कर लेते हैं, आप उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, उसका ना करें, आप इसका प्रयोग ना करें। और दूसरी बात है, जब हम खाद बनाने के दौरान जो हम कंटेनर पर्याप्त कंटेनर लेते हैं ना, उसमें कभी कभी बहुत जगह देखा गया कि उसमें पर्याप्त छेद नहीं किया हुआ रहता है, अगर नहीं बनाया आप तो उसमें पर्याप्त हवा और नमी बना नहीं रहता है, और पर्याप्त अगर हवा नमी नहीं बना रहेगा तो खाद हमारा पूर्णतः विघटित नहीं होता है और खाद मेरा अच्छा तैयार नहीं होता है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हमको सूखापन या बहुत ज़्यादा अधिक नमी में खाद में हमको बनाए नहीं रखना है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही बनाना है, मीन्स बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है उसको और बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं रखना है कि जिससे हमको वहाँ से पानी निकलने लगे, तो अगर ऐसा होगा कंडीशन तो आपकी जो खाद की गुणवत्ता है ना वो प्रभावित हो सकती है। चौथी बात आपको क्या रखना है, हमको जो जैविक खाद की मैंने आपको सामग्री बताया उसका अनुपात आप बिल्कुल सही रखिएगा। जैसे हम जैविक कचरे के लिए हमारे जो हमारे किचन का वेस्ट हो गया, सूखी पत्तियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, इसका अनुपात सही बना कर रखिए कितने कितने जाएंगे जिससे हमारे खाद अच्छे प्रयोग में आ सकें। और चौथी बात है, पांचवी बात यह है, जब हम खाद बनाने के सही स्थान का चयन करते हैं ना, वो स्थान का चयन सही कीजिएगा, वो स्थान जो होना चाहिए आपको डायरेक्ट जो हमारे सूर्य की धूप होती है वो जगह का कभी ना चयन करें, वो जगह कोशिश करें कि छायादार हो, सूखे स्थान पर हो, सूखे स्थान पर हो मतलब ऐसा जगह ना चयन करें जहाँ पानी बहुत जल्दी लग जाता हो, पानी लग जाते हैं जहाँ उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाता है, थोड़े पानी वहाँ पर लगे रह जाते हैं, तो ऐसा स्थान का प्रयोग कभी ना करें। जगह छायादार होनी चाहिए, अगर धूप आ रही है तो धूप आए, धूप भी जरूरत है लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए, ये कोशिश करनी है। ये पांच छह बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं।
1: इसके बाद जैविक खाद को हमें स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे स्टोर?
0: अब आते हैं बनाने का, तो ये हो गया, हम जैविक खाद को स्टोर कैसे कर सकते, ऐसा तो नहीं है कि जिस कंटेनर में आपने बनाया उसी में छोड़ दोगे, क्योंकि आपने एक लॉट तैयार कर लिया था, किचन जो हमारे वेस्ट होते हैं उनको कंटिन्यू प्रोसेस है, हम डेली खाना बनाते हैं, डेली हमारे वेस्ट जनरेट होते हैं किचन से, तो आप और बनाना चाहोगे, जो आपने खादे बना लिया अब उसको कैसे उसको हम उसको स्टोर करें, संरक्षित करके अपने जगह पर रखें जिससे हम आगे चल के हम अपने फसल के लिए जो भी हम मतलब छत पे उगाते हैं साग सब्जी उसमें भी प्रयोग कर सकें, चाहे थोड़े से ज़मीन हमारे हैं वहाँ पर भी फल साग सब्जी उगा रहे हैं उसमें भी प्रयोग कर सकें, तो इसको स्टोर कैसे किया जाए? आपको जैविक खाद को क्या करना है, एक सूखे और छायादार स्थान पर रखें जो बन गए हमारे, और इसे ढक्कन वाले जो कंटेनर होते हैं ना उसका प्रयोग करें, जो बन गया है उस डब्बा में डाल दें और उसका ढक्कन का प्रयोग जरूर करें, अगर ढक कर रखोगे ना जितने सूक्ष्म जीव उस पर ग्रो ना करें, अब बाकी चीज़ में जिसका गुणवत्ता हमारा मेंटेन रखें, और नमी से बहुत ज़्यादा नमी नहीं उसमें होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी, ऐसा नहीं कि जब खाद को आप हाथ में ले उसे पानी निकलने लगे, थोड़ा सा बीज दबाया तो पानी निकल जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, नमी से भी उसको बचा कर रखना है। और कंटेनर कैसा प्रयोग करना है, जो डब्बा है उसका जिसका ढक्कन वाला होना चाहिए, उसमें आपको जो हमारे खाद तैयार हो गए उसमें रखें, नमी से बचा कर रखना है, और यही सारी इस तरीके से आप ना जो हमारे बने हुए खाद हैं हमारे जो कंपोस्ट खाद तैयार हो गए हैं उस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, लंबे तक सुरक्षित रखेंगे तभी आप अपने फसलों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। छोटी सी विधि है कि उसको कैसे प्रयोग कैसे इसको स्टोर कर रख सकते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं हमारे जूट सैक जूट वाली बोरा उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, कट लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है हमारा नमी बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, कहीं थोड़ी बारिश वारिश हुई तो नमी वो बहुत इजीली ऑब्जर्व करता है, जो हमारा खाद बनाते हैं ये बहुत पोरस नेचर का होता है तो बहुत जल्दी पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, ये शोषित कर लेता है, तो वो कोशिश करना है कि ऐसा कंटेनर ले जिसमें छेद वेद कहीं ना हो, उसमें रख दें, ढक्कन से लगा दें उसका, नमी बहुत ज़्यादा ना जाए, नमी उतना ही जितना ऑलरेडी बना था उतना ही नमी उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उसमें होना चाहिए, तब भी आप लंबे समय के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं।
1: जी, जैविक खाद के
0: कर सकते हैं
1: जी, जैविक खाद के उपयोग के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ फायदे होंगे अगर किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करते हैं।
0: जैविक खाद करने के उपयोग और फायदे तो आपको इस बातें से समझ में आ रही है, मैंने पहले ही बोला जैविक खाद मतलब प्रकृति खाद, प्रकृति खाद बोलने का मतलब जहाँ प्रकृति चीजों का जिसके जो हमारे यूज में नहीं है उस चीजों का प्रयोग करके हम बनाते हैं उसको हम जैविक खाद कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक चीजों का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो पहला फायदा तो हमारा यही हो गया कि रासायनिक जब इसका प्रयोग से हम खेती करेंगे तो हमारा खेत कैसा होगा, वो रासायनिक मुक्त खेती होगा हमारा। इसमें जैविक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं तो जो जैविक खाद का प्रयोग करें फसल भी वही खाएगा क्योंकि फसल का भोजन वही है। तो जो हम और उस फसल में रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हो रहा है, जो फसल आते हैं जो फसल का इल्ड आता है वो हम खाते हैं, तो जैविक चीज़ें जो हमारे हैं वो हम तक पहुँचेंगे, तो हम भी शुद्ध, पौधा भी शुद्ध, हमारे मृदा भी शुद्ध, हम भी स्वस्थ, तीनों चीज़ स्वस्थ हो गए हमारे। हम जो चेन में बोलते हैं ना एक फूड चेन से हम कनेक्टेड होते हैं, तो फूड चेन हमारा बिल्कुल शुद्धता हो गया, बिल्कुल प्राकृतिक चीजें आ गई, ये फायदा हो गया। प्रकृति का संरक्षण हो ही रहा है, प्रकृति संरक्षण आप इसे समझ सकते हो जहां रासायनिक चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये जैविक प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना रहे हैं, ऐसी का प्रयोग मिट्टी में कर रहे हैं, और जो चीज मिट्टी में जाती है वो फसल में जाती है, फसल में जो जाती है वही हम खाते हैं, वही जानवर तक पहुंचती है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। और वही मिट्टी में जो चीज डालते हैं तो ये पोषक तत्व, तो मैंने पहले ही बताया पोषक तत्व तो प्रदान करता है फसलों को, जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व तो चाहिए पौधों को वो प्रदान करता है। अब बहुत से हमारे पोषक तत्व होते हैं पौधे उसको वहां से ग्रहण किए तो किए, नहीं तो वो बहकर पानी में चला जाता है। अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे पानी भी प्रदूषित होता है, हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो जब हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो जो वहाँ से बहकर पानी में जाएगा तो वो भी प्राकृतिक है, वो पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं होगा, मिट्टी प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा जलवायु प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा हम मनुष्य हम जानवर कोई भी प्रदूषित नहीं होगा, सब प्योर प्राकृतिक रहेंगे। ये हमारे फायदे हो गए, जो हमारे मतलब हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें आते हैं सब सुरक्षित रहेंगे, सब प्राकृतिक तरह से स्वस्थ रहेंगे, धनी रहेंगे।
1: तो किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय के बारे में, तो इसके क्या कुछ फायदे हैं ये आपने जाना। तो आशा करते हैं कि जैविक खाद की तरफ आप भी जोर देंगे इस प्राकृतिक खाद की तरफ, और अपनी भूमि अपनी खेत को आप अपनी मिट्टी को आप स्वस्थ बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।

0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
0: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें, लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बौनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ।

0: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
3: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
2: हाउ आर यू?
4: Thank you,
2: congratulations.
4: Thank you, Dom. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
2: Come. Hey.
3: Come.
2: Dom, please come here.
3: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh,

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओ।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का।

0: भाव। उन्होंने कहा,
1: अभी मैं जीना चाहता हूँ, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
0: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ₹1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
9: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
2: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
2: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
11: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
12: हाँ।
11: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
13: आग का गोला?
11: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ? एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
13: बहुत आसान पूछते हो।
11: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
13: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
11: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना? कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
13: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
11: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
14: वो तारा होता है।
11: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
15: रात और दिन भी बनाता है।
11: एकदम सही, एकदम
14: वो
11: सही।
14: हमें धूप भी देता है।
11: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
13: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
11: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
13: विटामिन डी।
11: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
14: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
11: हाँ हाँ बिल्कुल।
13: पेड़ों को खाना भी देता है।
11: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
13: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
11: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
13: हाँ।
15: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
11: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
13: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
11: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
13: वो तेज चलती है, वो भी तेज चल रही है।
14: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
11: ना।
14: मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
11: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता
13: है।
11: हाँ। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
13: वो बहुत बड़ा भी होता है।
11: बहुत बड़ा होता है
14: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
11: हम क्योंकि कई
13: दूर होता है, इसलिए
11: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
13: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
11: हाँ
14: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
11: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
12: सर्दी।
11: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
13: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
11: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
14: नहीं
11: है
14: करता।
11: सूरज आग का गोला, लेकिन
12: सूरज आग का गोला लेकिन
11: फिर भी जीवन दाता है।
12: फिर भी जीवन दाता है।
11: धरती काटे चक्कर इसके,
12: धरती काटे चक्कर इसके,
11: लगे ये चलता जाता है,
12: लगे ये चलता जाता है।
11: सर्दी गर्मी बनते इससे,
12: सर्दी गर्मी बनते इससे,
11: ये दिन रात बनाता है,
12: ये दिन रात बनाता है।
11: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
12: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
11: सूरज ये
12: कहलाता है।
11: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
13: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
11: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
14: जल्दी आना मौसी।
11: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
13: देर की होगी तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
16: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं
13: आऊँ। वो भी दस पूछेंगे,
16: दस पहेलियाँ। चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
13: डर जाती है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
16: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
14: नहीं, 80 हो जाएंगे,
16: 100 हो जाएंगे, 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
17: उमंग उमंग उमंग उमंग
18: सीरो के आगे सीरो, सीरो के पीछे सीरो, आगे सीरो पीछे सीरो। क्यों है इतने जीरो?
19: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
18: लेकिन ऐसा क्यों?
19: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
18: तो इसका हल क्या है?
19: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
18: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
19: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली की ओर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में पेश हैं, यानी उन्नत कृषि कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, तो ज़रूर आपके लिए कुछ खेती बाड़ी की बातें होंगी, जिससे कि आज के हमारे जो युवागण हैं वो भी जुड़ें और वो भी समझें खेती से क्या क्या आप संभावनाएँ आपके लिए लाई जा सकती हैं और कैसे आप खेती कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इससे जुड़े आप जान सकते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसे, और बहुत ही खास विषय लेकर हमारे बीच आज डॉक्टर AK झा हैं, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। हमारा विषय है जल कुंभी के प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। तो आज डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे हम इसे जलकुंभी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें इसके बीच में आएंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
6: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, खास करके जैविक खाद है, जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब, गोबर और फसल अवशेष का प्रयोग करके
5: जी
6: केचुआ की सहायता से बनने वाला खाद, जो कि सामान्यतः भूरे रंग का या काले भूरे रंग का होता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
5: जी,
6: वर्म मतलब केचुआ और उसकी सहायता से बनने वाला खाद यानी वर्मी कंपोस्ट ये होता है।
5: यानी गोबर और जो केचुआ है उससे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, और हमारे फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, आज के परिवेश की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है?
6: देखिए, वर्मी कंपोस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि यदि हम समान गोबर की खाद की बात करते हैं तो उसकी तुलना में इसमें पोषक मान काफी होता है, और साथ ही साथ में इसमें एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बताऊं, जो गोबर की खाद है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होगा, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1% से ज्यादा नाइट्रोजन होगा। फॉस्फोरस भी गोबर की खाद में सिर्फ 0.2% होगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में यदि देखते हैं तो इसमें 0.8% से ज्यादा आपको फॉस्फोरस होगा। पोटास भी उसमें यदि हम गोबर की खाद में देखते हैं तो सिर्फ 0.5% हो गया, यानी आधा परसेंट, और यदि हम पोटाश इसमें देखते हैं वर्मी कंपोस्ट में तो उसमें 0.8% के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो आपका पोषक मान है वो ज़्यादा है, यानी कि कम मात्रा में हम खाद डाल करके, वर्मी कंपोस्ट डाल करके ज़्यादा पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा पहले था, क्या था कि हमको गोबर खाद की बहुत ज़्यादा मात्रा लगती थी।
5: बिल्कुल,
6: यह जरूरी हो गया हुआ है कि हम ऐसे जैविक खाद की बात करें जिसमें कम मात्रा में हमको प्रयोग करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमको पोषक मान की पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके, जिससे कि कम मात्रा में ही हम अपने खेती को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, हम अपनी मिट्टी को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत है।
5: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें आपने बताई कि आजकल जो है क्यों बढ़ रही है इसकी मांग, लेकिन अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में, तो क्या जलकुंभी का उपयोग हम कर सकते हैं, और अगर उसकी जगह पर हम पुआल का उपयोग करें तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा?
6: देखिए, एक तो पहली बात कि पुआल आदमी जानवर को खिलाने के लिए भी प्रयोग करता है, तो उतना पुआल तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो फसल जलाते भी हैं। लेकिन ये जो जलकुंभी है, ये हमारे यहाँ खास करके यदि देखें तो यह एक प्रॉब्लमेटिक वीड की तरह है।
5: अच्छा।
6: समस्या पैदा करने वाला ये खरपतवार है जो हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित करता है। तो यदि हम यह बात देखें कि जो हमारे पास फालतू में पड़ा हुआ है, यदि हम सिर्फ बिहार की बात देखते हैं, तो बिहार में लगभग आपको 9.12 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो कि वेटलैंड है, और वहां पर जो ये वाटर हाइसेंथ यानी जलकुंभी जो है वह एक प्रॉब्लमेटिक वीड है। तो इसका यदि हम प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में, तो एक तो ये बात है कि ये फायदेमंद है। दूसरी बात, यदि हम पोषक मान की बात यदि देखते हैं, तो पोषक मान भी इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यदि हम इसमें देखें जलकुंभी में, जलकुंभी में नाइट्रोजन आपको ज्यादा है यानी 2.373% है, जबकि यदि हम पुआल को देखें तो पुआल में सिर्फ 0.61% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस इसी तरह से देखें तो जलकुंभी में जहां पर 0.583% है वहां पर पुआल में सिर्फ 0.1% पाया जाता है। पोटास लगभग लगभग दोनों में बराबर पाया जाता है। जस्ता यदि देखते हैं तो 250 ppm के आसपास पाया जाता है जलकुंभी में, जबकि 17.7 यानी 18% के आसपास आपको जस्ता पाया जाता है पुआल में। और इसी तरह से हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा लगभग 1824 ppm पाया जाता है ये जलकुंभी में, लेकिन सिर्फ 57.9 ppm पाया जाता है आपको पुआल में। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें पोषक मान ज्यादा है, और कोई जो केचुआ की खाद बनाते हैं बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो कहीं बाहर से तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या पोषक मान लाता नहीं है।
5: बिल्कुल,
6: जो आप सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में यदि ज्यादा मात्रा में पोषक मान है तो उससे बनने वाला जो बर्मी कंपोस्ट है उसमें ज्यादा पोषक मान होगा। तो इसीलिए यह यदि हम जलकुंभी से बनाए तो उसका पोषक मान ज्यादा होगा। साथ ही साथ जो यह एक समस्याग्रस्त हमारे पास ये है जो हमारे जल संसाधन को प्रदूषित कर रहा है उसका एक उपचार भी हो जाएगा, एक उपयोग भी हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आप पुआल के स्थान पर, जैसे मान लीजिए 2 भाग आप प्रयोग करते हैं पुआल और 3 भाग प्रयोग करते हैं आप गोबर की खाद, उसके स्थान पर यदि 2 भाग यदि आप जलकुंभी को प्रयोग करें और 3 भाग गोबर का प्रयोग करें तो उससे जो बनने वाला बर्मी कंपोस्ट होगा उसका पोषक मान ज्यादा होगा। इसीलिए जिसकी संभावना बहुत बढ़िया है और आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि इसका हम प्रयोग करें।
5: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हम समझ गए कि जल कुंभी का प्रयोग अगर हम ज़्यादा करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं डॉक्टर साहब। तो बिहार के परिवेश में जो देखा जाता है जल कुंभी का प्रयोग लोग करना चाहते हैं, इसको तो इसकी क्या संभावनाएँ हैं?
6: अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बिहार में लगभग 9.12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो समस्याग्रस्त है, खास करके वेटलैंड है। तो उस वेटलैंड में आपको जल कुंभी वैसे ही पैदा हो जाता है, और जलकुंभी वहां पर पैदा होकर के वहां न तो कोई फसल पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके जल संसाधन है उसको भी प्रदूषित करता है। तो बिहार में काफी ज्यादा जगह पर आप देखते हैं कि ये जलकुंभी है और काफी ज्यादा मात्रा में है। तो यदि हम बिहार की बात करें, वहां के जल संसाधन को हम ठीक ठाक करना चाहते हैं, उसके क्वालिटी को ठीक रखना चाहते हैं, तो वहां पर काफी इसका इसकी संभावना है, काफी इसका स्कोप है। यानी इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक तरफ तो हमको गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट बनता है, और साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो जो हमारा प्रदूषण की समस्या है उससे भी निजात मिलता है। यानी इसकी काफ़ी संभावना है बिहार के परिवेश में।
5: जी, तो इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं बिहार के परिवेश में। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे हैं जलकुंभी का, तो इसका प्रयोग अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो पोषक मान में क्या अंतर आता है?
6: अभी हमने आपको बताया है कि आपने देखा भी है, सुना भी है कि ये जो जलकुंभी है, जलकुंभी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं इसकी मात्रा पुआल के तुलना में ज्यादा है। यानी उससे यदि हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान जो होगा वो ज्यादा होगा। अब जैसे हम एक बात कहें कि हमने केवल गोबर से यदि बनाया हुआ है या जो जलकुंभी है और इसको जैसे हमने बताया कि 40% आप जलकुंभी ले लीजिए और इसको क्या कहते हैं 60% आप गोबर लीजिए, तो उससे यदि आप बनाते हैं तो उसके पोषक मान में कितना अंतर होता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि ये जो पैडी स्ट्रॉ है
5: जी,
6: उसको यदि बनाएंगे तो आपको उतना पोषक मान नहीं मिलेगा। सिर्फ गोबर से यदि हम बनाते हैं तो 1.667% अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 1.5% के आसपास उसमें आपको नाइट्रोजन रहता है। यदि हम वही जलकुंभी और इसका जो अभी हमने बताया 2 भाग जलकुंभी और 3 भाग जो आपका गोबर है इसको मिला करके बनाए तो वहां 2% के आसपास 1.983% नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से फास्फोरस भी सिर्फ गोबर से यदि बनाते हैं तो वो 0.8% के आसपास होता है, 0.719% पाया गया हमें। और वहीं पर यदि हम जो जलकुंभी के साथ मिला करके यदि देखा तो वहाँ पर 0.88% के ऊपर हमको फास्फोरस पाया गया। पोटास भी यदि हम देखते हैं तो सिर्फ गोबर से बनाते हैं उसकी तुलना में इसमें पोटास भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिला। और वहीं पर यदि हम पुआल से बनाते हैं तो पुआल में देखिए फास्फोरस हमने अभी बताया 0.1% ही फास्फोरस होता है, तो उसमें सिर्फ पुआल से यदि आप बनाते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होगी। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूं मित्रों कि अब जो बर्मी कंपोस्ट है यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आ गया हुआ है, यानी आप ऐसा ही बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या उसको बेच सकते हैं जिसमें 1% कम से कम नाइट्रोजन हो, 0.8% फास्फोरस हो, 0.8% पोटास हो या उससे ज़्यादा हो, उसी को आप बेच सकते हैं। तो यदि आप इसका व्यापार भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों को मिला, और यदि हम उसमें जलकुंभी मिलाते हैं तो यह हमारी समस्या कुछ हद तक दूर करती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग काफ़ी फायदेमंद है और ज़रूरी भी है।
5: जी डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की और जलकुंभी की, तो जलकुंभी का प्रयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे कर सकते हैं वो भी बता दें।
6: अब देखिए, एक किसान था सुपौल का, वो जो करता था वो क्या करता, एक भाग आपको ये लेता था जलकुंभी और 5 भाग इसमें आपको गोबर मिलाता था। अच्छा। और उसमें भी उसके जड़ को काट के हटा देता था जलकुंभी के जड़ को, और उसमें जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है वह भी थोड़ा सा कम है, हालांकि उसी के आसपास है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके जड़ को आपको काट के हटाना है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पर शोध करके ये देखा गया कि आखिर हम इसमें कितना परसेंट तक मिला सकते हैं, तो हमने देखा, जो हमने पाया है कि इसमें यदि आप 40% तक, यानी 2 भाग जितना पुआल का आप करते हैं, यानी 40% तक यदि आप जलकुंभी मिलाते हैं वहां तक आपका केचुआ उछुआ बढ़िया बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। केचुआ का भी विकास होता रहता है, उसकी मोटाई वगैरह वगैरह भी बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब कि आपको ये करना है कि 40% जो आपका ये है जलकुंभी, उसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में 1 इंच के टुकड़े में काट दें, और इसको 60% गोबर इसमें मिला दें, गोबर मिला करके इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता के लिए, और उसके बाद उसे ढेर बना करके उसमें फिर केचुआ का प्रयोग कर दें। और जैसे आप सामान्य बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कि उसमें सिंचाई करते हैं, नमी 60-70% बना करके रखते हैं, तो ये आप करके रखेंगे। अब ढेर विधि ज़्यादा आपके लिए सहूलियत है तो ढेर विधि में ही कीजिए। अच्छा। तो ढेर विधि में आपको हमने बताया कि 40% उसमें जलकुंभी लेंगे, 60% गोबर लेंगे, दोनों को मिला करके प्री डाइजेशन के लिए 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उससे ढेर बना लीजिए। ढेर की चौड़ाई कभी भी 4-6 फीट के बीच में ही रखिए।
5: अच्छा।
6: उसकी ऊंचाई 2.5-3 फीट से ज्यादा नहीं रखिए, और लंबाई जितना बड़ा आपका छप्पर है, सेड है, उसी के हिसाब से आप लंबाई रखें। उसके बाद जब आपने देखा कि ये जो हमारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया, हाथ डाल करके देखा कि ये ठंडा हो गया, तो उसके बाद उसमें आप केचुआ डाल देते हैं, और केचुआ डाल करके आप उसको छोड़ देते हैं, और यह आपको धीरे धीरे बर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित होने लगता है। जब चाय की पत्ती जैसी संरचना आपको बनना शुरू होता है, उसमें 2-3 दिन के लिए सिंचाई रोकिए, और ऊपर में वो चाय की पत्ती जैसी जो संरचना है उसको हटा लीजिए। हटा करके फिर चाल करके आप पैक कर लीजिए, जिससे कि 15-25% नमी हो, क्योंकि यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत है कि उसमें 15-25% के बीच में नमी रहनी चाहिए। जो आपका टोटल कार्बन है वो 18% से ज्यादा होना चाहिए। तो यह तो गुणवत्ता तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप नमी बरकरार किए हुए हैं, उसके बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
5: जी तो डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
6: मैं तो यही सुझाव देना चाहूंगा कि आपके पास उतना पुआल है नहीं, उतना गोबर है नहीं, तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास पुआल उतना है नहीं जिसका प्रयोग या भूसा का ही प्रयोग आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में करें, और उतना गोबर भी नहीं है। तो गोबर नहीं है तो गोबर का एक 40% सब्स्टिट्यूशन तो इससे हो सकता है, वाटर हाइसेंस से, और वो तो फालतू चीज पड़ा हुआ है, तो उस फालतू चीज का प्रयोग आप बर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा वो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो जो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है कि यह जो हमारे पास एक वीड है, हमारे पास जो खरपतवार है, एक तरह का ये खरपतवार ही है, इसका आप प्रयोग बर्मी कंपोस्ट बनाने में करें। इससे आपका जो जल संसाधन है वह भी आपको प्रदूषण मुक्त होगा, साथ ही साथ आपको फायदा भी होगा। आप जो बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। इसके चलते ये होगा कि जहां पर ज्यादा मात्रा में बर्मी कंपोस्ट, अब एक छोटी सी बात समझिए ना, यदि आप बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें 1% नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही, तो वहां पर यदि मान लीजिए 40 क्विंटल लग रहा है तो 2% वाला जो होगा वहां पर आपको सिर्फ 20 क्विंटल ही लगेगा, तो बर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी बचेगी और तब आप इसका प्रयोग आप अपनी खेती में कर सकते हैं।
5: जी, तो किसान भाइयों आपने सुना कि जल कुंभी का प्रयोग आप करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है और संभावनाएं भी हमारे बिहार क्षेत्र में इसकी बहुत ही अच्छी है। तो फायदा इसी में है कि आप इसके प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाइए। और साथ ही कुछ अच्छी बातें यहाँ पर आपको जानने को मिली हैं इस संदर्भ में, तो अगले

0: एपिसोड में अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 MHz यानी FM ग्रीन। उन्नत कृषि
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 cm करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई

करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वाकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, जिसमें हम बातें करते हैं किसान भाइयों की. आज किसान भाई, जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, खेती बाड़ी के नए नए गुण अपना रहे हैं और इसी में से एक आता है जलवायु अनुकूल या मौसम अनुकूल खेती. जी हाँ, आज हमारा विषय है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व. और आप सभी को पता है कि वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ख़ास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए. तो इस विषय पर खास चर्चा होगी. आज हमारे बीच हैं वरीय वैज्ञानिक अंशुमन कोहली, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं ये, और आज पूरी जानकारी मिलेगी हमें इनसे. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: जी धन्यवाद. किसान भाइयों को, आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार.
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज कहा जाता है कि जैसे कि आज का ये एरा है, उसमें मौसम अनुकूल या जलवायु अनुकूल खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये समझा दें, हमारे श्रोताओं को आप ये समझाएं कि मौसम अनुकूल खेती और जलवायु अनुकूल खेती में क्या अंतर है, क्या है ये.
1: धन्यवाद. किसान भाइयों को जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले कुछ और जानकारी मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहूँगा. देखिए, किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं, और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है. मौसम और जलवायु दोनों के तत्व समान ही हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि तापमान, वायु का दबाव, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इत्यादि. और यदि हम बात करें कि आज गर्मी अधिक है, आज उमस अधिक है, आज वर्षा हो रही है, अथवा आज तेज़ हवा चल रही है, तो यह तो ही मौसम की बात. परंतु यदि हम कहें कि मेघालय में वर्षा अधिक होती है या जून में भागलपुर में उमस अधिक होती है, भागलपुर में वर्षा का वार्षिक औसत 900 मिलीमीटर है इत्यादि, तो यह बात है जलवायु की. अब मौसम के अनुकूल कृषि क्या हुई? जैसे कि रबी और खरीफ की फसलों की खेती, जो कि आमतौर पर सभी किसान करते हैं. कुछ प्रगतिशील किसान ग्रीन हाउस पद्धति से गैर मौसमी फसलों की भी खेती करते हैं तथा भरपूर लाभ उठाते हैं. यह सब अपनी जगह ठीक है, पर जलवायु अनुकूल कृषि क्या हुई? जो हमारे दीर्घकालिक मौसम का जो औसत है उसके अनुरूप की जाए.
0: जी, तो सर आपने अभी कहा था शुरुआत में कि जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो बेहतर तरीके से अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दें तो और ज़्यादा उन्हें ज्ञान हो जाएगा इनके बारे में.
1: जी, तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम दीर्घकालिक मौसम के औसत के हिसाब से खेती करें तो वो होगी जलवायु अनुकूल कृषि, यानी उस जलवायु के हिसाब से खरीफ में कौन सी फसलें किस पद्धति से लगाई जाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, तो वो जलवायु के अनुकूल हो सकती हैं. अब किसी भी पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति वहाँ की जलवायु के अनुसार ही अवतरित होते हुए पनपे हैं. सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों की पारंपरिक फसलें अधिकतर जलवायु के अनुकूल ही हैं. जो हमारी पुराने ज़माने से जो पारंपरिक फसलें चल रही थीं वो सब जलवायु के अनुकूल ही हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या एवं प्रगति की होड़ में अक्सर गैर टिकाऊ प्रक्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को कम करने के लिए कृषि में जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए. इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही स्तर पर परिवर्तन करने होंगे. सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों स्तर पर, अर्थात किसान के व्यक्तिगत स्तर पर तथा एक वृहद भौगोलिक स्तर पर फसलों का चयन जलवायु के अनुकूल किया जाना चाहिए. मसलन, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ के दौरान धान की जगह मक्का का चुनाव करने से भूमिगत जल स्रोतों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह रबी के दौरान गेहूं के स्थान पर वर्षा सिंचित दलहनी एवं तिलहनी फसलों यथा चना, मसूर, खेसारी, तिस्सी, सरसों इत्यादि का चयन पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ माना जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि जलवायु अनुकूल फसलों के चुनाव से हम उस पारिस्थितिकी में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, प्रकाश, वायु अथवा जैव संसाधन कुछ भी हो सकते हैं।
0: तो जैसा कि डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। तो अगर हम बात करते हैं वर्षा जल संचयन की, हम इसे करके कैसे मतलब जलवायु अनुकूल कृषि की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी, अब आज की चर्चा का विषय चूंकि जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन है, आगे की चर्चा में हम जल प्रबंधन पर ही केंद्रित रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तम फसलोत्पादन में सिंचाई और जल निकासी का बहुत महत्व है। किसी पारिस्थितिकी में वर्षा का होना या ना होना, किस वेग से होना, कितनी वर्षा होना इत्यादि वहाँ की जलवायु का प्रतीक है। इसी तरह तापमान, आर्द्रता इत्यादि, यह सब भी वहाँ की जलवायु को डिफाइन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को भान है, हर फसल के लिए जल की आवश्यकता कितनी हो यह फसल के साथ साथ मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करता है। अर्थात फसल का चुनाव व जलवायु, इन दोनों पर ही यह निर्भर करता है कि जल की आवश्यकता आपकी फसल के लिए कितनी होगी। सिंचाई के लिए जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यथा जीवाश्म ईंधन, भूमिगत जल स्रोत, सतही जल स्रोत इत्यादि, उन सभी का योगदान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सराहनीय है, आशातीत है। साथ ही साथ कृषि हेतु भूमिगत जल के प्रयोग से भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। इसकी वजह से गैर कृषि कार्यों के लिए जल और अधिक गहराई से निकाला जाता है, जिससे कि जल के उपभोग की पर्यावरण लागत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सतही जल के सिंचाई हेतु प्रयोग से सतही जल की उपलब्धता गैर कृषि कार्यों के लिए घट जाती है। वर्षा जल का संचयन करने से जल के भूमिगत एवं सतही संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही साथ कृषि की पर्यावरण लागत भी कम की जा सकती है तथा कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वर्षा जल संचयन के द्वारा परंपरागत जल स्रोतों के दोहन को कम करके कृषि की पर्यावरण लागत को कम करते हुए जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि के सभी क्रियाओं को बेहतर ढंग से करते हुए तथा जल की बचत करते हुए कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है।
0: जी, और डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें लिमिट लेस तो नहीं है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी में से एक है हमारा जल। जी हाँ, क्योंकि ये हमें बचाना, इसे संरक्षित रखना है, और क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी में अगर किसान भाइयों से हम इसे जोड़ें, तो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्षा जल वो संचयन करें तो बेहतर होगा कि उनकी जो पानी है उसकी बर्बादी कम होगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे वो वर्षा जल संचयन

0: जल संचयन हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा तथा सदैव तैयार रहना होगा। अपने खेत में प्रबंध रखने से यदा कदा पड़ने वाली वर्षा का जल संचय किया जा सकता है। जैसे कि खेत के चारों ओर की मेड़ मजबूत एवं ऊंची रखनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी खेतों के अंदर ही एकत्रित रखा जा सके तथा खेत की जमीन में पानी को रिसने के लिए समुचित अवसर मिल सके। और दूसरी बात कि खेत में समुचित मात्रा में कार्बनिक खाद का व्यवहार निरंतर करना चाहिए ताकि मृदा की भौतिक अवस्था स्थिर एवं कायम रह सके तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अच्छी बनी रहे। इसके बाद तीसरी बात कि यथासंभव न्यूनतम जुताई तथा श्रेष्ठ फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाना चाहिए जो कि मिट्टी की भौतिक अवस्था को अच्छा रखने में सहायक होते हैं तथा वर्षा जल संचयन में मददगार साबित होते हैं। फिर खेतों को जोत के अनुसार लेजर लेवलर इत्यादि उपकरणों की मदद से समतल करना चाहिए ताकि सिंचाई एवं वर्षा जल नियंत्रित रखा जा सके तथा समान रूप से पूरे खेत में सिंचाई एवं जल निकासी की व्यवस्था की जा सके। और फिर किसान भाइयों को यह भी चाहिए कि अपने खेतों में सदैव वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप ही कीटनाशक एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि अपरिहार्य स्थिति में खेत से निकासी किया गया जल पर्यावरण को दूषित ना कर सके। इसके बाद फसल चक्र का सही चुनाव से एक फसल के बाद मृदा में बचा हुआ जल अगली फसल के प्रयोग में आ सकता है। अतः पारिस्थितिकी के अनुसार फसल चक्र का चुनाव करने से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वर्षा जल का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। एक और बात कि आकस्मिक एवं असामयिक वर्षा तथा तीव्र गति की वर्षा होने की स्थिति में खेतों से जल निकासी का भी समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। निकासी किया गया जल किसी गड्ढे या पोखर में इकट्ठा करने से हम आने वाले दिनों में उसको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर अंत में एक बात कि खेत के बाहरी किनारों एवं मेड़ों पर साल भर हरी रहने वाली चारे की फसल या घास जैसे कि हाइब्रिड नेपियर इत्यादि लगाने से वर्षा जल का बहाव धीमा होने के साथ साथ मृदा का अपरदन भी कम हो सकता है तथा मृदा की भौतिक अवस्था भी अच्छी बनी रहती है। तो यदि किसान भाई इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है और इस परिस्थिति में सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ऐसी व्यवस्था होने से हमारा कृषि तंत्र एक बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की ओर अग्रसर होगा तथा जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ व्यवस्था का हिस्सा बन सकेगा।
1: जी, तो इस प्रकार आपने श्रोताओं जाना कि कैसे जलवायु अनुकूल कृषि में जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच थे डॉक्टर अंशुमन कोहली जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस खास विषय के बारे में। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों, समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए, जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं। और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती है वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देखरेख, उस पैसे की देखरेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं, और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
8: कौन सी कहानी टीकी?
7: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
7: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
8: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
7: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
10: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें हम बातें करते हैं खेती से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज भी कुछ ऐसी ही बातें हम लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। आज का हमारा विषय है केचुआ खाद बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता, यानी कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शिव पूजन यादव, जो कि वैज्ञानिक हैं केवीके बसुली महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, जो आप सभी को बताएंगे कि क्या होता है ये केचुआ खाद, इसे बनाने का तरीका क्या है, इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद मैम।
4: सबसे पहले तो केचुआ खाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
12: तो जो हम आज बात करेंगे केचुआ खाद की या बर्मी कंपोस्ट की, तो हम चाहेंगे कि जो, जैसा हम जानते हैं कि विगत वर्षों में जब हरित क्रांति आई तो हमने रासायनिक खादों का अंधाधुंध और अनियंत्रित तरीकों से प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई और आज हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की भी कमी होने लगी है। ऐसे में हमें ऑर्गेनिक खाद, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, उसमें केचुआ की खाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो केचुआ की खाद है क्या, तो हम बात करेंगे कि केचुआ जो हमारे अपशिष्ट हैं, चाहे कृषि से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे किचन से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर है, गौमूत्र है, उसके द्वारा जब हम उसको सड़ा के केचुआ डाल के, केचुआ अपने मल के रूप में उसको खा के मल के रूप में जो निकालता है, या केचुए का कोकून सड़कर खाद बन जाता है, तो इसे हम केचुआ खाद कहते हैं।
4: इसे बनाने की विधि के बारे में जानना चाहेंगे।
12: तो सबसे पहले हम केचुआ खाद बनाने के लिए, हमें सबसे पहला जरूरी होता है कि हम स्थान का चुनाव कैसे करें। जहाँ पे हम केचुआ खाद बनाने जा रहे हैं उसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ जो समतल जगह है उससे लगभग 3 फीट ऊंचा हो, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए और वो जगह छायादार स्थान में होना चाहिए। अगर छायादार स्थान में नहीं है तो हमें टीन का शेड लगाना पड़ेगा जिससे उसको छायादार बनाया जा सके। इसके साथ ही उसकी बनाने की विधि क्या है, तो हम इसको क्यारी बना के, ईंट से तैयार, कंक्रीट से तैयार क्यारी बना के उसमें केचुआ की खाद बनाते हैं। तो क्यारी का साइज हमें क्या रखना चाहिए, तो 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की या 50 सेंटीमीटर का क्यारी बनाएंगे। इसमें 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर गहरा क्यारी बनाएंगे। इस तरह की अगर हम क्यारी बनाते हैं ईंट से, तो उसमें लगभग 5 टन सड़ा हुआ हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है हमारे पास, वो उसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें होता है हम उसको अवशिष्ट पदार्थ को किस तरह से क्यारी में डालना है। तो कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जिसको, जिससे भी हम अपना खाद बनाने जा रहे हैं, केचुए की खाद बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी अवशिष्ट हमारे पास है उसको हम कहीं एक छायादार स्थान में ढेर बना के इकट्ठा कर लें और लगभग 15 से 20 दिन तक उसको कूड़ बना के, ढेर बना के रखे रहें और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे क्या होगा कि वो पार्शली डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कुछ मात्रा में वो सड़ जाएगा बाहर ही। पूरी तरह अगर हम डायरेक्ट उसको क्यारी में डाल देंगे, बनाने वाले गड्ढे में डाल देंगे, तो उसका तापमान अच्छा नहीं रहेगा और केचुए पे नुकसान पहुंचाएगा केचुए को। तो इसीलिए उसको हम पहले पार्शली डिकम्पोज कर लें, उसके बाद ले जाके हम जो क्यारी हमने बनाई है छायादार स्थान में उसमें हम उसको भर देंगे। भरने के बाद लगभग 4 से 5 दिन तक हम उसको पानी छिड़कते रहेंगे और भर के रखे रहेंगे। जब उसका तापमान एक पूरे गड्ढे में देखेंगे अगर बराबर आ जाता है, लगभग केचुए के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अगर इस तापमान पे जब हमारा गोबर या जो कंपोस्ट बना रहे हैं, जो भी सड़ा मटेरियल है उसमें भरा हुआ है, वो आ जाए, तो हम उसमें केचुआ डालेंगे। एक टंकी में, जो एक क्यारी मैंने बनाई है, उसमें लगभग 1 किलोग्राम केचुआ डालेंगे, जिसमें लगभग 5,000 केचुआ होंगे। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम केचुआ किस प्रजाति का केचुआ डालेंगे। तो उसमें होता है एसिनिया फोइटिडा है, एडुलस इजेनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केचुआ की प्रजाति है। इसको हम डाल के इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता खाद बदलने की बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे कि उसमें केचुआ भरने के बाद, जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको भरने के बाद, हम उसमें पानी का छिड़काव 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे, जिससे उसका तापमान बना रहेगा और उसमें नमी बनी रहेगी और केचुआ अपना विकास उसमें अच्छे से कर पाएगा और खाद को खाकर अच्छे से बदल पाएगा।
4: अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग के बारे में, कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है।
12: तो जो हमारा खाद बनकर तैयार हुआ है उसको अगर हम एक ही क्यारी में बनाए हैं तब तो हमें लेयर बाय लेयर उसको आसानी से निकालेंगे। अगर कई क्यारी में बना लिए हैं, जैसे अगर हम 100 मीटर वर्ग मीटर में अगर हम केचुआ की खाद बना रहे हैं तो इसमें लगभग 90 क्यारी हमारी, जितना मैंने साइज बताया है 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की क्यारी, लगभग 90 क्यारी बन जाएंगी। इस तरह से अगर हम खाद बनाते हैं तो हमें उसको लगभग खाद बनने में लगभग 30 से 40 दिन लगेगा डिकम्पोज होने में। तो उसमें हम 30 से 40 दिन बाद एक क्यारी में ऊपर की 6 इंच लेयर को निकालते रहेंगे और वो खाद केचुआ अपना नीचे की तरफ जाता है तो खाद बनाता हुआ चला जाएगा और हमारा खाद भी हम प्रयोग करते जाएंगे। केचुआ एक क्यारी से इस तरह बनाते हैं तो दूसरी क्यारी में अपने आप ही मूव करता है, चला जाएगा और खाद बनती निकल जाएगी। तो उसको निकालने के बाद हम उसको छानते हैं, 2 मिलीमीटर छन्नी से उसको अच्छे से छान लेंगे, जो उसमें कंकड़ पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, जो खाद होगी हमारी वो अच्छे से हमें मिल जाएगी। तो इस खाद में जो वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार होगा इसमें लगभग 1.5% नत्रजन होता है, 1.5 से 3% फास्फोरस होता है और 1.5% ही के आसपास पोटास होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी मिट्टी में अभी खासकर कमी दिखने लगी है। तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, उसके साथ ही इसमें बहुत कई तरह के एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अब इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, किस फसल में इसका कितना प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जो धान्य फसलें हैं, जैसे चावल है, धान है, गेहूं है, ये सब हैं, इसके साथ ही सब्जी है, तिलहन की फसलें हैं, दलहन है, तो इसमें हम 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे। इसको हम बुआई से पहले खेत में बिखेर देंगे और उसको जुताई करके अच्छे से खेत में मिला देंगे। इसी के साथ ही अगर हम फलदार वृक्षों में इसको प्रयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को हम प्रत्येक पौधे पर डाल के अच्छे से खुरपी से मिला देंगे। इसी तरह अगर हम घास के लान में डाल रहे हैं तो 3 किलोग्राम/10 वर्ग मीटर के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं।
4: और इससे क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा किसान भाइयों को?
12: तो जैसा मैंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट जो हमारा जैविक खाद है, तो जैविक खाद होने के कारण ये इसमें किसी तरह का कोई रसायन नहीं होता है, रसायन ना होने के कारण ये हमारी मृदा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। मृदा के भौतिक गुण में, भौतिक गुण मतलब उसकी संरचना और उसके संगठन में सुधार लाता है। उसी के साथ ही मृदा में वायु संचार, क्योंकि इसका पोरोसिटी अच्छा होता है तो वायु संचार मृदा में पोरोसिटी बढ़ा के उसका वायु संचार अच्छे से करता है। और जो हमारे वर्मी कंपोस्ट अगर हम खेत में डालते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव, जो हमारे बेनिफिशियल, जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, उनका भी संख्या बढ़ जाती है, जिससे खेत में वातावरण से नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण बढ़ जाता है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट को लघु या कुटीर उद्योग के रूप में हम बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
4: इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: धन्यवाद मैम।
4: और श्रोताओं, आप सभी से फिर मुलाकात होगी। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
13: आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
14: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
13: लेकिन ऐसा क्यों?
14: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
13: तो इसका हल क्या है?
14: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
13: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूमेन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
14: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और आज हम जानेंगे कि क्या हैं बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर RB वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं।
6: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हट के अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता है, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता है उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
5: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
6: बिल्कुल।
5: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी।
6: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
5: जी।
6: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या भी, आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
5: जी, जी।
6: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जोत जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
5: जी जी।
6: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
5: प्राइस कम हो जाता है।
6: उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं, कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है।
5: जी जी।
6: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर अगेती कर लेते हैं
5: पहले,
6: तो ये थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं मौसम से, थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50-60 रुपए गोभी बिक जाती है।
5: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से थोड़े महीने
6: थोड़ा सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन, पर डे, पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
5: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
6: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय में गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
5: जी जी।
6: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें बेमौसमी सब्जियों का, एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे, तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित है, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
5: चैलेंजिंग
6: होता है और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाईटेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
5: अच्छा।
6: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है, वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
5: ज्यादा होती है,
6: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ट कर सकते हैं, तो उसको एफर्ट मतलब उसको एडॉप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली, और जो कूलिंग, हाँ ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर से हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर हम उसको हटा देते हैं।
5: अच्छा।
6: तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
5: लो
6: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं, तो उसको ले जाकर के अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा जो होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
5: हमारे छोटे किसान,
6: हाँ, छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
5: अच्छा।
6: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
5: अच्छा।
6: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की, वैसे
5: हाँ।
6: हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी, कद्दू की जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
5: ठंडी के मौसम,
6: ठंडी का मौसम
5: आने से पहले, कुछ
6: नहीं, गर्मी आने से पहले।
5: अच्छा।
6: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च, मार्च में तो सबके, मार्च अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता है।
5: जी जी।
6: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक, कुछ
5: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
6: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
5: हाँ,
6: थोड़ा सा हमने
5: हाँ।
6: क्या किया, ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया, दिसंबर में ही लगा लिया
5: जी।
6: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
5: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उससे ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
6: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई हैं उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
5: जी।
6: तो ये लो टनल पॉली हाउस को, इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
5: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें। हाँ, तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
6: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की। थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
5: मिट्टी चाहिए।
6: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
5: नवसिखिए नहीं होना चाहिए बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए,
6: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
5: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
6: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको बताते हैं, लो वैल्यू हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
5: जी।
6: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
5: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
6: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
5: नहीं
6: होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़वार वाली सब्जियां में वो आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इससे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
5: नहीं हुआ,
6: तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है
5: जी।
6: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है
5: जी।
6: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी
5: जी।
6: 15,000 रुपए आपको लगाना है, जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं
5: 50% सब्सिडी सरकार की, 50%
6: सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
5: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है, 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके?
6: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती है, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गया, दूसरी उसी सब्जी से, सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है और कम क्षेत्रफल से। देखिए ना, आपका कितना जो है
5: लो वॉल्यूम हाई क्रॉप,
6: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते हैं, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं। और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में, आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर एक एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पॉली हाउस बनाया है, उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है,
5: जी जी,
6: बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं, जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं, तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली
5: ज्यादा
6: बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया, आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त
5: पैसा निकाल लिया
6: जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
5: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं, और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
5: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि
7: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
10: कौन सी कहानी टीकी?
9: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
11: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
9: एक था शिकारी। शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
9: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
11: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा

FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्र छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है। समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं।

अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दे, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में अमेज़न फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं, जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं, तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है, और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है पर उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है, और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है, और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,
5: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ अनु और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और खासकर जब और बात करें किसानों की, तो आप सभी को पता है कि किसान जो है आजकल रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो होता है लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे मैं पूछना चाहूंगी, सर कैसे जो किसान हैं वो अपनी उत्पादकता, फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाएं, और तो इन रासायनिक उर्वरकों से बचकर कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से।
6: देखिए, इसमें जो किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद से आजकल क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसको उत्पाद हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, उसका जो अवशेष, रासायनिक खादों का अवशेष हमारी बॉडी के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। तो प्रश्न आता है कि हम पोषक तत्व किससे दें? यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक। पहले जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का प्रायोगिक सम्मिश्रण है, जो कि समुचित मात्रा एवं तकनीक से व्यवहार करने पर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक कभी भी किसी कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जाकर के अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन का स्थिरण करते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं या बेकार होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु जाकर के मिट्टी में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील या बेकार पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, और उस अवस्था में उपलब्ध कराते हैं जिस अवस्था में पौधा लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सही तरह से करते हैं, तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं और पौधों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
5: तो सर ने बताया यहाँ पर कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, आप उनसे हटकर जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों, और उनके महत्व पर और भी ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और इनसे हम और भी बातें जानेंगे। और आगे सर हमें क्या बताना चाहेंगे आप इस जैविक उर्वरक के बारे में?
6: इसके बारे में हमको जानना होगा कि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है। तो ये हमको जानना बहुत अत्यावश्यक है कि जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में।
5: तो सर ने हमें बताया कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये और किस प्रकार ये रासायनिक खादों से अलग ये अपना काम करता है, सर आप हमें बताना चाहेंगे?
6: देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करते हैं या फिक्सेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78.6% नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, चना, मसूर, अरहर, उसकी जड़ों के अंदर ये गांठें बनाता है और गांठों के अंदर उस वायुमंडल को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अवस्था में चेंज कर देता है जिस अवस्था में पौधा लेता है, जैसे कि अमोनिकल है या नाइट्रेट है। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता जो कि हम DAP से यूरिया से देते हैं, तो इस तरह से ये उससे अलग होता है केमिकल से, और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है। खेती पर या मिट्टी पर, इसलिए ये बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा होता है पौधों को ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। तो फास्फोरस मुख्यतः पौधा आयनिक फॉर्म में लेता है, जो जो जो कि हम लोग आयन बोलते हैं। और जब हम डीएपी अप्लाई करते हैं तो डीएपी या एसएसपी जो फास्फोरस किसान भाई अप्लाई करते हैं तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 15-20% होती है। मतलब कहने का यह है कि 80% से 85% भाग मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है या उस अवस्था में हो जाता है जो कि पौधे के लिए बेकार होता है, अनुपलब्ध होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु खाद है, जब मिट्टी में जाता है और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसको अनुपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध कराता है और पौधा उसको यूज़ करने लगता है अपने कार्य के लिए।
5: तो आज उन्नत कृषि में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि,
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: एक साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
10: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि, ने हमें बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो इसमें एक जीवाणु का नाम आता है सर, और उसका नाम है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम। सर, इसका क्या काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी बातें होंगी उनके लिए।
6: देखिए, अभी जो राइजोम के बारे में बताया, तो राइजोम का प्रयोग केवल दलहनी फसलों में किया जाता है। और अभी आपने जो पूछा है एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम का क्या काम होता है, तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी के अंदर करते हैं। और ये जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी वाली फसल जितनी भी हैं, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल वाले वृक्ष जैसे कि लीची, आम, अमरूद, पपीता, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यदि किसान भाई साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने खेतों के अंदर, तो ये जीवाणु प्रति हेक्टेयर एक साल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनका प्रयोग करते हैं तो हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि डीएपी या यूरिया से देते हैं उसको सेव कर सकते हैं।
5: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो सर, हमने अभी बहुत सारी बातें जानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जाना और जीवाणु के बारे में जाना। और इसके बाद सर, ऐसा अक्सर देखा गया है कि खेतों में और मिट्टी में खासकर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, और इन अगतिशील पोषक तत्वों से पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जैव उर्वरक इन अगतिशील पोषक तत्वों को गतिशील बनाकर जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सके।
6: देखिए, आपने जो बात करी है अगतिशील पोषक तत्व, तो मृदा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि अगतिशील होते हैं। उसको उदाहरण बताना चाहूंगा। नंबर एक पे आता है फॉस्फोरस, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिंक है और आयरन है। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि मृदा घोल में अगतिशील होते हैं और पौधे की जड़ जहाँ होती है वहाँ तक वो आ नहीं पाते। तो पौधे की जड़ के आसपास जो भी पोषक तत्व होता है, फास्फोरस, जिंक या आयरन, वो पौधे के द्वारा यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसकी फिर से कमी हो जाती है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो दूर रखा हुआ फास्फोरस है वो उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्षण होता है कि वो अगतिशील है। तो इसके अंदर एक जैव उर्वरक आता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो माइकोराइजा एक फंगस या फफूंद का एसोसिएशन होता है, सहजीवी होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ में। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है और ये अपना भोजन उस पौधे से ही लेता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो हाइफी होती है या माइसिलियम होते हैं ये पौधे की जड़ों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो दूर तक फैलते हैं, कितना फैल जाते हैं, जो मान लीजिए पौधे की जो जड़ है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो भी अनुपलब्ध फास्फोरस था उसको ये लेकर के आती है, पौधे की जड़ के अंदर दे देती है। तो इसका मुख्य कार्य है कि पौधे की जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देना और दूर से अगतिशील पोषक तत्वों को मृदा पौधे की जड़ के अंदर लेकर के आना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। यदि किसान भाई इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम तक हम कटौती कर सकते हैं जो कि हम रासायनिक खाद के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक खादों के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं इसके बायोफर्टिलाइजर के या जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से,
5: या फिर यूं कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करते हैं अगतिशील पोषक तत्वों को मतलब गतिशील बनाने में और पौधों तक इसे अच्छे तरीके से पहुँचाने में।
6: हाँ, क्योंकि जो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बेकार पड़े होते हैं, क्योंकि पौधे से वो दूर है, पौधे से दूर है, पौधे के जब तक जड़ के पास में नहीं आएगा तो पौधे के लिए तो बेकार है। तो माइक्रोराइजा क्या करता है कि जो दूर पड़ा हुआ था अपनी हाइफी के द्वारा उसको पौधे की जड़ के अंदर डाल देता है और पौधे की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज करने लगता है।
5: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, और आगे कुछ बातें और भी जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि। हमारे आज चर्चा का विषय है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। और डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं जैव उर्वरक के बारे में यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में, और अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ये इनका जो इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, किस तरीके से वो इन्हें अपने खेत में डालकर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सर, अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनकी प्रयोग विधि है या फिर क्या होती है।
6: देखिए, सबसे अहम पहलू होता है जैव उर्वरकों की मात्रा और उसकी प्रयोग विधि। किसान भाई यदि सही से इसका प्रयोग विधि जानते हैं तभी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल पाता है खेत में। तो प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर एक पे आता है बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ द बीज होता है, यानी 20 से 25 ग्राम हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं और 1 kg बीज के लिए लेते हैं। जितना हम बायोफर्टिलाइजर या कल्चर लेते हैं उसका दुगनी मात्रा में पानी लेते हैं, और जितना पानी लेते हैं उसका 10% हम गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का जो गुड़ होता है जैगरी और या गुड़ ले लेते हैं। पानी के अंदर गुड़ को डाल लेते हैं और हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद केवल होता है कि गुड़ अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। जब ये गुड़ पानी में घुल जाता है तो उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में जो मैंने अभी मात्रा बताई थी जैव उर्वरक की या बायोफर्टिलाइजर की, उसको डाल करके हम एक लकड़ी की सहायता से उसको घोल देते हैं और ये अब ये घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद में जो सारे काम जो कर रहे हैं हम, ये छायादार स्थान होना चाहिए या कोई कमरा हो या पेड़ हो, उसके नीचे सारा काम करते हैं। और एक फ़र्श पर पॉलीशीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं और जो आपके बीज की मात्रा थी उस बीज को हम उस पर पॉलीथीन की शीट पर बिछा डाल देते हैं और ढेर लगा करके छोड़ देते हैं। फिर जो घोल आपने जैव उर्वरक का बनाया उसके ऊपर डाल करके उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं। हथेली से नहीं करेंगे, हथेली से करते हैं तो क्या होता है कि वो लेप उसका आ नहीं पाता है और लेप छूट जाता है। तो उंगलियों की सहायता से हम उस पर लेप लगाते हैं और लेप लगाने के बाद में, उस सॉल्यूशन का लेप लगाने के बाद में, उस प्लास्टिक की शीट पर हम बीज को बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूखने में लगभग 45 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। यदि हवा चले जल्दी सूख जाता है, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो देर में सूखता है। सुखाने के बाद जिस खेत में आपको इसको बोना होता है या छींटना होता है, लाइन में लगाना होता है, उस खेत में ले जाते हैं और इसको बुवाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। दूसरा विधि होती है मृदा उपचार। तो बायोफर्टिलाइजर के द्वारा या जैव उर्वरक के द्वारा हम मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दर है उसकी 2 किलोग्राम पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, चाहे वो एजिटोवेक्टर हो या एजस्पाइलम हो या PSB हो। तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम 100 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट लेते हैं। 100 किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट लेकर के उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको 5 किलोग्राम कल्चर को, और पूरी नाइट या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद में सुबह जा करके जिस खेत में बिखेरना होता है उसमें हम इसको बिखेर देते हैं और हल्का सा फिर हल्का कल्टीवेटर या हैरो से इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रखते हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट करें बायोफर्टिलाइजर को खेत के अंदर तो धूप ना हो। तो हम संतुष्ट हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो बखेरते हैं इसको सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और बखेरने के तुरंत बाद इसको मिक्स करना होता है। तीसरी विधि आती है बिचड़ा उपचार या पौध उपचार। तो पौध उपचार के लिए इसकी जो दर है वो 2 kg पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसको मात्रा को लेकर के 100 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं और एक घोल बन जाता है। घोल बनाने के बाद जो बिचड़ा है उस बिचड़ा को उखाड़ेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, और फिर 45 मिनट के बाद में जिस खेत में रोपाई करनी होती है उसमें हम इसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये 3 विधियाँ मैंने बताई हैं। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो इसका भरपूर और जो जितना हर संभव लाभ है वो मिल पाता है और पौधों को अधिक से अधिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो जाती है।
5: तो सर आपने बताया अभी जो जैव उर्वरक हैं, बायोफर्टिलाइजर हैं, उनके प्रयोग विधि के बारे में आपने बताया, और अब हम जानना चाहेंगे आपसे और किसान भाइयों, और किसान भाई भी आपसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि हम किन किन फसलों के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
6: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो जैव उर्वरक का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से किया जाता है और हर एक फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए मुख्यतः हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं और ये रिकमेंड करा जाता है, संशोधित किया जाता है कि जब भी हम राइजोबियम का प्रयोग करें उसके साथ में फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB का प्रयोग करना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए 2 जैव उर्वरक मैंने बताए, एक तो राइजोबियम है और दूसरा है PSB। और एजोटोवेक्टर का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली फसलें हों, धान्य फसलें हों, फूल वाली सब फसलें हों, फलों वाली सब फसलें हों। और इसके साथ में भी हम संशोधित किया जाता है कि PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि PSB का काम होता है पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराना। जब पौधों को फास्फोरस उपलब्ध ज़्यादा होती है तो पौधों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा होता है एजोस्पाइलम जैव उर्वरक। एजोस्पाइलम का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान्य फसलें, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि, और जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, गोभी हो, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फल वाली फसलें और पुष्प वाली सब फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा हमने बताया था माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, या फूलों वाली फसलें हैं, या फिर धान्य फसलें होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको किन किन फसलों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात और है जो कि होती है, क्या ध्यान रखें इनका जब हम प्रयोग करते हैं, तब ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमेशा बोला जाता है कि नाइट्रोजन वाले बायोफर्टिलाइजर के साथ में पीएसबी या फॉस्फोरस वाले बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है, कभी भी रासायनिक खादों के साथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया डीएपी भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ हो जाती है उसकी और वो मर जाता है।
5: तो सर आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए और जितने भी बहनें हैं, किसान बहनें हैं मेरी, उन सभी के लिए सवाल है। और वो ये है कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ, यानी कि इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है?
6: देखिए, जैव उर्वरक आपको किसी भी जो रासायनिक खाद बेचता है या दवाई बेचता है उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं। और यदि आपको हमारे विश्वविद्यालय का लेना है तो हम लोगों के यहाँ पर भी, हम लोगों की जो प्रोडक्शन इकाई है, उत्पादन इकाई है, उसकी क्षमता 500 मेट्रिक टन है। 500 मेट्रिक टन आप जानते हैं कि बहुत होता है, तो साल भर जितना आपको चाहिए उतना उपलब्ध रहता है। तो हमारे यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बायो लैब है जिसके अंदर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। और आपको ये राउंड द ईयर कभी भी आप आएँ, किसी भी टाइम आएँ, किसी भी प्रकार का जैव उर्वरक लेना हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
5: तो किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम उन्नत कृषि में आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दी हैं। और आपसे आगे भी मुलाकात होगी, हमारे किसान भाइयों और बहनों से भी आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
12: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
13: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 वीपीडी यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
12: लेकिन ऐसा क्यों?
13: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
12: तो इसका हल क्या है?
13: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
12: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
13: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें खासतौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा शायद, इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफी ज्यादा मदद करती है, काफी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफी इंप्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है, तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए, और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही ये कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है, ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है, तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है, लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है, पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ ना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है, तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे ख़ास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ ख़ास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, ये बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स है, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा। लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी। आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिलाएं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है। आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझिए कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए। आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं, थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं। और अवेयरनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब है पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की जरूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है। और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी जरूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए। और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए। जो भी मिथ्स हैं उसे खत्म कीजिए। और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है। थोड़े आराम की जरूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल। और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
6: लेडीज फर्स्ट।
7: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
8: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
7: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
9: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
10: कौन सी कहानी टीकी?
9: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
11: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
9: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
10: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
9: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
12: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, पशुपालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है। और इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं पशुओं को भी और पशुपालकों को भी। और इसलिए आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है।
1: देखिए, टीका वही चीज़ है जो जीव रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई जीवाणु है, विषाणु है, वो पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं, और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो टीका पशु के अंतर्गत पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है। उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है, रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है, लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। ये एक टीका हुआ। और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं। हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है।
0: अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी, जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का, तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, यानी कि विकसित होता है। और वो जब हमारे जो पशु हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में, या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई टीका के बारे में, और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें, और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है।
1: देखिए, वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
0: जी जी।
1: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत हो जाते हैं। पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है। यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम से कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में विदिन वीक, एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें।
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य है। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका। उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही। तो आप एक शेड्यूल बना लें, या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें, और उसमें ये चीज़ पशु जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं, आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए और क्या जरूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की। और इसके बाद जब हम किसी भी चीज को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि उसके महत्व को समझे, और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की। और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हम टीकाकरण

0: इसका महत्व क्या होता है?
1: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो, उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम एंटी सीरम कहते हैं। और कुछ ऐसा जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है, रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन, वो बदलते रहते हैं। तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और महत्व को अगर बताया जाए तो एक ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पुनः टीकाकरण यानी कि उसके बाद जो एक लिमिटेशन रहता है उस टीकाकरण का, यानी कि समय समय पर आपको एक डेट दिया जाता है और उस डेट के बाद आपको पुनः टीकाकरण करवाना पड़ता है अपने पशुओं का। और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी यही है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं के अंदर, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया उद्देश्य और महत्व के बारे में टीकाकरण के। और पशुओं को स्वस्थ रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है आपके। आप जितना स्वस्थ रहेंगे आपका पशु भी उतना स्वस्थ रहेगा, आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से, आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब पशुओं को टीकाकरण करवाया जाए तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम पशुओं को टीकाकरण करवाने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें।
1: देखिए, किसान बंधुओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि पशु को पहचानना कि वह बीमार है या स्वस्थ है। जब आप पशु पालन करते हैं तो पशु के व्यवहार लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह बीमार पड़ गया। और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पशु बीमार पड़ा, आप उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु से बीमार पशु को अलग रखें, उसका खान पान उसका देख रेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें। और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता। और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के ही समय अवधि पर किया जा सकता है,
0: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र अवधि होता है।
1: हर टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है, उसको सपोज कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका लगा दिए हैं, एफएमडी में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। एफएमडी रोग यदि देखा जाए, खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरियंट्स हैं, एशिया AO करके आता है। तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं, कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है। तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी है, थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। आप कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और खासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार पशु का ना खरीदें जिस क्षेत्र में पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं, एक्सपायर्ड टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं बिल्कुल कम टेम्परेचर पर, उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
0: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों, आप सभी का उन्नत कृषि में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, अध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब से आज हम बातें कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में, और बहुत सारी जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, आप सबों के सामने रखी हैं, और कुछ बातें और बाकी हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया था कि पशुओं को टीका देने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर पहले की बात हो गई तो अब बाद की भी बात हो जाए, तो टीकाकरण कराने के बाद पशुओं को किस तरीके से रखा जाए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे।
5: बिल्कुल, आप ये तो इंश्योर कीजिए कि जहाँ पशु रखते हैं साफ सफाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि पशु का आप टीकाकरण तो कर दिए हैं, लेकिन फिर भी दूसरी बीमारी भी हो सकती है उसमें।
4: यानी कि साफ सफाई बहुत
5: उसका
4: जरूरी है।
5: जो आवास प्रबंधन है, बिल्कुल आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पशु को साफ सुथरा रखें, और उसको जो आप खाना देते हैं वो कभी भी दूषित ना हो, कभी भी गंदा ना हो, कभी भी जो परचेज करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं, तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो, ऐसे खाना को दें। दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें। चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं, और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो, तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें, जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें। कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है, तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें, बछड़ा है बछड़ा को एक साथ रखें, जो गाय है उसको एक साथ रखें, बाछी को एक साथ रखें। अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं।
4: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं, छोटे और बड़े पशु जो होते हैं, उन्हें अलग अलग रखें, और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रखरखाव की, और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग विरोधी टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है, और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
5: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है, जो हो मतलब देखने को मिलता है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुरहा मुँहपका रोग, इसको खुरपका मुँहपका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से, यह विषाणु जनित रोग।
4: हाँ, ये किस जानवर में देखा जाता
5: ये
4: है?
5: ये गाय और भैंस में देखा जाता है, बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है,
4: गाय और
5: भैंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको, यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है। इस बीमारी से गला में सूजन होता है, और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया। कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है, गला, इसलिए इसका नाम गला घोटू रखा गया है। यह जीवाणु जनित रोग है।
4: अच्छा,
5: ठीक है। इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, यह भी जीवाणु जनित है, यह भी गाय भैंस में होता है, यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसे सड़न सा रोग हो जाता है, मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है, इसलिए इसका इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पे चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है।
4: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है?
5: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है, और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता है, और बहुत ही संक्रामक बीमारी है, एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं, इससे इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है, यह जो समय से गर्भवती पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं, ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है, इसमें मृत्यु तो बहुत कम होती है लेकिन यह जो है एबॉर्शन कॉज करता है, पूरा का पूरा एक किसान को जो नई गाय मिलती बछड़ा मिलता वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है, यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा, और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं,
4: यानी ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब,
5: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है, और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है, आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुरहा मुंहपका गलघोटू लंगड़ी ब्रुसेलोसिस एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण करके हम अपने पशु को अपने पशुपालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
4: और सर इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
5: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है, यह पशुओं में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है, यह एक संक्रामक रोग है, इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है, गौवंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है, तत्पश्चात प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें टीकाकरण कराएं। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं, मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू हेमराजिक सेप्टिसीमिया, बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है जो कि एक जीवाणु जनित रोग है, इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है, गौवंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है, मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी, लंगड़ी बीमारी इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं,
4: पॉलीवेलेंट
5: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है, आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है, यह भी गौवंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में दिया जाता है, और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं, इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए, यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात को रोकता है, जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में या फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है, मेल में होता है यह बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स, इस रोग में स्पोर का टीका दिया जाता है, एंथ्रेक्स का स्पोर टीका के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह टीका है, 1 मिलीलीटर टीका दिया जाता है।
4: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जो बहुत सारे रोगों के नाम बताए, और इसके साथ ही इन्होंने रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में टीकों के नाम भी बताए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो पशुपालक भाई हैं, अगर वो सफल टीकाकरण करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए?
5: बिल्कुल, सावधानियाँ ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है, और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
4: प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन इज प्रिकॉशन कहते हैं,
5: बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें, और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं, उसे आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य
4: चेक करवाएं, या फिर कुछ
5: जो भी ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी जरूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों में के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है, और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा
4: थनेला रोग
5: के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है हमने उस जीवाणु को पहचाना है।
4: हमारे यहाँ
5: रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है, और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
4: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए, तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए, और उनके जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा।
5: बिल्कुल, हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसान बंधु कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है और बस उससे कोई मतलब नहीं रहा, बांध दिए रस्सी में बंधा हुआ है, और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर, ऐसा नहीं हो। आप पशु के साथ जुड़ें, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
4: लेकिन मनुष्य के जैसे जुबान नहीं है,
5: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है। आप उसकी आंख देख करके, उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ठीक हो जाएगा। आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उचित उपचार कराएं। और हमेशा आप देखते रहें अगल बगल के क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैला है।
4: इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
5: सामान्य रूप से हम देखते हैं ठंडे के दिन में खुरहा मुँहपका रोग बहुत फैलता है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में खुरपका मुँहपका रोग FMD के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज। यह रोग ठंडी के दिन में फैलता है। और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी। यह बरसात के सीजन में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में ये रोग ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने पशु को इस समय में इस रोग से बचाएं और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें, जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएं और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन उसका शरीर
4: जो पोषक तत्व उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है।
5: हाँ, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित समय अवधि पर जरूर करवाएं।
4: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी, या फिर कहीं उसके बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की। तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए। तो आपको, अगर आप नए पशुपालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है।
5: बिल्कुल।
4: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
4: और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
8: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
9: कौन सी कहानी टीकी?
8: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
10: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
8: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
10: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
8: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
9: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
8: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी
10: बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
11: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया।
13: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैयां सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई।
14: पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही है।
15: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
14: अच्छा,
15: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
14: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
13: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
15: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
16: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
15: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
16: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
15: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। यहाँ से इसमें हंसने की क्या बात है।
16: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
15: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
16: ठीक है,
15: चल हट, हट, उड़।
16: ये अब नहीं निकलेंगी।
15: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
13: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
16: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
15: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
14: जी,
15: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
14: जी।
15: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
14: जी। अच्छा पिताजी।
13: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लग गए। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
16: अरे अरे,
15: अरे
16: क्या करते हो जी,
15: गलती से लग गया।
16: आराम से।
13: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
15: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
13: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
15: अरे
16: वो देखो फिर से आ गई घर में।
13: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
16: अरे रे, सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
15: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
16: सुनो तो, रुक जाओ।
13: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
15: गई।
13: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही हैं। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
15: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी चुन कर ये।
13: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो ना जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
16: तुम्हारे बस की नहीं है।
15: फिर कोशिश करता।
13: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
15: अब देखो,
13: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
14: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
16: हाँ?
14: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
16: अरे हाँ बेटे।
15: अरे
13: पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ हैं हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
16: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
13: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
15: अरे
13: वो उनकी नन्ही नन्ही चूचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
15: सच में

0: दो गौरैया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका पसंदीदा चैनल, जी हाँ 90.8। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, ड्रम सीडर से धान की बुआई के बारे में। और इस बारे में इस बहुत ही खास चर्चा को लेकर हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी। और मैं आपको बता दूं, ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से कृषि अभियंत्रण विभाग से। और आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंकज सर से हम कि धान की कौन सी प्रजाति, अगर हम ड्रम सीडर विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो धान की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहेगी?
2: कि धान की खेती दो तरह से होता है, जैसे असिंचित एवं सिंचित, दोनों परिस्थितियों में की जाती है। असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मुख्य जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों व पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेत में पानी भरने में बीए यानी कि खर्च अधिक आता है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई की तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है और दूसरी विधि में खेत में कदवा करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। अब है क्या कि बहुफसलीय बिजाई यंत्र खेत को कल्टीवेटर या डिस्क हैरो के द्वारा अच्छी जुताई करने के बाद लेजर लैंड लेवलर यंत्र द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उपर्युक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है तथा खेत के समतल होने से सिंचाई के समय में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। बुआई के समय खेत अच्छी तरह जुताई किया हुआ होना चाहिए और भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बुआई करें। अब बुआई का समय, धान की सीधी बुआई का उपयुक्त समय 20 मई से 30 जून तक होता है। मानसून आने से 10 से 15 दिन पहले है या मई के आखिरी सप्ताह से लेकर मध्य जून तक है। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे अधिक गहराई होने पर जमाव कम हो जाता है। अब आप का क्वेश्चन है कि प्रजातियां इसमें कौन सी लेना चाहिए और बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो लंबी अवधि की अगर धान आप अगर लेते हैं तो 145 से 60 दिन की अगर धान यहां पर ले सकते हैं, जो 20 मई से 10 जून तक आप इसमें बुआई कर सकते हैं। मध्य अवधि वाली अगर आप बुआई करते हैं, जो 130 से 135 दिन की अवधि होती है वाली बीज, जिसको आप 25 मई से 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और छोटी अवधि वाली अगर आप बुआई करना चाहते हैं बीज को, तो 115 से 120 दिन का वो फसल होगा, जो 1 जून से 30 जून तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। यदि 30 जून के बाद बुआई करनी है तो कम अवधि वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए, जैसे पढ़वात है, तुरंता है, ये सब वैरायटी आपको प्रजाति आपको ले लेना चाहिए।
0: जी, तो ये कुछ प्रजातियों के नाम है जो सर ने आपको बताया कि कौन कौन से आप प्रजाति लगा सकते हैं ड्रम सीडर विधि से अगर आप लगाना चाहते हैं। तो सर, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी होता है धान की सीधी बिजाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ड्रम सीडर है क्या। ड्रम सीडर अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बुआई किया जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है, ये तो हम पहले बता दिए हैं। खेत में पानी भरकर कदवा कर लें, यदि खेत में पानी भरा हो तो उसे निकाल दें। कादो करने के 48 घंटे पूर्व बीज को पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो दें। जूट की बोरी को भिंगोकर बीज को उपचारित करके लगभग 15 से 20 घंटे तक अंकुरण होने के लिए छोड़ दें। बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दें और इसे ड्रम सीडर में आधी आधी मात्रा भरकर आप कदवा किए हुए खेत में चला दें। बीज बोते समय खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, बीज को चिड़िया से शाम के वक्त बचाना चाहिए।
0: तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं ड्रम सीडर की जो आप बता रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है, कार्य क्षमता इसकी कितनी होती है।
2: देखिए, इस मशीन का बनावट एवं कार्य क्षमता, जैसे कि इसमें दो चक्का होता है, 4 से 6 तक वाली ड्रम इसमें हो सकता है, जिसे 4 ड्रम का अगर होगा तो ये 8 लाइन में बुआई करेगा, और 6 ड्रम का अगर आप लेते हैं तो आप उसमें जो है 12 लाइन में आपको उसमें बुआई होगा। लेकिन इसको एक हैंडी बनाने के लिए, जैसे कि आप इजी से अगर यूज कर सकने के लिए 4 ड्रम ठीक होता है। हाथ से खींचने के लिए हैंडल होता है। यंत्र का कार्य क्षमता 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकते हैं। आप जैसे पहले आप क्वेश्चन किए कि धान की सीधी बुआई क्यों, वर्षा एवं सिंचाई जल की कमी होता है, वर्षा का असमान वितरण और भूमि जल में निरंतर गिरावट हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य में निरंतर ह्रास हो रहा है, मृदा में दरारें फटना, सिंचाई नमी का तीव्र ह्रास हो रहा है।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कार्य क्षमता और बनावट ड्रम सीडर मशीन की, और इसके साथ ही सीधी बिजाई के बहुत सारे लाभ हैं। तो सर, आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को।
2: धान की सीधी बुआई से लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कम जल की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व ईंधन की बचत होती है। आप जानते हैं कि 1 लीटर अगर आप डीजल जलाते हैं तो 2.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो वातावरण को गर्म कर रहा है, और आप उत्पादन के कुछ खर्चे में बचत होता है, किसान के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी, मृदा की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होता है, अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल की परिपक्वता अवधि में कमी होती है। वो कमी इस कारण से होता है कि आप जब कदवा करके जब बिचड़ा को आप जब खेत में लगाते हैं तो लगभग 6 दिन तक का बिचड़ा जो है एक स्टैंडिंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो उसमें कोई तरह का बढ़वार नहीं होता है, तो ये इसमें वो समय को काउंट किया जाता है। और मृदा जैव कार्बन में वृद्धि एवं मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है। और मीथेन उत्सर्जन, जो कदवा आप करते हैं मीथेन उत्सर्जन में उसमें आप कमी आता है, कदवा की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। और हमें एक कहना चाहेंगे कि इसमें कि पोषक तत्व भी कुछ प्रबंधन करना चाहिए। बुआई के समय में 50 किलोग्राम DAP बुआई के साथ तथा 25 किलोग्राम MOP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव 3 बार में देना चाहिए, एक तो 15 किलोग्राम बुआई के 15 दिन बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए, 30 किलोग्राम कल्ले निकलते समय, 45 किलोग्राम बाली निकलने के पूर्व प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व की अगर कमी दिखाई दे तो आप आयरन और जिंक 1% यूरिया और 0.5% जिंक और 0.5% फोरस सल्फेट के घोल में 2-3 बार 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करें
0: जी।
2: और इसमें जो ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, रिक्त स्थानों को भरना। तो बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद देखें कि यदि कहीं कहीं जमा ना हुआ हो और जगह खाली हो तो सिंचाई या वर्षा के समय उसी खेत में से जहां अतिरिक्त पौधे हों उखाड़कर खाली स्थानों पर रोपाई कर दें, इससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
0: तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और अगले दिन अगले विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
3: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: लगेगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। वैसे तो पता है आप सभी को किसान भाइयों की, हमारे राज्य में धान की खेती बहुतायत में हो रही है, और अगर समय पर खरपतवार प्रबंधन ना किया जाए तो 50-70% तक उत्पादन में गिरावट दर्ज हो सकती है। तो ज़रूरी है कि खरपतवार का प्रबंधन किया जाए। तो डॉक्टर साहब आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि में।
5: थैंक यू।
3: और डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खरपतवार प्रबंधन है क्या?
5: देखिए, खरपतवार प्रबंधन में अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी फसल हो, जितने भी उसमें अनवांटेड वीड हैं, जैसे कोई पौधा है, धान की हम कोई प्रजाति लगाए हुए हैं, उसके अलावा धान का दूसरी प्रजाति हो या कोई दूसरा प्रकार का पौधा हो, उसको हम खरपतवार की श्रेणी में लाते हैं। तो उसका सही समय पे उसका पूर्णतया नियंत्रण करना, जिससे कि मुख्य फसल पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े, हम उसको खरपतवार प्रबंधन में कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत सी विधियाँ हैं हमारे पास। कुछ एग्रोनॉमिकल मेथड हैं, सस्य वैज्ञानिक मेथड्स हैं, कल्चरल मेथड्स है, इंजीनियरिंग मेथड्स है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं, खरपतवार नाशी हैं, इत्यादि बहुत सी विधियों का हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार के प्रबंधन के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि धान के खेत हमारे बिहार राज्य में 3.5 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में हो रही है, और अगर शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन ना किया जाए, इन खरपतवारों को समय नियंत्रण ना किया जाए, तो शुरू के 40-50 दिन का समय जो होता है, 40 दिन तक का जो समय होता है, वो बहुत ही क्रांतिक होता है। अगर इसमें हम इसका प्रबंधन कर देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और 40 दिनों तक हम खरपतवार को नहीं प्रबंधन कर पा रहे हैं तो उत्पादन में 40% से लेकर के 70-80% तक भारी कमी देखी गई है, उत्पादन में कमी हो जाती है। इसलिए इन खरपतवार का प्रबंधन समय करना बहुत ज़रूरी है।
3: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया किसान भाइयों और बहनों कि 40 दिन के अंदर खरपतवार का प्रबंधन हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उत्पादन में कमी आ सकती है, और अगर आप उत्पादन में वृद्धि लाना चाहते हैं तो खरपतवार प्रबंधन 40 दिन के अंदर कर दें। इसके बाद डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार प्रबंधन क्यों करना चाहिए?
5: देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो मुख्य फसल धान है, या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है, या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन बढ़ जाती है। या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है, या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के

0: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है। क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन।
1: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी और इनसे हम चर्चाएं कर रहे हैं आज धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी, आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि,
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कोलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आज हम बातें कर रहे हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो कौन कौन से जो खरपतवार हैं वो धान में आते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
5: धान जो है खरीफ फसल है, जिसकी बुआई हम विभिन्न जिलों में मानसून के शुरुआत होने से लेकर के जुलाई 15 अगस्त तक कर लेते हैं। तो चूँकि खरीफ मौसम में खरपतवार बहुत अच्छे से उगते हैं और इनका ग्रोथ रेट जो विकास दर है बहुत फास्ट होता है, तो जितने भी खरीफ के खरपतवार हैं लगभग सभी आते हैं। इन खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बाँट सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें आपका गाजर घास है या ऐसे घास जिनकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं और लंबाई कम होता है। दूसरा ग्रुप होता है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार में अपेक्षाकृत देखा जाए तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जनरली थोड़ा सा लंबा होता है और चौड़ाई इनका कम होता है। जैसे आप धान में देख लीजिए सावा, सवई इत्यादि, ये सब प्रमुख हैं।

सकरी पत्ती के ग्रुप में। तीसरा ग्रुप हम बांटते हैं मोथा कुल के खरपतवारों का, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो 6 प्रकार के मोथा होते हैं, जैसे साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफार्मिस, साइप्रस एरिया, इस प्रकार के मोथा कुल के कुल 6 खरपतवार हैं जो इस सीरीज में रहते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं तो जो हमारा खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं वो खरपतवारों के प्रकार के आधार पर भी हम देते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले ग्रुप के खरपतवार हैं तो उसके लिए हम 2,4-D या ऐसी दवाएं जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारती हैं वो प्रयोग करेंगे। सकरी पत्ती वाला खरपतवार, उसके लिए हमारे पास अलग दवाइयाँ होंगी, और सिर्फ मोथा कुल का खरपतवार, उसके लिए अलग दवाइयाँ होंगी। तो अब हम बात करते हैं धान में जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। चूँकि धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे राज्य की, और ससमय इसकी बुआई किया जाए तो खरपतवार एक प्रमुख समस्या के रूप में आती है। खरपतवार का ससमय प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन देखा गया है कि अगर हम शुरू के 40 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हैं, अर्थात खरपतवारों का हम 40 दिनों के अंदर अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं, तो उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाती है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम खरपतवारों को ऐसे ही छोड़ दें, 40 दिनों तक उसका कोई नियंत्रण ना करें, तो हमारे खेत में जो है 50-75% तक उत्पादन में कमी आ जाती है। तो हम बात करते हैं खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए जैसे हमने पहले बताया कि खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 बड़े ग्रुपों में बांट सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार एवं मोथा कुल के खरपतवार। अब हम धान की आज अपने राज्य में 2 तरह से बुआई होती है। एक जो है धान की हम सीधी बुआई कर लेते हैं, तो उसमें खरपतवार नाशी दवाएं थोड़ा सा दूसरी प्रयोग होती हैं, और दूसरा है रोपित धान, जिसको हम नर्सरी डालते हैं, नर्सरी के बाद हम मुख्य फसल में, मुख्य खेत में जो है 20-21 दिन बाद जो नर्सरी है और सीडलिंग है उसकी रोपाई कर देते हैं। तो चूँकि जो रोपित फसल है उसमें एक सेचुरेटेड कंडीशन होता है, उसमें हम धान में कदवा लगा देते हैं जिसको हम पडलिंग कहते हैं, पडलिंग करके उसको रोपाई करते हैं, तो खरपतवार उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं धान की सीधी बुआई, जो आजकल बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है अपने क्षेत्र में, राज्य में। तो धान की सीधी बुआई हम जब किए हैं या कर रहे हैं, तो उसमें हमें खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए पहले जरूरी होता है कि हम खरपतवार प्रबंधन के विभिन्न जो विधियां हैं उनका प्रयोग में लाएं। तो सबसे पहले अगर हम धान में धान की सीधी बुआई करना है तो हमें ध्यान देना होता है कि हम जो है खेत की एक गहरी जुताई कर दें गर्मी में। जो ही हमारा धान रबी फसलें, जैसे गेहूँ है या दलहनी फसल है रबी की सीजन की, तो वो जनरली अप्रैल तक या मई के फर्स्ट सप्ताह तक जो है कट के खाली कर देते हैं खेत को। जो ही हमारा खेत खाली होता है गर्मी में गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है जो खरपतवार के बीज हैं वो 15-20 सेंटीमीटर नीचे चले जाते हैं। तो जब खरपतवार के बीज जो है एक बार ज़मीन में नीचे की सतह में चले जाते हैं तो उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, प्रकाश न मिलने से उनका जमाव नहीं होता है। तो पहला तो हमें खेत की गहरी जुताई करना है, जिससे कि सरफेस लेयर पर जो भी खरपतवार के बीज हैं वो जमीन के नीचे चले जाएं। दूसरा, जो पेरेनियल वीड्स होते हैं, जो बहुवर्षीय खरपतवार हैं, जैसे मोथा है, दूब है, ये सभी कास है, ये सभी जो है शकर से या उसकी गांठों से फैलाव करते हैं। तो जब हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं एक बार, तो क्या होता है कि ये गांठे या इसके शकर से हैं ये सब सूख जाते हैं, और आगे खरपतवार का प्रेशर जो है मुख्य फसल में कम हो जाता है। तो ये जरूरी होता है कि सबसे पहले हम गर्मी की गहरी जुताई करें, उसके बाद हम खेत की जब बुआई कर देते हैं, तो दूसरा विधि है धान की सीधी बुआई में हम ब्राउन मन्योर का प्रयोग कर सकते हैं, या धान की सीधी बुआई जब हम करते हैं तो उसमें हम 25-30 किलोग्राम बीज धान का लेते हैं, उसी में हम 30 किलोग्राम ढैंचा का बीज भी मिला देते हैं। तो इसे क्या होता है, धान और ढैंचा दोनों साथ साथ जमाव करता है। उसके बाद हम जब फसल हमारा 30 दिन का हो जाता है, 30 से 35 दिन का हो जाता है, उसमें हम सबसे सस्ती दवा जो है 2,4-D हम लेते हैं, और 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं। क्योंकि 2,4-D जो बाज़ार में है वो 50% का भी है और 38% का लिक्विड वाला भी आता है। तो हम सक्रिय तत्व की बात कर रहे हैं, 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, अर्थात अगर हम लिक्विड वाला 2,4-D लेते हैं तो जो बाज़ार का प्रोडक्ट आएगा वो करीब 1.5 लीटर हो जाता है,
सवा से डेढ़ लीटर हम प्रोडक्ट को लेकर के छिड़काव कर सकते हैं खड़ी फसल में, धान की खड़ी फसल में जिसमें ढैंचा का बीज हम लगाए हुए हैं। तो क्या होता है उस समय 30 दिन पर ढैंचा करीब 1 से 1.5 फीट का हो जाता है। तो ढैंचा का जब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा पौधा होता है, तो उसे बाकी जो खरपतवार हैं वो नहीं उग पाते, या उगे भी होते हैं तो बहुत पतले पतले रहते हैं। और 30 दिन पर 35 दिन पर हैं जब 240 डाल करके उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसके बाद उसके फसल पर छिड़काव कर देते हैं। तो जो ढैंचा है, ढैंचा धीरे धीरे क्या होता है 24 घंटे में ही वो झुलस करके ज़मीन पर गिर जाता है। गिर जाने के बाद क्या करता है, वो पतवार का काम करने लगता है। तो वो फिर जो पतवार का काम करता है तो शेडिंग इफेक्ट बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो खर पतवार ज़मीन में अगर हैं भी उसके बीज, तो वो जम नहीं पाते हैं। और शुरू के 30 दिन तक ऑलरेडी जो जमे हुए खरपतवार है वो ऑलरेडी बहुत पतले और कम संख्या में थे। तो 240 के साथ जब हम ढैंचा पर देते हैं तो ढैंचा तो मर ही जाता है और उसको एक मल्च का काम करता है ज़मीन पर, तो आगे खरपतवार लगभग लगभग नहीं के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हम ब्राउन मैन्योरिंग भी कर लेते हैं और खरपतवारों को भी धान की सीधी बुआई में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशी दवाएँ हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि खरपतवार नाशी दवाएँ भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचाती हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। लेकिन अंततः मजबूरी में हमें खरपतवारनाशी दवाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये सस्ते भी हैं और प्रभावी भी हैं। तो इसके लिए जो प्रमुख रूप से खरपतवारनाशी दवाएँ हैं उसमें हम पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करते हैं। पेंडीमिथिलीन एक पीले रंग का लिक्विड आता है जो 30% का मौजूद है बाजार में। तो इसका जो सक्रिय तत्व लेते हैं हम लोग, 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, वो प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। चूँकि 30% वाला आता है प्रोडक्ट, तो बाज़ार का जो प्रोडक्ट आएगा विभिन्न नाम से आता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को हम बाज़ार का जो पेंडीमिथिलीन प्रोजेक्ट है उसका हम 3.3 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए लगता है। अर्थात बाज़ार का प्रोडक्ट जो है 1 लीटर से 1.25 लीटर प्रति एकड़ जो है प्रयोग कर सकते हैं। जबकि हमने जो सक्रिय तत्व बताया जो केमिकल रूप में पेंडीमिथिलीन होता है, वो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है। तो इस प्रकार हम देखें तो सक्रिय तत्व 1 लीटर या 1 किलोग्राम पेंडीमिथिलीन लेते हैं, उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं, धान की जो सीधी बुआई किए हैं उसके 48 घंटे के भीतर यानी 2 दिन के भीतर ही हमें प्रयोग करना होता है। ध्यान हमें रखना होता है कि हम जब नाजल का प्रयोग करें, जब हम कोई भी खरपतवार नाशी दवा प्रयोग करते हैं तो जो स्प्रे होता है उसका जो नाजल होता है वो फ्लैट फैन ही रखा जाता है। फ्लैट फैन से एक फ़ायदा होता है कि सभी जगह जो आपका खरपतवार नाशी दवा है वो बराबर मात्रा में गिरता है, बराबर मात्रा में स्प्रे होता है। और स्प्रे करते हुए हम पीछे की ओर हटते हैं। पीछे की ओर हम इसलिए हटते हैं क्योंकि जब जो ही हम दवा का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं ज़मीन पर बुआई के 48 घंटे के भीतर, तो वो जो है एक पतला सा लेयर बना देता है। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन एक पतला सा बिल्कुल लेयर बना देगा ज़मीन पर, और जो ही खरपतवार अंकुरण करते हैं उस लेयर को छूते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम जो धान की सीधी बुआई है उसमें पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा सीधा बुआ हुआ धान लगभग 20 से 25 दिन का हो जाता है, उसमें हम दूसरी प्रकार की खरपतवार नाशी दवाएं प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। क्योंकि इन सभी दवाओं का प्रयोग हम खरपतवार तथा फसल की जमाव के बाद करते हैं, इसलिए हम इनको पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं। तो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड में हम प्रयोग कर सकते हैं, सबसे अच्छी दवा है बिसपायरीवेक सोडियम। क्योंकि बिसपायरीवेक सोडियम एक ऐसी दवा है जिसका मात्र 40 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं और प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसको भी हम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के वहीं 20 से 25 दिन बाद हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इससे जितने भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं ये सब लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। सिर्फ मोथा जो है या मोथा कुल का दूसरा खरपतवार है तो ये नियंत्रण में नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पर हमें दूसरी दवा प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पाइरोजोसल्फ्यूरॉन ले सकते हैं। पाइरोजोसल्फ्यूरॉन जो बाज़ार में साथी के नाम से भी उपलब्ध है, और जो बिसपायरीवेक सोडियम हमने बताया वो बाज़ार में नामनी गोल्ड और ओडीसी के नाम से भी उपलब्ध है। क्योंकि वो 10% का आता है तो हमने बताया था बिसपायरीवेक सोडियम का 40 ग्राम सक्रिय तत्व लेना है, अर्थात जो बाज़ार का प्रोडक्ट होगा 10% वाला उसका 400 ml मात्रा हो जाता है प्रति हेक्टेयर के लिए। उसको हम 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसका 20-25 रुपये छिड़काव कर देते हैं। दूसरी दवा हम बोल रहे थे पाइरोजोसल्फ्यूरॉन, जो बाजार में साथी के नाम से उपलब्ध है, तो पाइरोजोसल्फ्यूरॉन का 20 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रखिए मात्रा बहुत कम है, मात्र 20 ग्राम सक्रिय तत्व है।
और उसको एक हेक्टेयर अर्थात 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया में या 2.5 एकड़ में आपको देना है। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले 20 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा जो है, जो बाजार का प्रोडक्ट है साथी के नाम से, वो 10% का आता है, तो उसका 200 ml मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर पड़ जाता है प्रोडक्ट का जो

0: ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है साथी नाम का या और भी किसी नाम से ब्रांड से आएगा, 10% का है अगर, तो 200 ml प्रति हेक्टेयर लगेगा। इसको भी आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए और बुआई के बाद आप 20 से 25 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखिए चाहे 20 पारी सोडियम या पारजोसल्फ्लान दोनों में से किसी एक को ही देना है और इसका छिड़काव करके हम जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, हम साथ ही देने से क्या होता है, जो मोथा कुल के खरपतवार है अगर नरम अवस्था में है मोथा, तो लगभग वही 50 से 60% नियंत्रण में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम धान की जो सीधी बुआई है उसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, कभी कभी ये देखा गया है कि
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
3: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
7: अरे
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
9: Sir.
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
4: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगा।
6: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
4: हाँ हाँ, कहो।
6: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
4: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
6: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
4: गो अहेड यंग मैन।
6: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।

0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी जनाब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
2: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
2: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
2: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुर

0: से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।
1: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
0: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
1: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
0: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
1: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
0: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनिंकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
4: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, अगाद गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर।

की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इसे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
3: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग समझते हैं। उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोंटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्तचालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है। पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
2: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्तचलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?

0: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पीठ पर लाद कर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पीठ पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं, उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की असल शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है, और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है, और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं, और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊँचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो हैं, उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
0: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, जिनको धूल की फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों की सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।
1: जी,
0: भुड़काव यंत्रों को हस्तचालित रोटरी या हस्तचालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्तचालित रोटरी भुड़काव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है।
1: जी,
0: इसीलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह।
1: जी,
0: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुड़काव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हाथे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुड़काव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया, तो वहां पे भी अलग से हम
1: डाल सकते हैं। जी,
0: लास्ट है भुड़काव यंत्रों में शक्ति चालित भुड़काव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुड़काव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे, इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं। और इंजन से चलने वाले हल्के भुड़काव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुड़काव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हम

0: जरूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को जरूर अवगत कराएं।
1: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं के विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
0: यानी समय का बहुत महत्व है,
1: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
0: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
1: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
0: जी,
1: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
0: सेट हो सकता है, चिपक सकता
1: है, हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से
0: जी।
1: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
0: जी,
1: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
0: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
1: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए, ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सबको कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है
0: जी, डब्बे पे भी लिखा होता है, एक उसमें कॉशन
1: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
0: जी,
1: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर खुले में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
0: जी,
1: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
0: जाने अनजाने में उसको कोई
1: उसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
0: जी।
1: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप है, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी मुँह से फूंक मार कर इन यंत्रों को
0: ना चलाएं
1: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
0: पड़े, फंस जाए अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
1: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
0: जी। तो किसान भाई, ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर

0: ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में 2 या 3 बार या 5 बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
1: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर 1 यह है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाँ, हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके,
0: जी
1: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें
0: जी।
1: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
0: जी,
1: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें, और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए। उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें
0: जी।
1: अगर वो फट गया या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा
0: जी।
1: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें, ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोल कर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है
0: जी।
1: फिर है हस्त दाबिये छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, 2/3 भाग तक ही भरना चाहिए
0: ताकि प्रेशर बने,
1: हाँ अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो 2/3 से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबिये टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया हो तो
0: जी,
1: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
0: जी,
1: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
0: जी।
1: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
0: जी।
1: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं
0: जी।
1: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को खराब कर देगा
0: जी,
1: ठीक है। तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
0: बिल्कुल,
1: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर इस पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
0: जी,
1: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
0: जी,
1: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
0: बंद
1: कर देगा, ठीक है। और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें चार स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास टू स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़ी देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को न जमने दें, ठीक है। अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
0: जी।
1: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग जहां भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
0: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्त चालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
1: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
0: जी।
1: फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए। ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर, और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है। गंदगी जमा होगी तो आपके कूलिंग सिस्टम जो है, शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसैक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है आपको, उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनका आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियाँ थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
0: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं। तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं, लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीजें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है, लेकिन अब जो जमाना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती है। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है,
0: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
1: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं, तो AI जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई, टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन न समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
0: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है, और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
1: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं, और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप के आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल को बुआई कर सकते हैं।
0: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, ये देखिए, कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती हैं। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फोटो को सही एंगल के साथ साथ फोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी, तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
0: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं अब उसमें क्या होता है कि एआई को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चौक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
0: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
1: हाँ, देखिए जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही होगा।
0: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाज़ार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
1: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है,
2: मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं। तो क्या होगा कि ज्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाज़ार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती है उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहां पर भी इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
0: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
2: देखिए एआई एक सुविधा एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उसके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पर लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती है उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा, बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया। तो क्या हुआ, वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही AI का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से AI के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। AI आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर AI ही AI का बोलबाला रहेगा। अगर आप AI से डरेंगे तो AI वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, AI से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस AI से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस AI के मास्टर बन जाएंगे, AI आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
0: यानी कि AI से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब AI से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से AI के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, AI से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप AI का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
2: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात, गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा

जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है। और जब, जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है। और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ ज़रूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफ़ी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफ़ी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से, उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना

0: अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही हैं, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, ना सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए, आपकी बेटी, आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे, अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए, और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना। आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा, और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये ज़रूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और आज हम बातें करने वाले हैं अपने विशेष कार्यक्रम में सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
0: सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से, और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
8: जी, तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों, भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है, उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पॉलीसेक्रेड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे, उसमें हवा का आवागमन जो है वो गैस का जो एक्सचेंज है उस मिट्टी में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीद और रंध्र और बृहत रंध्र जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व, यानी सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व, न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व, खास करके उसमें जो वृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक वृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे? तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्मजीव जीवाणु का रोल क्या है। तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है और उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो उसको क्या करता है ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है। अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्मजीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, ये जो टोबैक्टर हो गया, ये जो एस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो उस वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पोरिलम है, क्लोस्ट्रोडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम आवश्यक प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज है कि वो जो है सूक्ष्म जीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है किसके साथ, आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO42- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमिडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है, तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्म जीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्म जीव जीवाणु का हम अपन माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्म जीव जीवाणु है वो क्या करते हैं तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं और ये रिलीज करने से क्या होता है पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है और उसके साथ साथ एक ACCDMNase इंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, और वो क्या करता है तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है, तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्म जीव जीवाणु है ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं BT बैसिलस थुरिंजिएन्सिस ये क्या है ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट, जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज़ में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है, फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
0: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
8: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया, और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक, जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो प्रदूषण होने में, प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार, जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है, और इसी को किसान, इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है राइजोबियम, राइजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट पीएसबी के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो पीएसबी बायोफर्टिलाइजर है और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जो सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है जिससे देखा गया कि लगभग 15 से 40 केजी तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे उस मात्रा में, उसका क्वांटिटी घटाएंगे जिससे क्या होगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जैसे चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में ये जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का। तो वो क्या करते हैं उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है, जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेर को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल को बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो भी क्या, वो क्या करते हैं, वो फॉस्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फॉस्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है, उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है पौधा को अवेलेबल कर। उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में, और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गए कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं, और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं, और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं, और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए, किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे, और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है, वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में, या सब्जी के केस में, या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचरा जो 20-21 दिन का बिचरा हो जाता है उसको लगाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सॉल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचरा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे, और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये मेथड ये विधि है जिसको हम बिचरा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें। तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट होकर के जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना, या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना, या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना, या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं, और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में, और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में, और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में हमको सुधार आता है, और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ। इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उसको मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
0: सर, आपने सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद, थैंक यू।
0: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
3: के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
9: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
9: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
9: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
9: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गलाघोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा।
0: मैम सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
3: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
3: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताया, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
3: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इन

0: तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
1: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
0: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
1: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
0: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे टीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दें तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस

0: आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे, जब जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनका उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है। उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है। फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे, जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है, और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है, और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है, और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह आठ चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम, आपने आठों चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप, वो छह फेज, छह चरण से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का, जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम छह फेज, छह स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज, और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है, एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज, मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है। इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता छह स्टेज होते हैं, छह चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया। ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है?
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इंक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में, और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहां से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर, बल्कि अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है, और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगी?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से जो हमारे युवा वर्ग हैं उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की एक नई दिशा देने की क्षमता है तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए, और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि से क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU 8, वाकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन. जी हाँ, जुले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर. और जहाँ तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी. तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी ख़ास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है. ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की. बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है. और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. बांस क्या होता है, तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे. बांस जो है वो एक, इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दीजिए.
1: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसके हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है. बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है. और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि भी वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये. और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है. देश का लगभग 60% जो बांस है वो का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है, और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुलगैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में ये सारी प्रजातियां हैं.
0: जी जी. बांस लगाने की विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे.
1: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है पहला है बीजों की सीधी बुआई. ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं. इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं, और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है, और एक सप्ताह के अंदर ही एक पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है. फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं, और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर उसमें हम लोग ताज़ा बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी सफाई करते हैं. अगर हमें उस समय पे नहीं लगाना है तो उसको हम लोग सुखा कर वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं. बोने से पहले बीजों को 48 घंटे पानी में भिंगो कर रखना चाहिए, और फिर जिस पानी में उसे भिंगाए हैं हम लोग उसमें हम लोग को कवकनाशी को मिला देना चाहिए ताकि बीजों पर कवक का कोई भी प्रभाव ना हो. जो सीधे बीजों की बुआई हेतु उपजाऊ भूमि में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की खुदाई करके बीजों को लगाना चाहिए, और जो हम लोग उसको लाइन वाइज लगाते हैं तो उसमें हर एक लाइन के बीच में 4 से 6 मीटर का अंतराल होना चाहिए, और बोने के बाद हम लोग उसको हल्की मिट्टी से ढक देते हैं. दूसरी विधि जो है जिसमें हम लोग लगाते हैं बीजों को, तो उसमें है पौधा रोपण। इसमें हम लोग सबसे पहले पौधे को नर्सरी में उपजाते हैं, जिससे कि जो हम लोग इस विधि से जब लगाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियां बना के जो ऊपर क्यारियों में हम लोग इसको लगाते हैं, और एक सप्ताह में ही जो नन्हे पौधे बांस के उगते हैं उसको हम लोग थैलियों में डालकर, जिसको हम लोग पॉलीथीन बैग भी कहते हैं, उस पॉलीथीन बैग में डालकर उसको हम लोग हल्की सिंचाई देते रहते हैं। इस सामान्यतः 1 से 2 माह में जो पौधा है वो रोपण हेतु तैयार हो जाता है, और फिर हम लोग को जहाँ भी उसके उसे लगाना है उसके हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। जो जिन गड्ढों में हम लोग को लगाना है, जो हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं, वो 30x30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और हम लोग को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि जहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जब बारिश हो तो वहाँ ज़्यादा जल जमाव की परेशानी ना हो, और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे जो ये चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, तो हम लोग को उसका भी ध्यान रखना है ताकि इसका जो हम लोग अच्छे से इसको लगा सके। तीसरी विधि जो आती है बांस को लगाने में, उसमें हम लोग प्रकंदों द्वारा रोपण। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकंद जो निकलते हैं बांस से, तो हम लोग प्रकंदों को समूह में भी लगा सकते हैं और एकल प्रकंद में भी हम लोग लगा सकते हैं। एकल प्रकंद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग बिना किसी इसको नुकसान किए हुए लगा सकते हैं, और इसमें हम लोग एक उचित दूरी हम लोग को लगाना होता है ताकि जो जब बांस का पौधा बड़ा हो तो उसमें किसी तरीके का दोनों एक दूसरे, जो दो पौधे निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। जो अगली विधि है वो है ऑफसेट रोपण। ये सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसके लिए 1 से 2 वर्ष की आयु का कल्म सबसे उपयुक्त होता है। यदि कल्म अधिक बड़ा है तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 से 1.5 सेंटीमीटर उसको तिरछा काट कर जिस प्रकंद से वह पैदा हुआ है उसे जड़ सहित उसी आकार में हम लोग लगाते हैं, और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम उसमें एक आँख हो। प्रकंद को इतनी ग्रीवा से काटा जाता है ताकि जो हम लोग कटाई कर रहे हैं तने का, उसमें कोई भी दरार या फिर जो मातृ तना है उसमें कोई भी नुकसान ना हो। और प्रकंदों को हम लोग एक आर्द्र युक्त बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो उसमें। कल्म के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेजी से बढ़े और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं, और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं, और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं, और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है, और जहाँ हम लोग को लगाना है वहाँ पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है, और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियाँ जिससे हम लोग बांस की खेती आसानी से कर सकते हैं
2: जी।
0: इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं, बांस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
1: बांस की बात करें तो बांस में जो प्रमुख रोग है, सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है, जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उस उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की जरूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है, इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन, भारत और जापान में। और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सीन है, थिया बेडाजोल है, इन फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूट मोट, जो कि भारत, चीन, कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है, जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा, मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो ये एफिड्स है वो प्राकृतिक शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ब्लैक मिल्ड्रियो, ये जो है आप सब इसमें भी क्या होता है कि काले रंग की चूर्ण, आपको ऐसा लगेगा कि पत्तों के ऊपर एक चूर्ण, काले रंग का चूर्ण आ गया है और ये भी डंठ जैसे जैसे संक्रमण फैलता जाएगा ये पत्तियों के ऊपरी सतह से नीचे निचली सतह पर और फिर जो छोटी छोटी शाखाएँ होती हैं उन पर ये फैलने लगती हैं। इसके लिए भी हम लोग जो फफूंदी नाशक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट में देखें कि इसको कैसे हम लोग रोकेंगे तो इसके लिए हम लोगों को जो कैनोपी होती है जो कैनोपी है पौधे की उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले, कहीं भी उनको छाया ना हो, क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है।
0: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
1: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है तो इस वजह से जैसा हम पहले भी हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में और छप्पर जो होता है जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी, और बहुत सारे कृषि यंत्र, और जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक जैसे जैसे हम लोग पानी की बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का, आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स में हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा आपका अलमीरा, और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है जो जो कास्ट है जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है। तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग उपचार इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि मॉडल्स कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
0: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे?
1: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार के तरफ से। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है, और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदवार के साथ साथ उचित किस्मों जो उचित किस्म है बांस की उनको भी बढ़ाना, फिर बांस आधारित हस्तशिल्प शिल्प को भी बढ़ावा देना, पारंपरिक विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी जो है वो किसानों के बीच पहुंचाना, और कुशल और अकुशल व्यक्तियों को विशेष रूप से जो बेरोजगार युवक हैं उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बांस मिशन का हम लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार, नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना। बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती मुनाफे की हो सकती है। किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का विकास करना और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको समाप्त करते हुए सीधे जो ये राष्ट्रीय मिशन है इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना ताकि सबसे ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी खेती पर एक विशेष चर्चा। आशा करते हैं आज आपको एक नई जानकारी मिली होंगी और अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार श्रोताओं, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं आप सभी को बता दूं कि हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, और ऐसे में जैविक खाद की बात करना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि जैविक खाद हमारी फसलों के लिए सुरक्षित हैं, हमारी मिट्टी के लिए सुरक्षित हैं, हम सभी के लिए सुरक्षित हैं। तो जैविक खाद आप कैसे बनाएंगे, घरेलू उपाय क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक हमारा जो आज है, विषय है, वो है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय। और इस विषय को लेकर, जी हाँ, मृदा विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सोनल कुमारी हमारे साथ हैं, जो आप सभी को एक पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में, घरेलू उपाय के द्वारा आप जैविक खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैविक खाद होता क्या है, क्या है ये।
6: मैं सोनल, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की सॉइल साइंटिस्ट हूँ, उस पद पे कार्यरत हूँ, और मैंने आज का विषय चुना है जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय क्या हैं, इसको कैसे हम घर पे ही रह के बना सकते हैं। ये आज के जरूरत समय में सारे लोग जाने, बहुत जानकारियाँ हमें गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे ये जो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म का अगर कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो हमारे जो भी रिमोट विलेजेज है वहाँ पर लोग एटलीस्ट रेडियो के अभी भी शौकीन है, रेडियो को सुनते हैं। अगर आप मेरी बातें आप तक पहुँच रही है, तो आप जरूर इसको सुनेंगे, कैसे हम घर पे रहते हैं, हमारे पास जो भी किचन वेस्ट अवेलेबल हैं, हम आपके पास उतने जगह जमीन नहीं है, तो कैसे उस लिमिटेड रिसोर्स में हम अपने चीज़ों को, अपने जैविक जो हमारे जैविक चीज़ें हमारे हैं, जो हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जो हमारे प्रकृति में डेली उसको उसको एज अ कचरा समझ के, वेस्ट समझ के उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, उसका कैसे हम सही यूटिलाइज कर सकें, उससे कैसे हम जही एक जैविक खाद का बना सकें, उसका सही से उसका संरक्षण कर सकें, सही से उसको स्टोर कर सकें, एंड देन उसके फर्दर हम जो हमारे फसल है, हमारे जो हमारे सीजनल हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो भी हमारे जो भी हम साग सब्जी घर में भी अपने लगाते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उसमें ही प्रयोग कर सकें। तो हमारा पहला हमारा आज क्वेश्चन हमारे लिए है, जैविक खाद क्या है। पहले हम जैविक खाद के बारे में जानेंगे, जैविक खाद आखिर है क्या, हम क्यों जैविक जैविक सबको आज के डेट में बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एवरीवन इज टारगेटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी या ऑर्गेनिक फार्मिंग वो जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, और जैविक खेती में जही सी जो खाद प्रयोग करते हैं वो जैविक खाद होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैविक खाद जो है एक प्राकृतिक खाद है, जिसमें और कुछ नहीं, कोई भी रासायनिक पदार्थ या हमारे जो होते हैं उसमें प्रयोग नहीं किया जाते हैं, जो भी हमारे प्रकृति में अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पौधे हो गए हैं, जानवर हो गए हैं, हमारे जो भी जैविक और इसके अलावा जो हमारे अन्य जैविक अवशेष हैं, उस जैविक अवशेषों से उसको सड़ा गला कर, और या जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके प्रयोग से जो खाद तैयार किया जाता है उसको ही हम जैविक खाद कहते हैं, या पूर्णतः कम्प्लीटली जिसको बोलते हैं ये प्रकृति रूप से ही प्राप्त की जाती है। जैविक खाद में जैसे हम जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे जो मुख्य पोषक तत्व 17 है हमारे इसेंशियल जिसको बोलते हैं, उसको प्रदान करने को जिससे हमको पौधे प्रदान कर सकें, उसको इसके लिए हम डालते हैं अपने पौधों के लिए, वैसे ही हमारा जैविक खाद है। जैविक खाद में जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सारे जब ये विघटन इसकी हो जाती है तो सारे इसमें आवश्यक पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, और जब इसको हम अपने मिट्टी पर अप्लाई करते हैं, मृदा पर अप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारे फसल है उसको उस सारे आवश्यक पोषक तत्व को वहाँ से प्रदान करते हैं, और वो इसके साथ साथ वो तो प्रदान करते ही करते हैं। जैविक जैसे मैं बोली रही बिल्कुल कम्प्लीटली पूर्णतः यह प्राकृतिक रूप से होता है, तो मिट्टी का जो हमारा गुणवत्ता है उसको भी बनाए रखने में मदद करता है, उसकी जो हमारे प्रॉपर्टी है उसकी जो गुणवत्ता है उसको कभी घटाता नहीं और बढ़ाता ही है।
5: जी, अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने की विधि की, तो कैसे बनाया जा सकता है घर पर।
6: हाँ, अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है, हम जहाँ भी जिस लोकेशन में रहते हैं, वेदर हमारा चाहे हमारा बहुत बड़ा लोकेशन हो, छोटा लोकेशन है, चाहे बहुत छोटे से घर में आप रह रहे हैं, 1 BHK घर में रह रहे हैं, गांव में बहुत कम छोटे किले हैं, बहुत हमारे जो मार्जिनल किसान हैं, हमारे बहुत छोटे स्तर के जो किसान हैं, उनके पास उतने जगह जमीन नहीं होते हैं, तो उनके पास जो ही रिसोर्स अवेलेबल है वहां से तो वो अपना जैविक खाद बना ही सकते हैं। क्योंकि किचन जो हमारा रसोईया हम जब खाना पकाते हैं तो बहुत सारे हमारे फल साग सब्जी उसके जो छिलके आते हैं तो उस साग सब उसको हम क्या करें, अगर आपके पास मवेशी है तो मवेशी को देते हैं, मवेशी का वो भोजन हो जाता है, नहीं तो अगर नहीं है तो वो ऐसे आप वेस्ट कर देते हैं, उसको वेस्ट करने से बेटर है उसको हम कंपोस्ट खाद तैयार कर लें, जैविक खाद तैयार कर लें। तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन कुछ कुछ विधियों के बारे में बताऊंगी मैं जिसको आप बहुत आसानी तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं, जिससे कौन कौन सा हमारे विधियाँ हैं जिसको हम घर पर आसानी से तैयार कर सकें। एक खाद हम जिसको बोलते हैं जिसको हम घर पर ही तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं किचन वेस्ट खाद, जिसको किचन वेस्ट खाद मतलब कंपोस्टिंग करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स है कंपोस्टिंग। किचन वेस्ट जो हमारा है, किचन वेस्ट का मतलब जो हम रसोई में हमारे वेस्ट चीज़ मिलते हैं, मैंने बोला जैसे ही बोला आपको फल होते हैं, साग होते हैं, सब्जी होते हैं, इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं उसको तो हम उतार फेंकते हैं ना, उसको तो हम नहीं खाते हैं, उसको हम कंज्यूम मनुष्य नहीं करता है, तो उसका प्रयोग हम खाद बनाने में कर लेंगे, उसी से जो खाद तैयार होता है उसको हम किचन वेस्ट खाद कहते हैं। अब इसके लिए जैसे मान लो आप साग सब्जी कुछ भी सब्जी घर में बनाते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं उसके लिए एक रेसिपी लोग बोलते हैं ना, रेसिपी के लिए हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की हम बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स हिंदी में अगर बोले तो सामग्री, क्या क्या उसमें सामग्री लगेंगे। अगर हम पनीर प्याजा की बात करें तो हम बताते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वैसे ये हमारा खाद है, खाद को भी हम जब तैयार करते हैं ना उसके लिए हमें कुछ कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में बोले तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो ऐसे ही हम जब किचन वेस्ट खाद की बता रहे हैं तो हम पहले बताएंगे आपको क्या क्या इसमें सामग्री आपको लग जाएंगे बनाने के लिए। पहले तो आपको जो भी हमको रसोई में हमारे कचरा, जिसको कचरा ना बोले तो बेटर होगा, कचरा बोले बैड टर्म्स हो गया उसको, हमारे लिए हम उसको वेस्ट समझ रहे हैं, बट इट इज नॉट वेस्ट, वो वेस्ट नहीं है, वो हमारा धन है, उससे हम एक बढ़िया बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो कचरा ना बोल के मैं रसोई में जो भी हमारे फल सब्जियाँ जो चाय पत्ती होते हैं, अंडे के छिलके हैं, बचे हुए भोजन के टुकड़े आपके हैं, जो भी हम सब्जियाँ खाते हैं उनके जितने छिलके हैं आप उनको क्या करें एक जगह इकट्ठी कर रखें। और हम पेड़ पौधे कहीं भी आपको देखते सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं हमें, और नहीं भी कुछ हुआ था, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं बहुत सारे कागज़ को ऐसे वैसे फाड़ कर फेंक देते हैं, बहुत सारे हम जिसके हम न्यूज़पेपर आते रहते हैं उसके भी टुकड़े मिल जाते हैं, उसकी भी वो सब चीज़ बहुत बर्बाद होते हैं, तो कागज़ को टुकड़े को भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हैं। और मिट्टी, थोड़ी मिट्टी तो कहीं भी आपको सबको अवेलेबल हो सकते हैं, वेदर वो बहुत ज़्यादा एक मेट्रोपोलिटन सिटी में रह रहे हों, अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरिया में रह रहे हैं या रूरल एरिया में या रिमोट एरिया में रह रहे हैं, इतनी चीज़ें तो आपको किसी को अवेलेबल हो जाएंगे। तो सामग्री क्या क्या आपको लगेगी, जो भी हमारे रसोई के हमारे जो भी रसोई समय जो बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स आप बोल लो, हमारा खाना बनाने के बाद जो भी बचते हैं, मतलब फल सब्जियां के छिलके हो गए हैं, अंडे के छिलके हो गए हैं, चाय पत्ती बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाते हैं, मैंने बचे हुए भोजन के टुकड़े हो गए हैं, हमारे साग सब्जी के जो भी हमारे छिलके हो गए हैं, कागज़ के टुकड़े हो गए, सूखी पत्तियां हो गई, थोड़ी सी मिट्टी है हमारी सामग्री हो गई। और इसकी विधि बनाने के लिए जब ये चीज़ हम बोल सकें कुछ चीज़ हमें बनाना है, अगर मैं बोलूँ चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, तो इट मीन्स हमें कुछ ना कंटेनर चाहिए इसको बनाने के लिए, उसको हवा में हम नहीं बना सकते ना, कंटेनर आपको लगेंगे। तो ऐसे ही है, जब हमको इसको बनाना है, जब इसकी सामग्री की बात करें तो जाहिर सी बात इसके लिए हमको कुछ बनाने की चीज़ चाहिए, तभी तो हम इसको बना पाएंगे। वेदर मेरे पास चाहे मेरे पास कंटेनर रहे, एक कंटेनर का हम व्यवस्था कर ले, नहीं तो किसी के पास अगर जमीन है तो गड्ढा खून ले, और गड्ढा भी ऐसा खोलना है, कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो, जिससे हवा आ भी सके जा भी सके, और नमी भी उतना ही मेंटेन रख सके जितने हमें नमी चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान में हमको रखना है। फिर वो क्या, अगर मान लो आपके पास नहीं ज़्यादा ज़मीन है, छोटा सा कोई प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें छोटे छोटे आपने छेद कर दिया जिससे हमारा हवा पास होता रहे, हवा आता रहे जाता रहे, जिसको हम इंग्लिश वर्ड्स में बोले तो एरेशन बोलते हैं, मतलब हवा का आदान प्रदान होता रहे, और हमारा मॉइस्चर भी जिसको नमी बोलते हैं हिंदी में वो मेंटेन रहे, ये चीज़ें का हमें व्यवस्था कर लेना है। फिर क्या करना है हमको, उस जो हमारा कंटेनर हमने लिया है, जो हम डब्बा एक बोल लें अगर हिंदी में बोलते हैं, डब्बा लें, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा किचन वेस्ट है, जो हमारा रसोई में जो हमारे आ रहे हैं, जो भी हमारे सब चीज़ के बचे हुए जो जिसका मैंने बताया जिक्र किया, उसको एक लेयर डाल देना है आपको, उसको पहले बिछा देना है, पहला लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारी थोड़ी मिट्टी है उस थोड़ी मिट्टी को डाल देना, उस फिर सेकंड लेयर जिसको बोलते हैं सेकंड लेयर, उस सेकंड लेयर मिट्टी के लेयर को डाल देना है। फिर इसी मिश्रण को आपको 4-5 लेयर करके ऐसे बनाने हैं, और फिर इस मिश्रण को क्या करना है आपको, हर 2-3 दिन पे या उसको आपको हिलाते रहना है। हिलाना क्यों है, हिलाने के पीछे भी रीजन है, उसमें जो एरेशन होता है, उसमें जो हवा है, जो नमी है, जितना चाहिए उतना उसमें मेंटेन रहे, उसमें जितना हमें जरूरत है उतना उसमें रहे वो, इसलिए हिलाते रहना उसको, और उसको ज़्यादा भी नमी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, इसको कोशिश करना है कि थोड़ा छायादार जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट सूर्य का धूप ना पड़ता हो, और थोड़ा सूखा रखें, नमी भी उतना ही रहे जितना जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं पानी उसमें से निकल रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं जैसे हम बोलते हैं, नहीं नमी जितनी जरूरत है उतना ही, कोशिश करें हल्का भुरभुरा टाइप का, सूखे टाइप का हल्का रहे, और फिर इसको ढक कर रखना है, और यही इस ढक के बस आपको डालते रहना। आप देखेंगे 2 से 3 महीने जैसे होगा ये भीतर ये खाद तैयार हो जाएगा। जैसे आपने जो डाला था जिसके बड़े बड़े टुकड़े थे, आप वो टुकड़े को देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए हैं, और सारे हल्के भूरे से काले रंग में बदल जाएंगे, और इनकी गंध से भी पहचान सकोगे कि ये हमारी खाद क्या है, तैयार हो गई है। ये तो पहला हमारा रहा जो हमारा किचन खाद, जिसको हम किचन वेस्ट खाद बोलते हैं। और दूसरी भी विधियां हैं जिसमें अगर मान लो इसी खाद में प्रयोग करने में मैंने अगर जिसको केचुआ होता है, केचुआ का प्रयोग कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस खाद को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको, हम केचुआ खाद बोलते हैं। तो इसकी भी सामग्री की हम बात कर लेंगे, क्या क्या हमें सामग्री इनको लगेगी बनाने के लिए। इनकी सामग्री में आपको केचुआ लगेगा ही लगेगा, जब मैंने केचुआ खाद ही बोला तो केचुआ से ही तैयार होगा। रसोई का हमारे जो कचरे हो गए, हमारे जो भी हमारे हो फल साग सब्जी जितने अंडे के छिलके वो हो गए, वो सारे लगेंगे जो मैंने आपको पहले बताया, पहले वाली विधि में बताया। दूसरी सूखी पत्तियां भी बताया था, गोबर भी मैंने आपको बताया था। गोबर आप याद रखिए, गोबर जब भी डालना है कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर डालिएगा, कि ताजा गोबर जो रहता है ना उस पर जल्दी हमारे जो सूक्ष्म जीव है ग्रो करने का ज्यादा चांस रहता है, अटैक ज्यादा करते हैं वो। तो कोशिश कीजिए 15 से 20 दिन पुराना गोबर ले लीजिएगा आप, और नमीदार मिट्टी जो हमारी होती है वो मिट्टी का थोड़ा हमको प्रयोग करना है। इसके लिए भी हमें क्या लगेंगे, आपके पास डब्बे हैं तो वो सही है, अगर नहीं है तो आप एक बक्सा ले भी सकते हैं, उसको छेद नुमा बना देंगे जिसे हमारा हवा का आदान प्रदान होता रहे। और फिर उसमें हमें क्या करना है, एक नमी की मिट्टी जो हमने बोला उसको बिछा देना है। फिर उसमें हमें क्या करना है, आपको जो हमारे रसोई के हमारे कचड़े आए सूखी पत्तियां उनको क्लियर बना देना है। फिर हमारे जो केचुए लगे, केचुए के हम मैं ये आपको यहाँ नहीं बताऊंगी कितना स्क्वायर फीट का बना रहे हो, जब हम कभी अपने जाम कॉमर्शियल इसकी खाद की प्रोडक्ट

मिट्टी में जो नमीदार डाले उसका ये भोजन का है, भोजन का स्रोत है। और ये जो भोजन के स्रोत में ये खाता है उस तो खाएगा तो क्या करता है, जब ये उसका काष्ठ निकलता है खाने के बाद जो उसकी काष्ठ निकलते हैं जिसको हम उसका क्या बोल सकते हैं, हाँ तो जो मैं बता रही थी केचुए का क्या, ये भोजन का स्रोत है। तो भोजन का स्रोत है, जब भोजन करता है तो जाहिर सी बात वो भी मलमूत्र त्याग करता है, और उससे जो मलमूत्र का त्याग होता है और उससे जो खाद बनते जाते हैं ना, वो देखोगे कास्ट जिसको बोलते हैं अर्थ होम कास्ट बोलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक खाद तैयार कर देता है और ऐसे ही करके इसका भी लेयर तैयार कर देते हैं। और हर इसको ढककर हमें रखना है कि दूसरा जो सूक्ष्म जीव है उसमें ग्रो ना कर जाए। और थोड़ा इसको अगर आपको गोबर मिलता है तो गोबर डाल दें, नहीं तो थोड़ा नमी मेंटेन करने के कागज जो अवेलेबल होता है ना, तो कागज को थोड़ा गीला करके भी आप फैला सकते हैं। और इसको आप क्या करें, ढक कर रखें, हर 15 दिन पे थोड़ा आपको उलट फेर करना होगा, जिसे हमारा प्रॉपर एरेशन जिसको हवादार नमी हवा उसकी सब वर्तमान जितनी हमें चाहिए संतुलित मात्रा में सब उसमें अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मौजूद रहें। और 15 दिन पे जैसे उलट फेर कर रहे हैं तो, और ऐसे ही करना है हमको 2-3 महीने तक। और 2-3 महीने के लास्ट में आप देखेंगे ना ये केचुआ खाद जो हमारा जैविक खाद केचुआ खाद जो हमारा था ये बिल्कुल अच्छे से अपने हल्के भूरे रंग, इसका भी रंग वैसा ही होगा हल्के भूरे रंग का, इससे काला रंग में अब बिल्कुल दानेदार में ये बदल जाता है, जो अच्छा वाला खाद जैविक खाद बनता हमारा केचुआ के माध्यम से जिसको हम केचुआ खाद बोलते हैं। और 2-3 महीने में खाद हमारा तैयार करते हैं कर सकते हैं। ये हमारा केचुआ खाद के बारे में हो गया। इसके अलावा हमारे और चीज़ें बहुत सारे हमारे पारंपरिक खाद तैयार किए जाते थे, जो हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे पहले जमाने में, जब हम जीवामृत करते थे हमको वो सब हम तैयार करते थे। और अभी भी हम जब जैविक खाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो सारे प्रयोग हमारे फिर से हमारे ज्ञान में आ गए हैं और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ तक ये बात हमारी नहीं पहुँच पा रही उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, हम जहाँ रहते हैं हर हमारे अड़ोस पड़ोस में अवेलेबल है, बस उनको हमको अपने आँख उठाकर देखने की जरूरत है और उसको इस्तेमाल करने देखने की जरूरत भी है और इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने प्रयोग में लाने की जरूरत है। प्रयोग में लाने के बाद हमें जहाँ इसकी जहाँ इसको उपयोग करना है उसको उपयोग करने की बात है। ये बहुत चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं बट उसको हम ना कभी एक्शन में नहीं ला पाते हैं, तो हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है एंड देन उसको एक्शन में भी लाना है। और तीसरा मैं आपको बताने जा रही थी वैसा जीवामृत, ऐसे तो बहुत तरीके हैं हमारे बनाने के, और तीसरी मैं बता रही हूँ जीवामृत जिसको बड़े इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, मैं उसी खाद को लिस्ट की हूँ यहाँ पर। तीसरी खाद के बारे में बता रही हूँ आपको जीवामृत, ये जीवामृत कैसे तैयार करते हैं। जीवामृत सब समझ ही रहे हो क्या होगा, जो हमारे मवेशी होते हैं हमारे गाय भैंस ये सब होते हैं तो उनकी चीज़ों से हमें तैयार करना है, जिसके यहाँ मवेशी ओवेसी है तो आपको इसके लिए क्या सामग्री लग जाएंगे, गोबर लग जाएंगे, गोमूत्र लग जाएंगे, गुड़ लग जाएगा, थोड़ा बेसन लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगा। जब इसके बनाने की विधि क्या है ना, जब आप इसकी बनाने की विधि बने तो जो इसका अनुपात मैंने बताया ना, अनुपात अभी बोला नहीं है, बस सामग्री में जो बताया इसका अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अनुपात में आप गोबर ले रहे हो, कितने अनुपात में गोमूत्र ले रहे हो, कितने अनुपात का गुड़ का प्रयोग कर रहे हो, बेसन का प्रयोग और मिट्टी का प्रयोग कर रहे हो। अब बनाने से पहले आती है बात आती है कि आप कितने लीटर क्वांटिटी में, जैसे ये आप यूजुअली क्या होता है इसको मट्टी पे भी प्रयोग करते हैं और पौधे के ऊपर भी प्रयोग करते हैं, ये जो जीवामृत बनाते हैं हम ना, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसको हम बोलते हैं तरल जैविक खाद है, ये तरल नुमा होता है। तो कितने लीटर पानी में इस घोल को तैयार करना चाहते हो, बात ये आती है। तो मैं आपको सामग्री का जो लिस्ट दूंगी 200 लीटर के बेसिस पे दे रही हूँ, आप अपने अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हो, आप अपने अनुसार इसका गणना करके कैलकुलेशन करके आप बढ़ा सका घटा सकना है। अगर मैं 200 लीटर की कैपेसिटी के अनुसार बता रही हूँ आपको, 200 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करने हैं तो 200 लीटर में कितना किलो गोबर लगेगा, 200 लीटर के लिए आप इसको जरूर कहीं आप होगा सुन रहे होगे आप इसको मेंशन करना, अगर 200 लीटर पानी में आप घोल तैयार करना चाहते हो उसमें 10 किलो हमको गोबर डालना है। गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए, 15 से 20 दिन जैसे उसका जो हमारा तापमान हो ना, जो ताज़ा गोबर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें तापमान में कमी आ जाए, कम से 15 से 20 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। 10 किलो आपको गोबर प्रयोग करना है और सेम मात्रा में 10 किलो आपको गोमूत्र रिच करना है, और सेम मात्रा देखो गोबर और गोमूत्र दोनों का मात्रा क्या हो गया, सेम हो गया 200 लीटर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 10-10 गुड़ बोला बेसन बोला, तो ये गुड़ और बेसन का भी मात्रा अनुपात जो है एक सेम रहेगा, एक एक रहेगा, 1 kg गुड़ हो जाएगा 1 किलो, 1 किलो आपका बेसन हो जाएगा। और थोड़ी मिट्टी प्रयोग करना है हमें, थोड़ी मिट्टी को उसमें 200 लीटर पानी ले लेंगे और घोल को तैयार कर लेते हैं, और इस मिश्रण को हम क्या करते हैं ना ढक कर रखते हैं, हर 2 से 3 दिन पर इसको हम क्या करते हैं एक लकड़ी बड़ा सा ले लेते हैं, अगर ड्रम में तैयार कर रहे हो तो जो हमारे ड्रम होते हैं, और 2-3 दिन पे इस लकड़ी हमारे पास बड़े जो लकड़ी होते हैं कहीं भी ये मिल जाते हैं उस घोल को हमें मिश्रण को घुलाते रहना है, जिससे प्रॉपर हमारा जो मिक्सिंग हो रही है ना जब इसका विघटन तैयार हो जो हम डाल विघटित होता है।

0: है तो प्रॉपर विघटित हो, पूर्णतः हो जाए ये। और 5 से 7 दिन में ये जीवा मित्र आपको देखोगे, ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है, 5 से 7 दिन ओनली लेगा। 5 से 7 दिन में ये जो जीवा मित्र हमको तैयार हो जाएगा, और इसका तैयार हो जाने के बाद आप इसका प्रयोग डायरेक्ट आप फसलों पर छिड़काव करके कर सकते हो। ये ना ओनली पोषक तत्व प्रदान करता है पौधों को, इसके अलावा आप जानते हो गोमूत्र और गोबर में बहुत पावर होता है। इसमें जो उसमें रोग लगते हैं, जो उसमें हमारे कीटनाशक कीट लग जाते हैं, उससे भी ये पौधा को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये बहुत चीज़ों के लिए फायदेमंद होता है। ये जो मैं सरल सरल विधियाँ थी वो विधियाँ को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की हूँ अपने तरफ से।
1: अब बात करते हैं घर पर जैविक खाद बनाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है?
0: हाँ, अब बात आती कि अब तो हम बनाने की विधि हमने बता दिया, क्या क्या सामग्री लगेंगे, क्या लगेंगे, अब आते किन किन बातों को हमें ध्यान रख रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, इन छोटी छोटी बातों को हम अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा जैविक खाद घर पर ही हम तैयार कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जैसे मैंने अगर आपको बोला है कंटेनर, आपके पास उतनी जगह जमीन नहीं है जहाँ आप गड्ढे खोद कर बना सकें, प्लास्टरिंग कर सकें, प्लास्टिक मतलब एक सीमेंटेड आप एक एरिया तैयार कर लो उसके लिए, गड्ढा नहीं आपके पास है तो कंटेनर लेना आता है। कंटेनर आप जब भी लोगे ना, जो हम कंटेनर सामग्री में जो हम सामग्री को डालने के लिए कंटेनर का प्रयोग या डब्बे का प्रयोग जो भी करते हैं उसका चयन सही होना चाहिए। जो भी हम जैविक खाद हमको बनाना है तो कभी भूल कभी जैसे हम कर तो लेते हैं ऐसा, बहुत जगह आप देखो जैविक खाद प्लास्टिक का या धातु का या कोई भी रासायनिक जो हमारे धातु मतलब वो रासायनिक चीज है उसका प्रयोग लोग कर लेते हैं। आप उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, उसका ना करें, आप इसका प्रयोग ना करें। और दूसरी बात है, जब हम खाद बनाने के दौरान जो हम कंटेनर पर्याप्त कंटेनर लेते हैं ना, उसमें कभी कभी बहुत जगह देखा गया है कि उसमें पर्याप्त छेद नहीं किया हुआ रहता है। अगर नहीं बनाया आप तो उसमें पर्याप्त हवा और नमी बना नहीं रहता है, और पर्याप्त अगर हवा नमी नहीं बना रहेगा तो खाद हमारा पूर्णतः विघटित नहीं होता है और खाद मेरा अच्छा तैयार नहीं होता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हमको सूखापन या बहुत ज़्यादा अधिक नमी में खाद में हमको बनाए नहीं रखना है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही बनाना है। मीन्स बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं रखना है उसको, और बहुत ज्यादा नमी भी नहीं रखना है कि जिससे हमको वहां से पानी निकलने लगे। तो अगर ऐसा होगा कंडीशन तो आपकी जो खाद की गुणवत्ता है ना वो प्रभावित हो सकती है। चौथी बात आपको क्या रखना है, हमको जो जैविक खाद की मैंने आपको सामग्री बताया उसका अनुपात आप बिल्कुल सही रखिएगा। जैसे हम जैविक कचरे के लिए हमारे जो हमारे किचन का वेस्ट हो गया, सूखी पत्तियां हो गई, मिट्टी हो गई, इसका अनुपात सही बनाकर रखिए कितने कितने जाएंगे जिससे हमारे खाद अच्छे प्रयोग में आ सके। और चौथी बात है, पांचवी बात यह है, जब हम खाद बनाने के सही स्थान का चयन करते हैं ना, वो स्थान का चयन सही कीजिएगा। वो स्थान जो होना चाहिए आपको डायरेक्ट जो हमारे सूर्य की धूप होती है वो जगह का कभी ना आप चयन करें। वो जगह कोशिश करें कि छायादार हो, सूखे स्थान पर हो, सूखे स्थान पर हो मतलब ऐसा जगह ना चयन करें जहाँ पानी बहुत जल्दी लग जाता हो, पानी लग जाते हैं जहाँ उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाता है, थोड़े पानी वहाँ पर लगे रह जाते हैं, तो ऐसा स्थान का प्रयोग कभी ना करें। जगह छायादार होनी चाहिए, अगर धूप आ रही है तो धूप आए, धूप भी जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए ये कोशिश करनी है। 5-6 बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं।
1: इसके बाद जैविक खाद को हमें स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे स्टोर?
0: अब आते हैं बनाने का, तो ये हो गया, हम जैविक खाद को स्टोर कैसे कर सकते? ऐसा तो नहीं है कि जिस कंटेनर में आपने बनाया उसी में छोड़ दोगे, क्योंकि आपने एक लॉट तैयार कर लिया था। किचन जो हमारे वेस्ट होता है उनको कंटिन्यू प्रोसेस है, हम डेली खाना बनाते हैं, डेली हमारे वेस्ट जनरेट होते हैं किचन से, तो आप और बनाना चाहोगे। जो आपने खादे बना लिया अब उसको कैसे उसको हम उसको स्टोर करें, संरक्षित करके अपने जगह पर कर रखें जिससे हम आगे चल के हम अपने फसल के लिए जो भी हम मतलब छत पे उगाते हैं साग सब्जी उसमें भी प्रयोग कर सकें, चाहे थोड़े से जमीन हमारे वहाँ पर भी फल साग सब्जी उगा रहे हैं उसमें भी प्रयोग कर सकें। तो इसको स्टोर कैसे किया जाए, आपको जैविक खाद को क्या करना है, एक सूखे और छायादार स्थान पर रखें जो बन गए हमारे, और इसे ढक्कन वाले जो कंटेनर होते हैं ना उसका प्रयोग करें। जो बन गया है उस डब्बा में डाल दें और उसका ढक्कन का प्रयोग जरूर करें। जस्ट अगर ढक कर रखोगे ना जितने सूक्ष्म जीव उस पर ग्रो ना करें, अब बाकी चीज़ में जिसका गुणवत्ता हमारा मेंटेन रखे, और नमी से बहुत ज़्यादा नमी नहीं उसमें होना चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी, ऐसा नहीं कि जब खाद को आप हाथ में ले उसे पानी निकलने लगे, थोड़ा सा भी दबाया तो पानी निकल जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, नमी से भी उसको बचा कर रखना है। और कंटेनर कैसा प्रयोग करना है, जो डब्बा है उसका जिसका ढक्कन वाला होना चाहिए, उसमें आपको जो हमारे खाद तैयार हो गए उसमें रखें, नमी से बचा कर रखना है। और यही सारी इस तरीके से आप ना जो हमारे बने हुए खाद हैं, हमारे जो कंपोस्ट खाद तैयार हो गए हैं उस तरीके से आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। लंबे तक सुरक्षित रखेंगे तभी आप अपने फसलों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। छोटी सी विधि है कि उसको कैसे प्रयोग कैसे इसको स्टोर कर रख सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे जूट सैक जूट वाली बोरा उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, कट लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है हमारा नमी बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, कहीं थोड़ी बारिश वारिश हुई तो नमी वो बहुत इजीली ऑब्जर्व करता है। जो हमारा खाद बनाते हैं ये बहुत पोरस नेचर का होता है, तो बहुत जल्दी पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, ये शोषित कर लेता है। तो वो कोशिश करना है कि ऐसा कंटेनर ले जिसमें छेद वेद कहीं ना हो, उसमें रख दें, ढक्कन से लगा दें उसका, नमी बहुत ज़्यादा ना जाए, नमी उतना ही जितना ऑलरेडी बना था उतना ही नमी उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उसमें होना चाहिए, तब अभी आप लंबे समय के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं।
1: जी, जैविक खाद के उपयोग के तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ फायदे होंगे अगर किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करते हैं।
0: जैविक खाद करने के उपयोग और फायदे तो आपको इस बातें से समझ में आ रही कि मैंने पहले ही बोला जैविक खाद मतलब प्राकृतिक खाद। प्राकृतिक खाद बोलने का मतलब जहाँ प्राकृतिक चीज़ों का, जिसके जो हमारे यूज में नहीं है, उस चीज़ों का प्रयोग करके हम बनाते हैं, उसको हम जैविक खाद कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक चीज़ों का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो पहला फायदा तो हमारा यही हो गया कि रासायनिक, जब इसका प्रयोग से हम खेती करेंगे तो हमारा खेत कैसा होगा, वो रासायनिक मुक्त खेती होगा हमारा। इसमें जैविक खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जो जैविक खाद का प्रयोग करें फसल भी वही खाएगा, क्योंकि फसल का भोजन वही है। तो जो हम और उस फसल में रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो जो फसल आ जाते हैं, जो फसल का इल्ड आता है वो हम खाते हैं, तो जैविक चीज़ें जो हमारे हैं वो हम तक पहुँचेंगे, तो हम भी शुद्ध, पौधा भी शुद्ध, हमारे मृदा भी शुद्ध, हम भी स्वस्थ, तीनों चीज़ स्वस्थ हो गए हमारे। हम जो चेन में बोलते हैं ना, एक फूड चेन से हम कनेक्टेड होते हैं, तो फूड चेन हमारा बिल्कुल शुद्धता हो गया, बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें आ गई, ये फायदा हो गया। प्रकृति का संरक्षण हो ही रहा है, प्रकृति संरक्षण आप इसे समझ सकते हो, जहाँ रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये जैविक प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना रहे हैं, ऐसी के प्रयोग मिट्टी में कर रहे हैं, और जो चीज़ मिट्टी में जाती है वो फसल में जाती है, फसल में जो जाती है वही हम खाते हैं, वही जानवर तक पहुंचती है, तो पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है, और वही मिट्टी में जो चीज़ डालते हैं तो ये पोषक तत्व, मैंने पहले ही बताया पोषक तत्व प्रदान करता है फसलों को, जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व चाहिए पौधों को वो प्रदान करता है। अब बहुत हमारे पोषक तत्व होते हैं पौधे उसको वहाँ से ग्रहण किए तो किए, नहीं तो वो बहकर पानी में चला जाता है। अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारे पानी भी प्रदूषित होता है, हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है, तो जब हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो जो वहाँ से बहकर पानी में जाएगा तो वो भी प्राकृतिक है, वो पानी भी हमारा प्रदूषित नहीं होगा, मिट्टी प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा जलवायु प्रदूषित नहीं हुआ, हमारा हम मनुष्य हम जानवर कोई भी प्रदूषित नहीं होगा, सब प्योर प्राकृतिक रहेंगे। ये हमारे फायदे हो गए, जो हमारे मतलब हमारे इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें आते हैं सब सुरक्षित रहेंगे, सब प्राकृतिक तरह से स्वस्थ रहेंगे, धनी रहेंगे।
1: तो किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे जैविक खाद बनाने के घरेलू उपाय के बारे में, तो इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं ये आपने जाना। तो आशा करते हैं कि जैविक खाद की तरफ आप भी जोर देंगे, इस प्राकृतिक खाद की तरफ, और अपने भूमि, अपनी खेत को, आप अपनी मिट्टी को आप स्वस्थ बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग, तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं। इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं। रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की परती।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
2: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
3: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
2: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
3: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
4: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
5: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
4: हाउ आर यू?
6: Thank you,
4: congratulations.
6: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
4: Oh, fine.
6: Thanks for coming in. Please come in. Please.
5: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
4: Come.
5: Come.
4: John, please come here.
5: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh,

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह,

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थी। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। ₹1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
2: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
2: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
7: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
2: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
8: इंडियंस आर सो गुड।

0: in mathematics and physics.
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
2: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
3: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
5: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
6: हाँ।
5: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
5: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
6: सूरज।
5: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: रोज बहुत आसान पूछते हो।
5: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
7: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
5: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
6: हाँ।
5: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
5: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
5: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
5: एकदम सही एकदम सही।
8: हमें धूप भी देता है।
5: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
5: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
7: विटामिन डी।
5: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
8: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
5: हाँ हाँ बिल्कुल।
7: पेड़ों को खाना भी देता है।
5: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
7: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
5: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
7: हाँ।
9: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
5: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात

0: हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना,
2: चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
2: तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता।
1: हाँ।
0: तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
2: है। करता।
0: सूरज आग का गोला, लेकिन
3: सूरज आग का गोला
0: फिर भी जीवन दाता है।
3: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
3: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
3: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
3: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
3: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
3: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
3: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं
1: आऊँ? वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
7: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
7: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: तो इसका हल क्या है?
7: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
6: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली की ओर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में पेश हैं, यानी उन्नत कृषि कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, तो ज़रूर आपके लिए कुछ खेती बाड़ी की बातें होंगी, जिससे कि आज के हमारे जो युवागण हैं वो भी जुड़ें और वो भी समझें खेती से क्या क्या आप संभावनाएँ आपके लिए लाई जा सकती हैं और कैसे आप खेती कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इससे जुड़े आप जान सकते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा बहुत ही अच्छा है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसे, और बहुत ही खास विषय लेकर हमारे बीच आज डॉक्टर AK झा हैं, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। हमारा विषय है जल कुंभी के प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। तो आज डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे हम इसे जलकुंभी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें इसके बीच में आएंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद
5: डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
6: वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, खास करके जैविक खाद है, जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब, गोबर और फसल अवशेष का प्रयोग करके
5: जी
6: केचुआ की सहायता से बनने वाला खाद, जो कि सामान्यतः भूरे रंग का या काले भूरे रंग का होता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
5: जी,
6: वर्म मतलब केचुआ और उसकी सहायता से बनने वाला खाद यानी वर्मी कंपोस्ट ये होता है।
5: यानी गोबर और जो केचुआ है उससे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, और हमारे फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, आज के परिवेश की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जो है देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है?
6: देखिए, वर्मी कंपोस्ट इसलिए बढ़ता जा रहा है कि यदि हम समान गोबर की खाद की बात करते हैं तो उसकी तुलना में इसमें पोषक मान काफी होता है, और साथ ही साथ में इसमें एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, जो गोबर की खाद है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होगा, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें 1% से ज्यादा नाइट्रोजन होगा। फॉस्फोरस भी गोबर की खाद में सिर्फ 0.2% होगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में यदि देखते हैं तो इसमें 0.8% से ज्यादा आपको फॉस्फोरस होगा। पोटास भी उसमें यदि हम गोबर की खाद में देखते हैं तो सिर्फ 0.5% हो गया, यानी आधा परसेंट, और यदि हम पोटास इसमें देखते हैं वर्मी कंपोस्ट में तो उसमें 0.8% के ऊपर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो आपका पोषक मान है वो ज़्यादा है, यानी कि कम मात्रा में हम खाद डाल करके, वर्मी कंपोस्ट डाल करके ज़्यादा पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा पहले था, क्या था कि हमको गोबर खाद की बहुत ज़्यादा मात्रा लगती थी।
5: बिल्कुल,
6: यह जरूरी हो गया हुआ है कि हम ऐसे जैविक खाद की बात करें जिसमें कम मात्रा में हमको प्रयोग करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमको पोषक मान की पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके, जिससे कि कम मात्रा में ही हम अपने खेती को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, हम अपनी मिट्टी को ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत है।
5: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें आपने बताई कि आजकल जो है क्यों बढ़ रही है इसकी मांग, लेकिन अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में, तो क्या जल कुंभी का उपयोग हम कर सकते हैं, और अगर उसकी जगह पर हम पुआल का उपयोग करें तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा?
6: देखिए, एक तो पहली बात कि पुआल आदमी जानवर को खिलाने के लिए भी प्रयोग करता है, तो उतना पुआल तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी

0: इसका यदि हम प्रयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में, तो एक तो ये बात है कि ये फायदेमंद है। दूसरी बात, यदि हम पोषक मान की बात यदि देखते हैं, तो पोषक मान भी इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि यदि हम इसमें देखें जलकुंभी में, जलकुंभी में नाइट्रोजन आपको ज्यादा है, यानी 2.373% है, जबकि यदि हम पुआल को देखें तो पुआल में सिर्फ 0.61% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फास्फोरस इसी तरह से देखें तो जलकुंभी में जहां पर 0.583% है, वहां पर पुआल में सिर्फ 0.1% पाया जाता है। पोटास लगभग लगभग दोनों में बराबर पाया जाता है। जस्ता यदि देखते हैं तो 250 ppm के आसपास पाया जाता है जलकुंभी में, जबकि 17.7 यानी 18% के आसपास आपको जस्ता पाया जाता है पुआल में। और इसी तरह से हम लोहे की बात करते हैं तो लोहा लगभग 1824 ppm पाया जाता है ये जलकुंभी में, लेकिन सिर्फ 57.9 ppm पाया जाता है आपको पुआल में। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें पोषक मान ज्यादा है। और कोई जो केचुआ की खाद बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वो कहीं बाहर से तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश या पोषक मान लाता नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: जो आप सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में यदि ज्यादा मात्रा में पोषक मान है तो उससे बनने वाला जो बर्मी कंपोस्ट है उसमें ज्यादा पोषक मान होगा। तो इसीलिए यह यदि हम जलकुंभी से बनाए तो उसका पोषक मान ज्यादा होगा। साथ ही साथ जो यह एक समस्या ग्रस्त हमारे पास ये है जो हमारे जल संसाधन को प्रदूषित कर रहा है, उसका एक उपचार भी हो जाएगा, एक उपयोग भी हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आप पुआल के स्थान पर, जैसे मान लीजिए 2 भाग आप प्रयोग करते हैं पुआल और 3 भाग प्रयोग करते हैं आप गोबर की खाद, उसके स्थान पर यदि 2 भाग यदि आप जलकुंभी को प्रयोग करें और 3 भाग गोबर का प्रयोग करें, तो उससे जो बनने वाला बर्मी कंपोस्ट होगा उसका पोषक मान ज्यादा होगा। इसीलिए जिसकी संभावना बहुत बढ़िया है और आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि इसका हम प्रयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हम समझ गए कि जल कुंभी का प्रयोग अगर हम ज़्यादा करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तो बिहार के परिवेश में जो देखा जाता है जल कुंभी का प्रयोग लोग करना चाहते हैं, इसको तो इसकी क्या संभावनाएँ हैं?
0: अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बिहार में लगभग 9.12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो समस्याग्रस्त है, खास करके वेटलैंड है। तो उस वेटलैंड में आपको जल कुंभी वैसे ही पैदा हो जाता है, और जलकुंभी वहां पर पैदा होकर के वहां न तो कोई फसल पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके जल संसाधन है उसको भी प्रदूषित करता है। तो बिहार में काफी ज्यादा जगह पर आप देखते हैं कि ये जलकुंभी है और काफी ज्यादा मात्रा में है। तो यदि हम बिहार की बात करें, वहां के जल संसाधन को हम ठीक ठाक करना चाहते हैं, उसके क्वालिटी को ठीक रखना चाहते हैं, तो वहां पर काफी इसका इसकी संभावना है, काफी इसका स्कोप है। यानी इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक तरफ तो हमको गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट बनता है, और साथ ही साथ यदि हम देखते हैं तो जो हमारा प्रदूषण की समस्या है उससे भी निजात मिलता है। यानी इसकी काफ़ी संभावना है बिहार के परिवेश में।
1: जी, तो इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं बिहार के परिवेश में। और डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे हैं जलकुंभी का, तो इसका प्रयोग अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो पोषक मान में क्या अंतर आता है?
0: अभी हमने आपको बताया है कि आपने देखा भी है, सुना भी है कि ये जो जलकुंभी है, जलकुंभी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं इसकी मात्रा पुआल के तुलना में ज्यादा है। यानी उससे यदि हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान जो होगा वो ज्यादा होगा। अब जैसे हम एक बात कहें कि हमने केवल गोबर से यदि बनाया हुआ है या जो जलकुंभी है और इसको जैसे हमने बताया कि 40% आप जलकुंभी ले लीजिए और इसको क्या कहते हैं 60% आप गोबर लीजिए, तो उससे यदि आप बनाते हैं तो उसके पोषक मान में कितना अंतर होता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि ये जो पैडी स्ट्रॉ है
1: जी,
0: उसको यदि बनाएंगे तो आपको उतना पोषक मान नहीं मिलेगा। सिर्फ गोबर से यदि हम बनाते हैं तो 1.667% अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 1.5% से के आसपास उसमें आपको नाइट्रोजन रहता है। यदि हम वही जलकुंभी और इसका जो अभी हमने बताया 2 भाग जलकुंभी और 3 भाग जो आपका गोबर है इसको मिला करके बनाया तो वहां 2% के आसपास 1.983% नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से फास्फोरस भी सिर्फ गोबर से यदि बनाते हैं तो वो 0.8% के आसपास होता है, 0.719% पाया गया हमें। और वहीं पर यदि हम जो जलकुंभी के साथ मिला करके यदि देखा तो वहां पर 0.88% के ऊपर हमको फास्फोरस पाया गया। पोटास भी यदि हम देखते हैं तो सिर्फ गोबर से बनाते हैं उसकी तुलना में इसमें पोटास भी थोड़ा सा ज्यादा हमें मिला। और वहीं पर यदि हम

0: पुआल से बनाते हैं तो पुआल में देखिए फास्फोरस हमने अभी बताया 0.1% ही फास्फोरस होता है, तो उसमें सिर्फ पुआल से यदि आप बनाते हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होगी। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं मित्रों कि अब जो बर्मी कंपोस्ट है यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आ गया हुआ है, यानी आप ऐसा ही बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं या उसको बेच सकते हैं जिसमें 1% कम से कम नाइट्रोजन हो, 0.8% फास्फोरस हो, 0.8% पोटास हो या उससे ज्यादा हो, उसी को आप बेच सकते हैं। तो यदि आप इसका व्यापार भी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को मिला, और यदि हम उसमें जलकुंभी मिलाते हैं तो यह हमारी समस्या कुछ हद तक दूर करती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग काफी फायदेमंद है और जरूरी भी है
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की और जलकुंभी की, तो जलकुंभी का प्रयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे कर सकते हैं वो भी बता दें।
0: अब देखिए, एक किसान था सुपौल का, वो जो करता था वो क्या करता, एक भाग आपको ये लेता था जलकुंभी और 5 भाग इसमें आपको गोबर मिलाता था। अच्छा। और उसमें भी उसके जड़ को काट के हटा देता था जलकुंभी के जड़ को, और उसमें जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा कि इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है वह भी थोड़ा सा कम है, हालांकि उसी के आसपास है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके जड़ को आपको काट के हटाना है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पर शोध करके ये देखा गया कि आखिर हम इसमें कितना परसेंट तक मिला सकते हैं। तो हमने देखा, जो हमने पाया है कि इसमें यदि आप 40% तक, यानी 2 भाग जितना पुआल का आप करते हैं, यानी 40% तक यदि आप जलकुंभी मिलाते हैं, वहां तक आपका केचुआ उछुआ बढ़िया बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। केचुआ का भी विकास होता रहता है, उसकी मोटाई वगैरह वगैरह भी बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब कि आपको ये करना है कि 40% जो आपका ये है जलकुंभी, उसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़ों में 1 इंच के टुकड़े में काट दें, और इसको 60% गोबर इसमें मिला दें, गोबर मिला करके इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें, 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता के लिए, और उसके बाद उसे ढेर बना करके उसमें फिर केचुआ का प्रयोग कर दें। और जैसे आप सामान्य बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं कि उसमें सिंचाई करते हैं, नमी 60-70% बना करके रखते हैं, तो ये आप करके रखेंगे। अब ढेर विधि ज़्यादा आपके लिए सहूलियत है तो ढेर विधि में ही कीजिए। अच्छा। तो ढेर विधि में आपको हमने बताया कि 40% उसमें जलकुंभी लेंगे, 60% गोबर लेंगे, दोनों को मिला करके प्री डाइजेशन के लिए 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उससे ढेर बना लीजिए। ढेर की चौड़ाई कभी भी 4-6 फीट के बीच में ही रखिए।
1: अच्छा।
0: उसकी ऊंचाई 2.5-3 फीट से ज्यादा नहीं रखिए, और लंबाई जितना बड़ा आपका छप्पर है, सेड है, उसी के हिसाब से आप लंबाई रखें। उसके बाद जब आपने देखा कि ये जो हमारा मिश्रण है वो ठंडा हो गया, हाथ डाल करके देखा कि ये ठंडा हो गया, तो उसके बाद उसमें आप केचुआ डाल देते हैं, और केचुआ डाल करके आप उसको छोड़ देते हैं, और यह आपको धीरे धीरे बर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित होने लगता है। जब चाय की पत्ती जैसी संरचना आपको बनना शुरू होता है, उसमें 2-3 दिन के लिए सिंचाई रोकिए, और ऊपर में वो चाय की पत्ती जैसी जो संरचना है उसको हटा लीजिए। हटा करके फिर चाल करके आप पैक कर लीजिए, जिससे कि 15-25% नमी हो, क्योंकि यह भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत है कि उसमें 15-25% के बीच में नमी रहनी चाहिए। जो आपका टोटल कार्बन है वो 18% से ज्यादा होना चाहिए। तो यह तो गुणवत्ता तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप नमी बरकरार किए हुए हैं, उसके बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही सुझाव देना चाहूंगा कि आपके पास उतना पुआल है नहीं, उतना गोबर है नहीं, तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास पुआल उतना है नहीं जिसका प्रयोग या भूसा का ही प्रयोग आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में करें, और उतना गोबर भी नहीं है। तो गोबर नहीं है तो गोबर का एक 40% सब्स्टिट्यूशन तो इससे हो सकता है, वाटर हाइसेंस से, और वो तो फालतू चीज पड़ा हुआ है, तो उस फालतू चीज का प्रयोग आप बर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा वो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो जो गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है कि यह जो हमारे पास एक वीड है, हमारे पास जो खरपतवार है, एक तरह का ये खरपतवार ही है, इसका प्रयोग बर्मी कंपोस्ट बनाने में करें। इससे आपका जो जल संसाधन है वह भी आपको प्रदूषण मुक्त होगा, साथ ही साथ आपको फायदा भी होगा। आप जो बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बर्मी कंपोस्ट बनेगा। इसके चलते ये होगा कि जहां पर ज्यादा मात्रा में बर्मी कंपोस्ट, अब एक छोटी सी बात समझिए ना, यदि आप बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें 1% नाइट्रोजन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही, तो वहां पर यदि मान लीजिए 40 क्विंटल लग रहा है तो 2% वाला जो होगा वहां पर आपको सिर्फ 20 क्विंटल ही लगेगा। तो बर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी बचेगी, और तब आप इसका प्रयोग आप अपनी खेती में कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों आपने सुना कि जल कुंभी का प्रयोग आप करते हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद है और संभावनाएं भी हमारे बिहार क्षेत्र में इसकी बहुत ही अच्छी है। तो फायदा इसी में है कि आप इसके प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाइए। और साथ ही कुछ अच्छी बातें यहाँ पर आपको जानने को मिली हैं इस संदर्भ में। तो अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 MHz यानी FM ग्रीन। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, आईपीए 203, पूसा 992, यूपीएस 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15-20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं डीकेसी 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड डीएचएम 117, एचक्यूपीएम 1, एचक्यूपीएम 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं बीएलएम 389, आरयू 8, वाकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150-200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6-7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80-100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, जिसमें हम बातें करते हैं किसान भाइयों की। आज किसान भाई, जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, खेती बाड़ी के नए नए गुण अपना रहे हैं और इसी में से एक आता है जलवायु अनुकूल या मौसम अनुकूल खेती। जी हाँ, आज हमारा विषय है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। और आप सभी को पता है कि वर्षा जल संचयन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ख़ास तौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय पर खास चर्चा होगी। आज हमारे बीच हैं वरीय वैज्ञानिक अंशुमन कोहली, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं ये, और आज पूरी जानकारी मिलेगी हमें इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, किसान भाइयों को, आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज कहा जाता है कि जैसे कि आज का ये एरा है उसमें मौसम अनुकूल या जलवायु अनुकूल खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये समझा दें, हमारे श्रोताओं को आप ये समझाएं कि मौसम अनुकूल खेती और जलवायु अनुकूल खेती में क्या अंतर है, क्या है ये?
1: धन्यवाद। किसान भाइयों को जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है, और उससे पहले कुछ और जानकारी मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम मौसम कहते हैं, और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु दोनों के तत्व समान ही हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि तापमान, वायु का दबाव, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इत्यादि। और यदि हम बात करें कि आज गर्मी अधिक है, आज उमस अधिक है, आज वर्षा हो रही है, अथवा आज तेज़ हवा चल रही है, तो यह तो ही मौसम की बात। परंतु यदि हम कहें कि मेघालय में वर्षा अधिक होती है या जून में भागलपुर में उमस अधिक होती है, भागलपुर में वर्षा का वार्षिक औसत 900 मिलीमीटर है इत्यादि, तो यह बात है जलवायु की। अब मौसम के अनुकूल कृषि क्या हुई? जैसे कि रबी और खरीफ की फसलों की खेती, जो कि आमतौर पर सभी किसान करते हैं। कुछ प्रगतिशील किसान ग्रीन हाउस पद्धति से गैर मौसमी फसलों की भी खेती करते हैं तथा भरपूर लाभ उठाते हैं। यह सब अपनी जगह ठीक है, पर जलवायु अनुकूल कृषि क्या हुई? जो हमारे दीर्घकालिक मौसम का जो औसत है उसके अनुरूप की जाए।
0: जी, तो सर आपने अभी कहा था शुरुआत में कि जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो बेहतर तरीके से अगर आप थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दें तो और ज़्यादा उन्हें ज्ञान हो जाएगा इनके बारे में।
1: जी, तो हम बात करना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से जलवायु अनुकूल कृषि के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम दीर्घकालिक मौसम के औसत के हिसाब से खेती करें तो वो होगी जलवायु अनुकूल कृषि, यानी उस जलवायु के हिसाब से खरीफ में कौन सी फसलें किस पद्धति से लगाई जाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, तो वो जलवायु के अनुकूल हो सकती हैं। अब किसी भी पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति वहाँ की जलवायु के अनुसार ही अवतरित होते हुए पनपे हैं। सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों की पारंपरिक फसलें अधिकतर जलवायु के अनुकूल ही हैं। जो हमारी पुराने ज़माने से जो पारंपरिक फसलें चल रही थीं वो सब जलवायु के अनुकूल ही हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या एवं प्रगति की होड़ में अक्सर गैर टिकाऊ प्रक्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन से बढ़ती हानि को कम करने के लिए कृषि में जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही स्तर पर परिवर्तन करने होंगे। सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों स्तर पर, अर्थात किसान के व्यक्तिगत स्तर पर तथा एक वृहद भौगोलिक स्तर पर फसलों का चयन जलवायु के अनुकूल किया जाना चाहिए। मसलन, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ के दौरान धान की जगह मक्का का चुनाव करने से भूमिगत जल स्रोतों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह रबी के दौरान गेहूं के स्थान पर वर्षा सिंचित दलहनी एवं तिलहनी फसलों यथा चना, मसूर, खेसारी, तिस्सी, सरसों इत्यादि का चयन पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ माना जाएगा। ऐसा समझा जाता है कि जलवायु अनुकूल फसलों के चुनाव से हम उस पारिस्थितिकी में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, प्रकाश, वायु अथवा जैव संसाधन कुछ भी हो सकते हैं।
0: तो जैसा कि डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है वो है जलवायु अनुकूल कृषि में बेहतर जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व। तो अगर हम बात करते हैं वर्षा जल संचयन की, हम इसे करके कैसे मतलब जलवायु अनुकूल कृषि की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी, अब आज की चर्चा का विषय चूंकि जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन है, आगे की चर्चा में हम जल प्रबंधन पर ही केंद्रित रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तम फसलोत्पादन में सिंचाई और जल निकासी का बहुत महत्व है। किसी पारिस्थितिकी में वर्षा का होना या ना होना, किस वेग से होना, कितनी वर्षा होना इत्यादि वहाँ की जलवायु का प्रतीक है। इसी तरह तापमान, आर्द्रता इत्यादि, यह सब भी वहाँ की जलवायु को डिफाइन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को भान है, हर फसल के लिए जल की आवश्यकता कितनी हो यह फसल के साथ साथ मौसम एवं जलवायु पर निर्भर करता है। अर्थात फसल का चुनाव व जलवायु, इन दोनों पर ही यह निर्भर करता है कि जल की आवश्यकता आपकी फसल के लिए कितनी होगी। सिंचाई के लिए जिन जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यथा जीवाश्म ईंधन, भूमिगत जल स्रोत, सतही जल स्रोत इत्यादि, उन सभी का योगदान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सराहनीय है, आशातीत है। साथ ही साथ कृषि हेतु भूमिगत जल के प्रयोग से भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। इसकी वजह से गैर कृषि कार्यों के लिए जल और अधिक गहराई से निकाला जाता है, जिससे कि जल के उपभोग की पर्यावरण लागत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सतही जल के सिंचाई हेतु प्रयोग से सतही जल की उपलब्धता गैर कृषि कार्यों के लिए घट जाती है। वर्षा जल का संचयन करने से जल के भूमिगत एवं सतही संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही साथ कृषि की पर्यावरण लागत भी कम की जा सकती है तथा कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वर्षा जल संचयन के द्वारा परंपरागत जल स्रोतों के दोहन को कम करके कृषि की पर्यावरण लागत को कम करते हुए जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि के सभी क्रियाओं को बेहतर ढंग से करते हुए तथा जल की बचत करते हुए कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाया जा सकता है।
0: जी, और डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उसमें लिमिट लेस तो नहीं है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, और उसी में से एक है हमारा जल। जी हाँ, क्योंकि ये हमें बचाना, इसे संरक्षित रखना है, और क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसी में अगर किसान भाइयों से हम इसे जोड़ें, तो खेती के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्षा जल वो संचयन करें तो बेहतर होगा कि उनकी जो पानी है उसकी बर्बादी कम होगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे वो वर्षा जल संचयन कर सकते हैं अपनी खेती के लिए, और इसका भरपूर इस्तेमाल वो अगर वर्षा ना हो तो उस समय भी कैसे कर सकते हैं, वो बताएं।
1: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाई अपने खेतों में वर्षा का जल संचयन करें। कैसे करें, इस पर अब हम थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए मूल मंत्र एक ही है कि खेत का पानी खेत में ही रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि खेत में जो वर्षा होती है उसका जल खेत में ही इकट्ठा रहे, बाहर बह के ना जाने पाए। इसके लिए किसान भाइयों को खेत में वर्षा जल संचयन हेतु निरंतर प्रयासरत रहना होगा तथा सदैव तैयार रहना होगा। अपने खेत में प्रबंध रखने से यदा कदा पड़ने वाली वर्षा का जल संचयन किया जा सकता है। जैसे कि खेत के चारों ओर की मेड़ मजबूत एवं ऊंची रखनी चाहिए ताकि वर्षा का पानी खेतों के अंदर ही एकत्रित रखा जा सके, तथा खेत की जमीन में पानी को रिसने के लिए समुचित अवसर मिल सके। और दूसरी बात कि खेत में समुचित मात्रा में कार्बनिक खाद का व्यवहार निरंतर करना चाहिए ताकि मृदा की भौतिक अवस्था स्थिर एवं कायम रह सके तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता भी अच्छी बनी रहे। इसके बाद तीसरी बात कि यथासंभव न्यूनतम जुताई तथा श्रेष्ठ फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाना चाहिए जो कि मिट्टी की भौतिक अवस्था को अच्छा रखने में सहायक होते हैं तथा वर्षा जल संचयन में मददगार साबित होते हैं। फिर खेतों को जोत के अनुसार लेजर लेवलर इत्यादि उपकरणों की मदद से समतल करना चाहिए ताकि सिंचाई एवं वर्षा जल नियंत्रित रखा जा सके तथा समान रूप से पूरे खेत में सिंचाई एवं जल निकासी की व्यवस्था की जा सके। और फिर किसान भाइयों को यह भी चाहिए कि अपने खेतों में सदैव वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप ही कीटनाशक एवं उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि अपरिहार्य स्थिति में खेत से निकासी किया गया जल पर्यावरण को दूषित ना कर सके। इसके बाद फसल चक्र का सही चुनाव से एक फसल के बाद मृदा में बचा हुआ जल अगली फसल के प्रयोग में आ सकता है। अतः पारिस्थितिकी के अनुसार फसल चक्र का चुनाव करने से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वर्षा जल का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। एक और बात कि आकस्मिक एवं असामयिक वर्षा तथा तीव्र गति की वर्षा होने की स्थिति में खेतों से जल निकासी का भी समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। निकासी किया गया जल किसी गड्ढे या पोखर में इकट्ठा करने से हम आने वाले दिनों में उसको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर अंत में एक बात कि खेत के बाहरी किनारों एवं मेड़ों पर साल भर हरी रहने वाली चारे की फसल या घास जैसे कि हाइब्रिड नेपियर इत्यादि लगाने से वर्षा जल का बहाव धीमा होने के साथ साथ मृदा का अपरदन भी कम हो सकता है तथा मृदा की भौतिक अवस्था भी अच्छी बनी रहती है। तो यदि किसान भाई इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सकती है और इस परिस्थिति में सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहे जीवाश्म ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के एक कारक के रूप में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ऐसी व्यवस्था होने से हमारा कृषि तंत्र एक बेहतर जल संसाधन प्रबंधन की ओर अग्रसर होगा तथा जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ व्यवस्था का हिस्सा बन सकेगा।
0: जी, तो इस प्रकार आपने श्रोताओं जाना कि कैसे जलवायु अनुकूल कृषि में जल प्रबंधन के लिए वर्षा जल संचयन का महत्व है, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच थे डॉक्टर अंशुमन कोहली जो कि वरीय वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस खास विषय के बारे में। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि
4: 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है। महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा? लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देखरेख, उस पैसे की देखरेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं, और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
8: कौन सी कहानी टीकी?
7: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
9: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
7: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
8: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
7: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
10: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें हम बातें करते हैं खेती से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज भी कुछ ऐसी ही बातें हम लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। आज का हमारा विषय है केचुआ खाद बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता, यानी कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम आपको आज बताएंगे। और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शिव पूजन यादव, जो कि वैज्ञानिक हैं, KVK बसूली महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, जो आप सभी को बताएंगे बताएंगे कि क्या होता है ये केचुआ खाद, इसे बनाने का तरीका क्या है, इसके लाभ क्या क्या मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद मैम।
4: सबसे पहले तो केचुआ खाद क्या है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
12: तो जो हम आज बात करेंगे केचुआ खाद की या बर्मी कंपोस्ट की, तो हम चाहेंगे कि जो जैसा हम जानते हैं कि विगत वर्षों में जब हरित क्रांति आई तो हमने रासायनिक खादों का अंधाधुंध और अनियंत्रित तरीकों से प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई और आज हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की भी कमी होने लगी है। ऐसे में हमें ऑर्गेनिक खाद, जिसको हम जैविक खाद कहते हैं, उसमें केचुआ की खाद एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो केचुआ की खाद है क्या, तो हम बात करेंगे कि केचुआ जो हमारे अपशिष्ट हैं, चाहे कृषि से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे किचन से निकले हुए अपशिष्ट हैं या हमारे पशुओं से निकला हुआ गोबर है, गौमूत्र है, उसके द्वारा जब हम उसको सड़ा के केचुआ डाल के, केचुआ अपने मल के रूप में उसको खा के मल के रूप में जो निकालता है, या केचुए का कोकून सड़कर खाद बन जाता है, तो इसे हम केचुआ खाद कहते हैं।
4: इसे बनाने की विधि के बारे में जानना चाहेंगे।
12: तो सबसे पहले हम केचुआ खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहला जरूरी होता है कि हम स्थान का चुनाव कैसे करें। जहाँ पे हम केचुआ खाद बनाने जा रहे हैं उसके लिए स्थान का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ जो समतल जगह है उससे लगभग 3 फीट ऊंचा हो, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए और वो जगह छायादार स्थान में होना चाहिए। अगर छायादार स्थान में नहीं है तो हमें टीन का शेड लगाना पड़ेगा जिससे उसको छायादार बनाया जा सके। इसके साथ ही उसकी बनाने की विधि क्या है, तो हम इसको क्यारी बना के ईंट से तैयार, कंक्रीट से तैयार क्यारी बना के उसमें केचुआ की खाद बनाते हैं। तो क्यारी का साइज हमें क्या रखना चाहिए, तो 3 मीटर × 2 मीटर × 1/2 मीटर की या 50 सेंटीमीटर का क्यारी बनाएंगे। इसमें 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1/2 मीटर गहरा क्यारी बनाएंगे। इस तरह की अगर हम क्यारी बनाते हैं ईंट से तो उसमें लगभग 5 टन सड़ा हुआ हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ है हमारे पास वो उसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें होता है हम उसको अवशिष्ट पदार्थ को किस तरह से क्यारी में डालना है। तो कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जिसको, जिससे भी हम अपना खाद बनाने जा रहे हैं, केचुए की खाद बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी अवशिष्ट हमारे पास है उसको हम कहीं एक छायादार स्थान में ढेर बना के इकट्ठा कर लें और लगभग 15 से 20 दिन तक उसको कूड़ बना के, ढेर बना के रखे रहें और उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे क्या होगा कि वो पार्शली डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कुछ मात्रा में वो सड़ जाएगा बाहर ही। पूरी तरह अगर हम डायरेक्ट उसको क्यारी में डाल देंगे, बनाने वाले गड्ढे में डाल देंगे, तो उसका तापमान अच्छा नहीं रहेगा और केचुए पे नुकसान पहुंचाएगा केचुए को। तो इसीलिए उसको हम पहले पार्शली डिकम्पोज कर लें, उसके बाद ले जाके हम जिस जो क्यारी हमने बनाई है छायादार स्थान में उसमें हम उसको भर देंगे। भरने के बाद लगभग 4 से 5 दिन तक हम उसको पानी छिड़कते रहेंगे और भर के रखे रहेंगे। जब उसका तापमान एक पूरे गड्ढे में देखेंगे अगर बराबर आ जाता है, लगभग केचुए के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अगर इस तापमान पे जब हमारा गोबर या जो कंपोस्ट बना रहे हैं, जो भी सड़ा मटेरियल है उसमें भरा हुआ है, वो आ जाए तो हम उसमें केचुआ डालेंगे। एक टंकी में जो एक क्यारी मैंने बनाई है उसमें लगभग 1 किलोग्राम केचुआ डालेंगे, जिसमें लगभग 5,000 केचुआ होंगे। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम केचुआ किस प्रजाति का केचुआ डालेंगे। तो उसमें होता है एसिनिया फोइटिडा है, एडुलस इजैनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केचुआ की प्रजाति है, इसको हम डाल के इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता खाद बदलने की बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे कि उसमें केचुआ भरने के बाद जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है उसको भरने के बाद हम उसमें पानी का छिड़काव 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे, जिससे उसका तापमान बना रहेगा और उसमें नमी बनी रहेगी और केचुआ अपना विकास उसमें अच्छे से कर पाएगा और खाद को खाकर अच्छे से बदल पाएगा।
4: अब हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग के बारे में कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है।
12: तो जो हमारा खाद बनकर तैयार हुआ है उसको अगर हम एक ही क्यारी में बनाए हैं तब तो हमें लेयर बाय लेयर उसको आसानी से निकालेंगे। अगर कई क्यारी में बना ली है, जैसे अगर हम 100 वर्ग मीटर में अगर हम केचुआ की खाद बना रहे हैं तो इसमें लगभग 90 क्यारी हमारी, जितना मैंने साइज बताया है, तीन मीटर गुणे दो मीटर गुणे हाफ मीटर की क्यारी लगभग 90 क्यारी बन जाएंगी। इस तरह से अगर हम खाद बनाते हैं तो हमें उसको लगभग खाद बनने में लगभग 30 से 40 दिन लगेगा डिकम्पोज होने में। तो उसमें हम 30 से 40 दिन बाद एक क्यारी में ऊपर की 6 इंच लेयर को निकालते रहेंगे और वो खाद केचुआ अपना नीचे की तरफ जाता है तो खाद बनाता हुआ चला जाएगा और हमारा खाद भी हम प्रयोग करते जाएंगे। केचुआ एक क्यारी से इस तरह बनाते हैं तो दूसरी क्यारी में अपने आप ही मूव करता है चला जाएगा और खाद बनती निकल जाएगी। तो उसको निकालने के बाद हम उसको छानते हैं, 2 मिलीमीटर छन्नी से उसको अच्छे से छान लेंगे, जो उसमें कंकड़ पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, जो खाद होगी हमारी वो अच्छे से हमें मिल जाएगी। तो इस खाद में जो वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार होगा इसमें लगभग 1.5% नत्रजन होता है, 1.5 से 3% फास्फोरस होता है और 1.5% ही के आसपास पोटास होता है। इसके साथ इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारी मिट्टी में अभी खासकर कमी दिखने लगी है। तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व, उसके साथ ही इसमें बहुत कई तरह के एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो अब इसका प्रयोग कितना करना चाहिए, किस फसल में इसका कितना प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जो धान्य फसलें हैं जैसे चावल है, धान है, गेहूं है, ये सब हैं, इसके साथ ही सब्जी है, तिलहन की फसलें हैं, दलहन है, तो इसमें हम 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे। इसको हम बुआई से पहले खेत में बिखेर देंगे और उसको जुताई करके अच्छे से खेत में मिला देंगे। इसी के साथ ही अगर हम फलदार वृक्षों में इसको प्रयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को हम प्रत्येक पौधे पर डाल के अच्छे से खुरपी से मिला देंगे। इसी तरह अगर हम घास के लान में डाल रहे हैं तो 3 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं।
13: और इससे क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा किसान भाइयों को?
12: तो जैसा मैंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट जो हमारा जैविक खाद है, तो जैविक खाद होने के कारण ये इसमें किसी तरह का कोई रसायन नहीं होता है, रसायन ना होने के कारण ये हमारी मृदा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। मृदा के भौतिक गुण में, भौतिक गुण मतलब उसकी संरचना और उसके संगठन में सुधार लाता है। उसी के साथ ही मृदा में वायु संचार, क्योंकि इसका पोरोसिटी अच्छा होता है तो वायु संचार मृदा में पोरोसिटी बढ़ा के उसका वायु संचार अच्छे से करता है। और जो हमारे वर्मी कंपोस्ट अगर हम खेत में डालते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव, जो हमारे बेनिफिशियल जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, उनका भी संख्या बढ़ जाती है, जिससे खेत में वातावरण से नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण बढ़ जाता है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट को लघु या कुटीर उद्योग के रूप में हम बढ़ा सकते हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
13: इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: धन्यवाद मैम।
13: और श्रोताओं, आप सभी से फिर मुलाकात होगी, सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
14: के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
15: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
14: लेकिन ऐसा क्यों?
15: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और आज हम जानेंगे कि क्या है बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर RB वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं?
6: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हटके अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
5: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
6: बिल्कुल।
5: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
6: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
5: जी,
6: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या, अभी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
5: जी, जी।
6: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है,

0: हमारे सारे संसाधन जहाँ सिकुड़ रहे हैं वहाँ, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
1: जी जी।
0: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
1: प्राइस कम हो जाता है।
0: उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं, कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है।
1: जी जी।
0: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर अगेती कर लेते हैं
1: पहले,
0: तो ये थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं मौसम से, थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50-60 रुपए गोभी बिक जाती है।
1: यानी कि उसके मौसम आने से थोड़े महीने
0: पहले, थोड़ा सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन, पर डे, पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय में गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें, बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे, तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
1: चैलेंजिंग हो जाता है,
0: चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है, वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
1: होती है।
0: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ड
1: नहीं
0: कर सकते हैं, तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ड कर सकते हैं तो उसको एफर्ड, मतलब उसको एडॉप्ट करें। जो किसान भाई उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ड नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली, और जो कूलिंग, हाँ, ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर से हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर हम उसको हटा देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो
0: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं, तो उसको ले जाकर के अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा ये होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
1: हमारे छोटे किसान,
0: हाँ, छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
1: अच्छा।
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की, वैसे
1: हाँ।
0: हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी, कद्दू की जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
1: ठंडी
0: का मौसम
1: आने से पहले, कुछ
0: गर्मी आने से पहले, कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च में, तो सबके मार्च अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता है।
1: जी जी।
0: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक, कुछ
1: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा हमने
1: हाँ।
0: क्या किया, ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया, दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई है उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है, कहें तो दुगना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें। हाँ, तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की।
1: हाँ,
0: थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: मिट्टी चाहिए।
0: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
1: नवसिखिए नहीं होना चाहिए बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए,
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
0: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको बताते हैं, लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको जैसे मान लिया आपका जैसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है, तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
1: जी।
0: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
1: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
0: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
1: नहीं है,
0: नहीं होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़वार वाली सब्जियां में आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इससे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
1: नहीं
0: कुछ
1: हुआ।
0: नहीं हुआ। तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है।
1: जी जी।
0: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है।
1: जी।
0: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पे खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी।
1: जी।
0: 15,000 रुपए आपको लगाना है। जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं,
1: 50% सब्सिडी सरकार की, 50%
0: सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है। 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके?
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गया, दूसरी उसी सब्जी से, सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है और कम क्षेत्रफल से। देखिए ना, आप कितना जो है
1: लो वॉल्यूम हाई क्रॉप,
0: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते हैं, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं। और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना, कम क्षेत्रफल में आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर एक एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पॉली हाउस बनाया है, उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है, बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं, जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं, तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया, आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त पैसा निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं, और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय-बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 75 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1, बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात को भी टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300g फास्फोरस, 700g पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500g अरंडी की खली, 300g सिंगल सुपर फास्फेट, 100g यूरेट और पोटाश और 10g कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2g प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त RJ उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ काम की बातें। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्र छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर दी। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें, तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon फायर स्टिक, गूगल क्रोमकास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं हैं तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है। और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा, तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ अनु और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और खासकर जब और बात करें किसानों की, तो आप सभी को पता है कि किसान जो हैं आजकल रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो होता है लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे मैं पूछना चाहूंगी, सर कैसे जो किसान हैं वो अपनी उत्पादकता, फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाएं, और तो इन रासायनिक उर्वरकों से बचकर कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से।
5: देखिए, इसमें जो किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद से आजकल क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका उत्पाद हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, उसका जो अवशेष, रासायनिक खादों का अवशेष हमारी बॉडी के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। तो प्रश्न आता है कि हम पोषक तत्व किससे दें। यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक। पहले जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का प्रायोगिक सम्मिश्रण है, जो कि समुचित मात्रा एवं तकनीक से व्यवहार करने पर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक कभी भी किसी कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जाकर के अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं या बेकार होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु जाकर के मिट्टी में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील या बेकार पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, और उस अवस्था में उपलब्ध कराते हैं जिस अवस्था में पौधा लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सही तरह से करते हैं, तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं और पौधों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
4: तो सर ने बताया यहाँ पर कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, आप उनसे हटकर जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों, और उनके महत्व पर और भी ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और इनसे हम और भी बातें जानेंगे। और आगे सर हमें क्या बताना चाहेंगे आप इस जैविक उर्वरक के बारे में?
5: इसके बारे में हमको जानना होगा कि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है। तो ये हमको जानना बहुत अत्यावश्यक है कि जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में।
4: तो सर ने हमें बताया कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये और किस प्रकार ये रासायनिक खादों से अलग ये अपना काम करता है, सर आप हमें बताना चाहेंगे?
5: देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करते हैं या फिक्सेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78.6% नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, चना, मसूर, अरहर, उसकी जड़ों के अंदर ये गांठें बनाता है और गांठों के अंदर उस वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये अपनी प्रकृति क्रियाओं के द्वारा उस अवस्था में चेंज कर देता है जिस अवस्था में पौधा लेता है, जैसे कि अमोनिकल है या नाइट्रेट है। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता, जो कि हम DAP से यूरिया से देते हैं, तो इस तरह से ये उससे अलग होता है केमिकल से, और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है खेती पर या मिट्टी पर। इसलिए ये बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा होता है पौधों को ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। तो फास्फोरस मुख्यतः पौधा आयनिक फॉर्म में लेता है, जो कि हम लोग आयन बोलते हैं। और जब हम डीएपी अप्लाई करते हैं तो डीएपी या एसएसपी जो फास्फोरस किसान भाई अप्लाई करते हैं तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 15-20% होती है। मतलब कहने का यह है कि 80-85% भाग मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है या उस अवस्था में हो जाता है जो कि पौधे के लिए बेकार होता है, अनुपलब्ध होता है। तो ये जो बैक्टीरिया या जीवाणु खाद है जब मिट्टी में जाता है और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसको अनुपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध कराता है और पौधा उसको यूज़ करने लगता है अपने कार्य के लिए।
4: तो आज ही उन्नत कृषि में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। ने हमें बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो इसमें एक जीवाणु का नाम आता है सर, और उसका नाम है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम। सर, इसका क्या काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी बातें होंगी उनके लिए।
5: देखिए, अभी जो राइजोम के बारे में बताया, तो राइजोम का प्रयोग केवल दलहनी फसलों में किया जाता है। और अभी आपने जो पूछा है एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम का क्या काम होता है, तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी के अंदर करते हैं। और ये जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी वाली फसल जितनी भी हैं, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल वाले वृक्ष जैसे कि लीची, आम, अमरूद, पपीता, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यदि किसान भाई साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने खेतों के अंदर, तो ये जीवाणु प्रति हेक्टेयर एक साल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनका प्रयोग करते हैं तो हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि डीएपी या यूरिया से देते हैं उसको सेव कर सकते हैं।
4: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो सर, हमने अभी बहुत सारी बातें जानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जाना और जीवाणु के बारे में जाना, और इसके बाद सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि खेतों में और मिट्टी में खासकर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, और इन अगतिशील पोषक तत्वों से पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मतलब किस तरीके से जैव उर्वरक इन अगतिशील पोषक तत्वों को गतिशील बनाकर जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सके।
5: देखिए, आपने जो बात करी है अगतिशील पोषक तत्व, तो मृदा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि अगतिशील होते हैं। उसको उदाहरण बताना चाहूँगा, नंबर एक पर आता है फॉस्फोरस, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिंक है और आयरन है। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि मृदा घोल में अगतिशील होते हैं और पौधे की जड़ जहाँ होती है वहाँ तक वो आ नहीं पाते। तो पौधे की जड़ के आसपास जो भी पोषक तत्व होता है, फास्फोरस, जिंक या आयरन, वो पौधे के द्वारा यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसकी फिर से कमी हो जाती है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो दूर रखा हुआ फास्फोरस है वो उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्षण होता है कि वो अगतिशील है। तो इसके अंदर एक जैव उर्वरक आता है माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो माइक्रोराइजा एक फंगस या फफूंद का एसोसिएशन होता है, सहजीवी होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ में, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है और ये अपना भोजन उस पौधे से ही लेता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो हाइफी होती है या माइसिलियम होते हैं ये पौधे की जड़ों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो दूर तक फैलते हैं, कितना फैल जाते हैं, जो मान लीजिए पौधे की जो जड़ है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो भी अनुपलब्ध फास्फोरस था उसको ये लेकर के आती है, पौधे की जड़ के अंदर दे देती है। तो इसका मुख्य कार्य है कि पौधे की जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देना और दूर से अगतिशील पोषक तत्वों को मृदा पौधे की जड़ के अंदर लेकर के आना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। यदि किसान भाई इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम तक हम कटौती कर सकते हैं, जो कि हम रासायनिक खाद के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक खादों के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं इसके बायोफर्टिलाइजर के या जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से,
4: या फिर यूं कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करते हैं अगतिशील पोषक तत्वों को मतलब गतिशील बनाने में और पौधों तक इसे अच्छे तरीके से पहुँचाने में।
5: हाँ, क्योंकि जो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बेकार पड़े होते हैं, क्योंकि पौधे से वो दूर है, पौधे से दूर है, पौधे के जब तक जड़ के पास में नहीं आएगा तो पौधे के लिए तो बेकार है। तो माइक्रोराइजा क्या करता है कि जो दूर पड़ा हुआ था अपनी हाइफी के द्वारा उसको पौधे की जड़ के अंदर डाल देता है और पौधे की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज करने लगता है।
4: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, और आगे कुछ बातें और भी जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि। हमारे आज चर्चा का विषय है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग, और डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं जैव उर्वरक के बारे में यानी कि फर्टिलाइजर के बारे में। और अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ये इनका जो इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, किस तरीके से वो इन्हें अपने खेत में डालकर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सर, अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनकी प्रयोग विधि है या फिर क्या होती है।
5: देखिए, सबसे अहम पहलू होता है जैव उर्वरकों की मात्रा और उसकी प्रयोग विधि। किसान भाई यदि सही से इसका प्रयोग विधि जानते हैं तभी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल पाता है खेत में। तो प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर एक पे आता है बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ द बीज होता है, यानी 20 से 25 ग्राम हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं और 1 kg बीज के लिए लेते हैं। जितना हम बायोफर्टिलाइजर या कल्चर लेते हैं उसका दुगनी मात्रा में पानी लेते हैं, और जितना पानी लेते हैं उसका 10% हम गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का जो गुड़ होता है जैगरी और या गुड़ ले लेते हैं। पानी के अंदर गुड़ को डाल लेते हैं और हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद केवल होता है कि गुड़ अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। जब ये गुड़ पानी में घुल जाता है तो उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में जो मैंने अभी मात्रा बताई थी जैव उर्वरक की या बायोफर्टिलाइजर की, उसको डाल करके हम एक लकड़ी की सहायता से उसको घोल देते हैं और ये अब ये घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद में जो सारे काम जो कर रहे हैं हम, ये छायादार स्थान होना चाहिए या कोई कमरा हो या पेड़ हो, उसके नीचे सारा काम करते हैं और एक फर्श पर पॉली शीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं और जो आपके बीज की मात्रा थी उस बीज को हम उस पर पॉलीथीन की शीट पर डाल देते हैं और ढेर लगा करके छोड़ देते हैं। फिर जो घोल आपने जैव उर्वरक का बनाया उसके ऊपर डाल करके उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं। हथेली से नहीं करेंगे, हथेली से करते हैं तो क्या होता है कि वो लेप उसका आ नहीं पाता है और लेप छूट जाता है, तो उंगलियों की सहायता से हम उस पर लेप लगाते हैं और लेप लगाने के बाद में, उस सॉल्यूशन का लेप लगाने के बाद में उस प्लास्टिक की शीट पर हम बीज को बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूखने में लगभग 45 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। यदि हवा चले जल्दी सूख जाता है, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो देर में सूखता है। सुखाने के बाद जिस खेत में आपको इसको बोना होता है या छींटना होता है, लाइन में लगाना होता है, उस खेत में ले जाते हैं और इसको बुवाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। दूसरा विधि होती है मृदा उपचार। तो बायोफर्टिलाइजर के द्वारा या जैव उर्वरक के द्वारा हम मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दर है उसकी 2 किलोग्राम पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, चाहे वो एजिटोवेक्टर हो या एजस्पाइलम हो या PSB हो। तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेकर के उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको 5 किलोग्राम कल्चर को और पूरी नाइट या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद में सुबह जा करके जिस खेत में बिखेरना होता है उसमें हम इसको बिखेर देते हैं और हल्का सा फिर हल्का कल्टीवेटर या हैरो से इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रखते हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट करें बायोफर्टिलाइजर को खेत के अंदर तो धूप ना हो। तो हम संतुष्ट, हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो बखेरते हैं इसको सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और बखेरने के तुरंत बाद इसको मिक्स करना होता है। तीसरी विधि आती है बिचड़ा उपचार या पौध उपचार। तो पौध उपचार के लिए इसकी जो दर है वो 2 kg पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसको मात्रा को लेकर के 100 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं और एक घोल बन जाता है। घोल बनाने के बाद जो बिछड़ा है उस बिछड़ा को उखाड़ेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं और फिर 45 मिनट के बाद में जिस खेत में रोपाई करनी होती है उसमें हम इसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये 3 विधियाँ मैंने बताई हैं। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो इसका भरपूर और जो जितना हर संभव लाभ है वो मिल पाता है और पौधों को अधिक से अधिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो जाती है।
4: तो सर, आपने बताया अभी जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, उनके प्रयोग विधि के बारे में आपने बताया, और अब हम जानना चाहेंगे आपसे और किसान भाइयों, और किसान भाई भी आपसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि हम किन किन फसलों के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
5: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो जैव उर्वरक का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से किया जाता है और हर एक फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए मुख्यतः हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं और ये रिकमेंड करा जाता है, संशोधित किया जाता है कि जब भी हम राइजोबियम का प्रयोग करें उसके साथ में फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB का प्रयोग करना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए 2 जैव उर्वरक मैंने बताए, एक तो राइजोबियम है और दूसरा है PSB। और एजोटोवेक्टर का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली फसलें हों, धान्य फसलें हों, फूल वाली सब फसलें हों, फलों वाली सब फसलें हों। और इसके साथ में भी हम संशोधित किया जाता है कि PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि PSB का काम होता है पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराना। जब पौधों को फास्फोरस उपलब्ध ज़्यादा होती है तो पौधों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और साथ ही साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा होता है एजोस्पाइलम जैव उर्वरक।

0: है या फिर धान्य फसलें होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको किन किन फसलों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात और है जो कि होती है, क्या ध्यान रखें इनका जब हम प्रयोग करते हैं, तब ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमेशा बोला जाता है कि नाइट्रोजन वाले बायोफर्टिलाइजर के साथ में पीएसबी या फास्फोरस वाले बायोफर्टिलाइजर या जैवरो का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है, कभी भी रासायनिक खादों के साथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया डीएपी भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ हो जाती है उसकी और वो मर जाता है।
1: तो सर आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए और जितने भी बहनें हैं, किसान बहनें हैं मेरी, उन सभी के लिए सवाल है। और वो ये है कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ, यानी कि इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है?
0: देखिए, जैव उर्वरक आपको किसी भी जो रासायनिक खाद बेचता है या दवाई बेचता है उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं। और यदि आपको हमारे विश्वविद्यालय का लेना है तो हम लोगों के यहाँ पर भी, हम लोगों की जो प्रोडक्शन इकाई है, उत्पादन इकाई है, उसकी क्षमता 500 मेट्रिक टन है। 500 मेट्रिक टन आप जानते हैं कि बहुत होता है, तो साल भर जितना आपको चाहिए उतना उपलब्ध रहता है। तो हमारे यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बायोलैब है जिसके अंदर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। और आपको ये राउंड द ईयर कभी भी आप आए, किसी भी टाइम आए, किसी भी प्रकार का जैव उर्वरक लेना हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
1: तो किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम उन्नत कृषि में आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दी हैं। और आपसे आगे भी मुलाकात होगी, हमारे किसान भाइयों और बहनों से भी आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 वीपीडी यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें खासतौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है। लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं या फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा शायद, इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है, है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इंप्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है और क्योंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है। इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है। तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना। इसलिए नहाइए, पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए। और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही ये कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लग गए हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है। ऐसा नहीं है, आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे खास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ ख़ास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है, पीरियड्स है, आ तो रहा है ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एक आध दो महीने, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा, लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इशूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है। तो इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी। आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है। आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझिए कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए। आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब हैं, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की ज़रूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी ज़रूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए। जो भी मिथ्स हैं उसे ख़त्म कीजिए, और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है। थोड़े आराम की ज़रूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल। और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15-20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को, जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, आगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम यूरेट और पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गलाघोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज एक बार फिर आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु आप सभी के पास लेकर आई है एक अलग विषय और एक अलग चर्चा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशु पालन करते हैं, पशु पालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है। और इस वजह से काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं पशुओं को भी और पशु पालकों को भी। और इसलिए आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है।
2: देखिए, टीका वही चीज़ है जो जीव रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई जीवाणु है, विषाणु है, वो पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं, और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो टीका पशु के अंतर्गत पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है। उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है, रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है, लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। ये एक टीका हुआ। और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं। हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है।
0: अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी, जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का, तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, यानी कि विकसित होता है। और वो जब हमारे जो पशु हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में, या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई टीका के बारे में, और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें, और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है।
2: देखिए, वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
0: जी जी।
2: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत्यु हो जाते हैं। पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है। यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम से कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें।
3: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य है। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका। उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही। तो आप एक शेड्यूल बना लें या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें और उसमें ये चीज़ पशु जो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए और क्या जरूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की। और इसके बाद जब हम किसी भी चीज को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि उसके महत्व को समझे और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की। और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का महत्व क्या होता है।
2: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम एंटी सीरम कहते हैं। और कुछ ऐसा जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन वो बदलते रहते हैं, तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए।
3: तो यहाँ पर किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और महत्व को अगर बताया जाए तो एक ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पुनः टीकाकरण यानी कि उसके बाद जो एक लिमिटेशन रहता है उस टीकाकरण का, यानी कि समय समय पर आपको एक डेट दिया जाता है और उस डेट के बाद आपको पुनः टीकाकरण करवाना पड़ता है अपने पशुओं का। और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी यही है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं के अंदर उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया उद्देश्य और महत्व के बारे में टीकाकरण के। और पशुओं को स्वस्थ रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। आपके आप जितना स्वस्थ रहेंगे आपका पशु भी उतना स्वस्थ रहेगा, आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे जब पशुओं को टीकाकरण करवाया जाए तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम पशुओं को टीकाकरण करवाने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें।
2: देखिए, किसान बंधु के लिए सबसे ज़रूरी है कि पशु को पहचानना कि वह बीमार है या स्वस्थ है। जब आप पशु पालन करते हैं तो पशु के व्यवहार लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह बीमार पड़ गया, और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पशु बीमार पड़ा, आप उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु से बीमार पशु को अलग रखें, उसका खान पान, उसका देख रेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें, और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता, और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है, इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के ही समय अवधि पर किया जा सकता है,
3: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र अवधि होता है।
2: हर टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है। उसको सपोज कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका लगा दिए हैं, FMD में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। FMD रोग यदि देखा जाए, खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरियंट्स हैं, एशिया AO करके आता है। तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं, कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है, तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी है थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। आप कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और खासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार पशु का ना खरीदें जिस क्षेत्र में पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं, एक्सपायर्ड टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं बिल्कुल कम टेम्परेचर पर, उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
3: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
4: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों आप सभी का उन्नत कृषि में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, अध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब से आज हम बातें कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में, और बहुत सारे जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, आप सबों के सामने रखी हैं, और कुछ बातें और बाकी हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया था कि पशुओं को टीका देने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो अगर पहले की बात हो गई तो अब बाद की भी बात हो जाए, तो टीकाकरण कराने के बाद पशुओं को किस तरीके से रखा जाए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे।
5: बिल्कुल, आप ये तो इंश्योर कीजिए कि जहाँ पशु रखते हैं साफ सफाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि पशु का आप टीकाकरण तो कर दिए हैं, लेकिन फिर भी दूसरी बीमारी भी हो सकती है उसमें,
4: यानी कि साफ सफाई बहुत
5: उसका जो आवास प्रबंधन है, बिल्कुल आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पशु को साफ सुथरा रखें, और उसको जो आप खाना देते हैं वो कभी भी दूषित ना हो, कभी भी गंदा ना हो, कभी भी जो परचेज करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं, तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो, ऐसे खाना को दें, दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें। चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं, और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो, तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें, जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें। कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है, तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें, बछड़ा है बछड़ा को एक साथ रखें, जो गाय है उसको एक साथ रखें, बाछी को एक साथ रखें, अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं।
4: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं, छोटे और बड़े पशु जो होते हैं, उन्हें अलग अलग रखें, और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रखरखाव की, और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है, अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग विरोधी टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है, और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
5: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है, जो हो मतलब देखने को मिलता है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुरहा मुँहपका रोग, इसको खुरपका मुँहपका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से, यह विषाणु जनित रोग।
4: ये किस जानवर में देखा जाता है?
5: ये गाय और भैंस में देखा जाता है, बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है,
4: गाय और
5: भैंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको, यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है। इस बीमारी से गला में सूजन होता है, और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया। कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है, गला, इसलिए इसका नाम गला घोटू रखा गया है। यह जीवाणु जनित रोग है।
4: अच्छा,
5: ठीक है। इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, यह भी जीवाणु जनित है। यह भी गाय भैंस में होता है, यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसा सड़न सा रोग हो जाता है, मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है। अच्छा। इसलिए इसका इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पे चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है।
4: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है?
5: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है, और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता है। और बहुत ही संक्रामक बीमारी है, एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं। इससे इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है।
4: अच्छा।
5: यह जो समय से गर्भवती पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं। ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है।
4: इसमें
5: मृत्यु तो बहुत कम होती है, लेकिन यह जो है एबॉर्शन कॉज करता है। पूरा का पूरा एक किसान को जो नई गाय मिलती, बछड़ा मिलता, वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है। यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा। और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं।
4: यानी ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब।
5: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है, और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है। आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुरहा, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ी, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण करके हम अपने पशु को, अपने पशुपालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं। आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
4: और सर, इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
5: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है। यह पशुओं में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है। तत्पश्चात आप प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें, टीकाकरण कराएं। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं। मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू, हेमराजिक सेप्टिसीमिया। बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है। मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी, इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं।
4: पॉलीवेलेंट,
5: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है। आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है। यह भी गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में दिया जाता है और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं। इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए। यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात को रोकता है। जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में। यह फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। मेल में होता है या बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स, इस रोग में स्पोर का टीका दिया जाता है। एंथ्रेक्स का स्पोर टीका के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह टीका है, 1 मिलीलीटर टीका दिया जाता है।
4: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जो बहुत सारे रोगों के नाम बताए, और इसके साथ ही इन्होंने रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में टीकों के नाम भी बताए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो पशुपालक भाई हैं, अगर वो सफल टीकाकरण करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए?
5: बिल्कुल, सावधानियाँ ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है, और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
4: प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन
5: करते हैं, बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना, रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें, और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं, उसे आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य जांच
4: करवाएं, या फिर कुछ
5: जो भी ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी जरूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों में के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है, और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा
4: थनेला रोग
5: के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है हमने उस जीवाणु को पहचाना है। हमारे यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है, और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
4: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए, तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए, और उनके जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा।
5: बिल्कुल, हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसान बंधु कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है, और बस उससे कोई मतलब नहीं रहा, बांध दिए रस्सी में, बंधा हुआ है, और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर। ऐसा नहीं हो, आप पशु के साथ जुड़ें, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
4: लेकिन मनुष्य के जैसे जुबान नहीं है,
5: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है। आप उसकी आंख देख करके, उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है,

0: और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी। यह बरसात के सीजन में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर महीने में ये रोग ज़्यादा फैलता है, तो आप अपने पशु को इस समय में इस रोग से बचाएं और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएं और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन उसका शरीर
1: जो
0: में
1: पोषक तत्व उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है।
0: हाँ, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित समय अवधि पर जरूर करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी या फिर कहीं उसके बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की। तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए, तो आपको अगर आप नए पशुपालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: CIET NCERT प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दो गौरैया।

0: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई।
1: पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं।
2: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
1: अच्छा,
2: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
1: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
2: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
3: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ाते थे तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
2: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
3: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
2: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
3: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
2: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
3: ठीक है,
2: चल हट, हट, उड़।
3: ये अब नहीं निकलेंगी।
2: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
0: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को ठिठोली सूझती।
3: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
2: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
1: जी,
2: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
1: जी।
2: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
1: जी। अच्छा पिताजी।
0: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
3: अरे अरे,
2: अरे
3: क्या करते हो जी,
2: गलती से लग गया।
3: आराम से।
0: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
3: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
0: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
2: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
0: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
2: अरे
3: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
0: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
3: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
2: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
3: सुनो तो। रुक जाओ।
0: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ा और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
2: गई।
0: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
4: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी सुन कर ये।
0: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
3: तुम्हारे बस की नहीं है।
4: फिर कोशिश करता।
0: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
5: अब देखो,
0: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा चींची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
4: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
3: हाँ।
4: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
3: अरे हाँ बेटी।
0: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे माँ बाप? माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
3: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
0: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
2: अरे
0: वो उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
2: सच में

0: दो गौरैया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि संपादन, निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका पसंदीदा चैनल, जी हाँ 90.8। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, ड्रम सीडर से धान की बुआई के बारे में। और इस बारे में इस बहुत ही खास चर्चा को लेकर हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी। और मैं आपको बता दूं, ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से कृषि अभियंत्रण विभाग से। और आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंकज सर से हम कि धान की कौन सी प्रजाति, अगर हम ड्रम सीडर विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो धान की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहेगी?
3: कि धान की खेती दो तरह से होता है, जैसे असिंचित एवं सिंचित, दोनों परिस्थितियों में की जाती है। असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मुख्य जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों व पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेत में पानी भरने में व्यय यानी कि खर्च अधिक आता है
2: जी।
3: इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई की तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है और दूसरी विधि में खेत में कदवा करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। अब है क्या कि बहुफसलीय बिजाई यंत्र खेत को कल्टीवेटर या डिस्क हैरो के द्वारा अच्छी जुताई करने के बाद लेजर लैंड लेवलर यंत्र द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उपर्युक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है तथा खेत के समतल होने से सिंचाई के समय में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। बुआई के समय खेत अच्छी तरह जुताई किया हुआ होना चाहिए और भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बुआई करें। अब बुआई का समय, धान की सीधी बुआई का उपर्युक्त समय 20 मई से 30 जून तक होता है। मानसून आने से 10 से 15 दिन पहले है या मई के आखिरी सप्ताह से लेकर मध्य जून तक है। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे अधिक गहराई होने पर जमाव कम हो जाता है। अब आप का क्वेश्चन है कि प्रजातियां इसमें कौन सी लेना चाहिए और बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो लंबी अवधि की अगर धान आप अगर लेते हैं तो 145 से 60 दिन की अगर धान यहां पर ले सकते हैं, जो 20 मई से 10 जून तक आप इसमें बुआई कर सकते हैं। मध्य अवधि वाली अगर आप बुआई करते हैं, जो 135 दिन की अवधि होती है वाली बीज, जिसको आप 25 मई से 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और छोटी अवधि वाली अगर आप बुआई करना चाहते हैं बीज को, तो 115 से 120 दिन का वो फसल होगा, जो 1 जून से 30 जून तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। यदि 30 जून के बाद बुआई करनी है तो कम अवधि वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए, जैसे पढ़वात है, तुरंता है, ये सब वैरायटी आपको प्रजाति आपको ले लेना चाहिए।
2: जी, तो ये कुछ प्रजातियों के नाम है जो सर ने आपको बताया कि कौन कौन से आप प्रजाति लगा सकते हैं ड्रम सीडर विधि से अगर आप लगाना चाहते हैं। तो सर, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी होता है धान की सीधी बिजाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
3: पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ड्रम सीडर है क्या। ड्रम सीडर, अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बुआई किया जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है, ये तो हम पहले बता दिए हैं। खेत में पानी भरकर कदवा कर लें, यदि खेत में पानी भरा हो तो उसे निकाल दें। कादो करने के 48 घंटे पूर्व बीज को पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो दें। जूट की बोरी को भिंगोकर बीज को उपचारित करके लगभग 15 से 20 घंटे तक अंकुरण होने के लिए छोड़ दें। बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दें और इसे ड्रम सीडर में आधी आधी मात्रा भरकर आप कदवा किए हुए खेत में चला दें। बीज बोते समय खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, बीज को चिड़िया से शाम के वक्त बचाना चाहिए।
2: तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं ड्रम सीडर की जो आप बता रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है, कार्य क्षमता इसकी कितनी होती है।
3: देखिए, इस मशीन का बनावट एवं कार्य क्षमता, जैसे कि इसमें दो चक्का होता है, 4 से 6 तक वाली ड्रम इसमें हो सकता है, जिसे 4 ड्रम का अगर होगा तो ये 8 लाइन में बुआई करेगा, और 6 ड्रम का अगर आप लेते हैं तो आप उसमें जो है 12 लाइन में आपको उसमें बुआई होगा। लेकिन इसको एक हैंडी बनाने के लिए, जैसे कि आप इजी से अगर यूज कर सकने के लिए 4 ड्रम ठीक होता है। हाथ से खींचने के लिए हैंडल होता है। यंत्र का कार्य क्षमता 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकते हैं। आप जैसे पहले आप क्वेश्चन किए कि धान की सीधी बुआई क्यों, वर्षा एवं सिंचाई जल की कमी होता है, वर्षा का असमान वितरण और भूमि जल में निरंतर गिरावट हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य में निरंतर ह्रास हो रहा है, मृदा में दरारें फटना, सिंचाई नमी का तीव्र ह्रास हो रहा है।
2: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कार्य क्षमता और बनावट ड्रम सीडर मशीन की, और इसके साथ ही सीधी बिजाई के बहुत सारे लाभ हैं। तो सर, आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को।
3: धान की सीधी बुआई से लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कम जल की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व ईंधन की बचत होती है। आप जानते हैं कि 1 लीटर अगर आप डीजल जलाते हैं तो 2.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो वातावरण को गर्म कर रहा है, और आप उत्पादन के कुछ खर्चे में बचत होता है, किसान के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी, मृदा की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होता है, अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल की परिपक्वता अवधि में कमी होती है। वो कमी इस कारण से होता है कि आप जब कदवा करके जब बिचड़ा को आप जब खेत में लगाते हैं तो लगभग 6 दिन तक बिचड़ा जो है एक स्टैंडिंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो उसमें कोई तरह का बढ़वाड़ नहीं होता है, तो ये इसमें वो समय को काउंट किया जाता है। और मृदा जैव कार्बन में वृद्धि एवं मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, और मीथेन उत्सर्जन, जो कदवा आप करते हैं मीथेन उत्सर्जन में, उसमें आप कमी आता है, कदवा की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। और हमें एक कहना चाहेंगे कि इसमें कि पोषक तत्व भी कुछ प्रबंधन करना चाहिए। बुआई के समय में 50 किलोग्राम DAP बुआई के साथ तथा 25 किलोग्राम MOP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव 3 बार में देना चाहिए, एक तो 15 किलोग्राम बुआई के 15 दिन बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए, 30 किलोग्राम कल्ले निकलते समय, 45 किलोग्राम बाली निकलने के पूर्व प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व की अगर कमी दिखाई दे तो आप आयरन और जिंक 1% यूरिया और 0.5% जिंक और 0.5% फोरस सल्फेट के घोल में 2-3 बार 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करें
2: जी।
3: और इसमें जो ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, रिक्त स्थानों को भरना। तो बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद देखें कि यदि कहीं कहीं जमा ना हुआ हो और जगह खाली हो तो सिंचाई या वर्षा के समय उसी खेत में से जहां अतिरिक्त पौधे हों उखाड़ कर खाली स्थानों पर रोपाई कर दें, इससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
2: तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और अगले दिन अगले विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
4: क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
5: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
4: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
7: कौन सी कहानी टीकी?
6: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
6: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
7: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
6: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। वैसे तो पता है आप सभी को किसान भाइयों की, हमारे राज्य में धान की खेती बहुतायत में हो रही है, और अगर समय पर खरपतवार प्रबंधन ना किया जाए तो 50-70% तक उत्पादन में गिरावट दर्ज हो सकती है। तो ज़रूरी है कि खरपतवार का प्रबंधन किया जाए। तो डॉक्टर साहब आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि में।
11: थैंक यू।
2: और डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि खरपतवार प्रबंधन है क्या?
11: देखिए, खरपतवार प्रबंधन में अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी फसल हो, जितने भी उसमें अनवांटेड बीज हैं, जैसे कोई पौधा है, धान की हम कोई प्रजाति लगाए हुए हैं, उसके अलावा धान का दूसरी प्रजाति हो या कोई दूसरा प्रकार का पौधा हो, उसको हम खरपतवार की श्रेणी में लाते हैं। तो उसका सही समय पे उसका पूर्णतया नियंत्रण करना, जिससे कि मुख्य फसल पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े, हम उसको खरपतवार प्रबंधन में कर सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत सी विधियाँ हैं हमारे पास। कुछ एग्रोनॉमिकल मेथड हैं, सस्य वैज्ञानिक मेथड्स हैं, कल्चरल मेथड्स है, इंजीनियरिंग मेथड्स है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन हैं, खरपतवार नाशी हैं, इत्यादि बहुत सी विधियों का हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार के प्रबंधन के लिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि धान के खेत हमारे बिहार राज्य में 3.5 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में हो रही है, और अगर शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार का प्रबंधन ना किया जाए, इन खरपतवारों को समय नियंत्रण ना किया जाए, तो शुरू के 40-50 दिन का समय जो होता है, 40 दिन तक का जो समय होता है, वो बहुत ही क्रांतिक होता है। अगर इसमें हम इसका प्रबंधन कर देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और 40 दिनों तक हम खरपतवार को नहीं प्रबंधन कर पा रहे हैं तो उत्पादन में 40% से लेकर के 70-80% तक भारी कमी देखी गई है, उत्पादन में कमी हो जाती है। इसलिए इन खरपतवार का प्रबंधन ससमय करना बहुत ज़रूरी है।
2: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया किसान भाइयों और बहनों कि 40 दिन के अंदर खरपतवार का प्रबंधन हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उत्पादन में कमी आ सकती है, और अगर आप उत्पादन में वृद्धि लाना चाहते हैं तो खरपतवार प्रबंधन 40 दिन के अंदर कर दें। इसके बाद डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे खरपतवार प्रबंधन क्यों करना चाहिए?
11: देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो मुख्य फसल धान है या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन बढ़ जाती है। या धान की कोई पर्टिकुलर हम वैरायटी लेते हैं, उसके अलावा उसमें कोई पिछले साल का धान जो है झड़ करके उसमें जर्मिनेट कर जाता है या कोई दूसरी धान जर्मिनेट कर जाती है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। खरपतवार जो हमारे हैं, विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनका नियंत्रण करते हैं तो जो है हमारे जो फसल पर है जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि खरपतवार भी जो है प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं मुख्य फसल से, तो ससमय इनका नियंत्रण करने से हमारा जो है फसल को एक अच्छा वातावरण मिलता है और उत्पादन।
2: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, और इनसे हम चर्चाएं कर रहे हैं आज धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी, आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि,
6: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
7: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
7: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: तो इसका हल क्या है?
7: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
6: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आज हम बातें कर रहे हैं धान में खरपतवार प्रबंधन के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी। तो डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो कौन कौन से जो खरपतवार हैं वो धान में आते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
5: धान जो है खरीफ फसल है, जिसकी बुआई हम विभिन्न जिलों में मानसून के शुरुआत होने से लेकर के जुलाई 15 अगस्त तक कर लेते हैं। तो चूँकि खरीफ मौसम में खरपतवार बहुत अच्छे से उगते हैं और इनका ग्रोथ रेट जो विकास दर है बहुत फास्ट होता है, तो जितने भी खरीफ के खरपतवार हैं लगभग सभी आते हैं। इन खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बाँट सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें आपका गाजर घास है या ऐसे घास जिनकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं और लंबाई कम होता है। दूसरा ग्रुप होता है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार में अपेक्षाकृत देखा जाए तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो जनरली थोड़ा सा लंबा होता है और चौड़ाई इनका कम होता है। जैसे आप धान में देख लीजिए, सावा, सवई इत्यादि, ये सब प्रमुख हैं सकरी पत्ती के ग्रुप में। तीसरा ग्रुप हम बांटते हैं मोथा कुल के खरपतवारों का, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो 6 प्रकार के मोथा होते हैं, जैसे साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफार्मिस, साइप्रस एरिया, इस प्रकार के मोथा कुल के कुल 6 खरपतवार हैं जो इस सीरीज में आते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं तो जो हमारा खरपतवार नाशी दवाइयां हैं वो खरपतवारों के प्रकार के आधार पर भी हम देते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले ग्रुप के खरपतवार हैं तो उसके लिए हम 2,4-D या ऐसी दवाएं जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारती हैं वो प्रयोग करेंगे। सकरी पत्ती वाला खरपतवार, उसके लिए हमारे पास अलग दवाइयां होंगी, और सिर्फ मोथा कुल का खरपतवार, उसके लिए अलग दवाइयां होंगी। तब हम बात करते हैं धान में जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। चूँकि धान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे राज्य की, और ससमय इसकी बुआई किया जाए तो खरपतवार एक प्रमुख समस्या के रूप में आती है। खरपतवार का ससमय प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। अमूमन देखा गया है कि अगर हम शुरू के 40 दिनों तक खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हैं, अर्थात खरपतवारों का हम 40 दिनों के अंदर अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं, तो उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाती है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हम खरपतवारों को ऐसे ही छोड़ दें, 40 दिनों तक उसका कोई नियंत्रण ना करें, तो हमारे खेत में जो है 50-75% तक उत्पादन में कमी आ जाती है। तो हम बात करते हैं खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए जैसे हमने पहले बताया कि खरपतवारों को हम मुख्य रूप से 3 बड़े ग्रुपों में बांट सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार एवं मोथा कुल के खरपतवार। अब हम धान की आज अपने राज्य में 2 तरह से बुआई होती है। एक जो है धान की हम सीधी बुआई कर लेते हैं, तो उसमें खरपतवार नाशी दवाएँ थोड़ा सा दूसरी प्रयोग होती हैं, और दूसरा है रोपित धान, जिसको हम नर्सरी डालते हैं, नर्सरी के बाद हम मुख्य फसल में, मुख्य खेत में जो है 20-21 दिन बाद जो नर्सरी है और सीडलिंग है उसकी रोपाई कर देते हैं। तो चूँकि जो रोपित फसल है उसमें एक सेचुरेटेड कंडीशन होता है, उसमें हम धान में कदवा लगा देते हैं जिसको हम पडलिंग कहते हैं, पडलिंग करके उसको रोपाई करते हैं, तो खरपतवार उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं धान की सीधी बुआई, जो आजकल बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है अपने क्षेत्र में, राज्य में। तो धान की सीधी बुआई हम जब किए हैं या कर रहे हैं तो उसमें हमें खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए पहले जरूरी होता है कि हम खरपतवार प्रबंधन के विभिन्न जो विधियां हैं उनका प्रयोग में लाएं। तो सबसे पहले अगर हम धान में धान की सीधी बुआई करना है तो हमें ध्यान देना होता है कि हम जो है खेत की एक गहरी जुताई कर दें गर्मी में। जो ही हमारा धान रबी फसलें जैसे गेहूँ है या दलहनी फसलें हैं रबी की सीजन की, तो वो जनरली अप्रैल तक या मई के फर्स्ट सप्ताह तक जो है कट के खाली कर देते हैं खेत को। जो ही हमारा खेत खाली होता है गर्मी में गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है जो खरपतवार के बीज हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे चले जाते हैं। तो जब खरपतवार के बीज जो है एक बार जमीन में नीचे की सतह में चले जाते हैं तो उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, प्रकाश न मिलने से उनका जमाव नहीं होता है। तो पहला तो हमें खेत की गहरी जुताई करना है जिससे कि सरफेस लेयर पे जो भी खरपतवार के बीज हैं वो जमीन के नीचे चले जाएं। दूसरा जो पेरेनियल बीड्स होते हैं जो बहुवर्षीय खरपतवार हैं जैसे मोथा है, दूब है, ये सभी कास है, ये सभी जो है शकर से या उसकी गांठों से फैलाव करते हैं। तो जब हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं एक बार तो क्या होता है कि ये गांठे या जिसके शकर से हैं ये सब सूख जाते हैं और आगे खरपतवार का प्रेशर जो है मुख्य फसल में कम हो जाता है। तो ये जरूरी होता है कि सबसे पहले हम गर्मी की गहरी जुताई करें, उसके बाद हम खेत की जब बुआई कर देते हैं तो दूसरा विधि है धान की सीधी बुआई में हम ब्राउन मैन्योर का प्रयोग कर सकते हैं, या धान की सीधी बुआई जब हम करते हैं तो उसमें हम 25 से 30 किलोग्राम बीज धान का लेते हैं, उसी में हम 30 किलोग्राम ढैंचा का बीज भी मिला देते हैं। तो इसे क्या होता है धान और ढैंचा दोनों साथ साथ जमाव करता है। उसके बाद हम जब फसल हमारा 30 दिन का हो जाता है, 30 से 35 दिन का हो जाता है, उसमें हम सबसे सस्ती दवा जो है 2,4-D हम लेते हैं और 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, क्योंकि 2,4-D जो बाज़ार में है वो 50% का भी है और 38% का लिक्विड वाला भी आता है। तो हम सक्रिय तत्व की बात कर रहे हैं, 600 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, अर्थात अगर हम लिक्विड वाला 2,4-D लेते हैं तो जो बाज़ार का प्रोडक्ट आएगा वो करीब 1.5 लीटर हो जाता है, 1.25 से 1.5 लीटर हम प्रोडक्ट को लेकर के छिड़काव कर सकते हैं खड़ी फसल में, धान की खड़ी फसल में जिसमें ढैंचा का बीज हम लगाए हुए हैं। तो क्या होता है उस समय 30 दिन पर ढैंचा करीब 1 से 1.5 फीट का हो जाता है। तो ढैंचा का जब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा पौधा होता है, तो उसे बाकी जो खरपतवार हैं वो नहीं उग पाते, या उगे भी होते हैं तो बहुत पतले पतले रहते हैं। और 30 दिन पर 35 दिन पर हैं जब 2,4-D डाल करके उसको 800 से 1,000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसके बाद उसके फसल पर छिड़काव कर देते हैं, तो जो ढैंचा है, ढैंचा धीरे धीरे क्या होता है 24 घंटे में ही वो झुलस करके ज़मीन पर गिर जाता है। गिर जाने के बाद क्या करता है वो पतवार का काम करने लगता है, तो वो फिर जो पतवार का काम करता है तो शेडिंग इफेक्ट बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो खर पतवार ज़मीन में बीज अगर हैं भी उसके बीज तो वो जम नहीं पाते हैं। और शुरू के 30 दिन तक ऑलरेडी जो जमे हुए खरपतवार है वो ऑलरेडी बहुत पतले और कम संख्या में थे, तो 2,4-D के साथ जब हम ढैंचा पर देते हैं तो ढैंचा तो मर ही जाता है और उसको एक मल्च का काम करता है ज़मीन पर, तो आगे खरपतवार लगभग नहीं के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हम ब्राउन मैन्योरिंग भी कर लेते हैं और खरपतवारों को भी धान की सीधी बुआई में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशी दवाएँ हैं इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, चूँकि खरपतवार नाशी दवाएँ भी पर्यावरण को कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचाती हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग कम से कम करें, लेकिन अंततः मजबूरी में हमें खरपतवारनाशी दवाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि ये सस्ते भी हैं और प्रभावी भी हैं। तो इसके लिए जो प्रमुख रूप से खरपतवारनाशी दवाएँ हैं उसमें हम पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करते हैं। पेंडीमिथिलीन एक पीले रंग का लिक्विड आता है जो 30% का मौजूद है बाज़ार में, तो इसका जो सक्रिय तत्व लेते हैं हम लोग 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं वो प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि 30% वाला आता है प्रोडक्ट, तो बाज़ार का जो प्रोडक्ट आएगा विभिन्न नाम से आता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को हम बाज़ार का जो पेंडीमिथिलीन प्रोजेक्ट है उसका हम 3.3 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए लगता है, अर्थात बाज़ार का प्रोडक्ट जो है 1 लीटर से 1.25 लीटर प्रति एकड़ जो है प्रयोग कर सकते हैं। जबकि हमने जो सक्रिय तत्व बताया जो केमिकल रूप में पेंडीमिथिलीन होता है वो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है। तो इस प्रकार हम देखें तो सक्रिय तत्व 1 लीटर या 1 किलोग्राम पेंडीमिथिलीन लेते हैं, उसको 800 से 1,000 लीटर पानी में घोल लेते हैं, धान की जो सीधी बुआई किए हैं उसके 48 घंटे के भीतर यानी दो दिन के भीतर ही हमें प्रयोग करना होता है। ध्यान हमें रखना होता है कि हम जब नाजल का प्रयोग करें, जब हम कोई भी खरपतवार नाशी दवा प्रयोग करते हैं तो जो स्प्रे होता है उसका जो नाजल होता है वो फ्लैट फैन ही रखा जाता है। फ्लैट फैन से एक फ़ायदा होता है कि सभी जगह जो आपका खरपतवार नाशी दवा है वो बराबर मात्रा में गिरता है, बराबर मात्रा में स्प्रे होता है। और स्प्रे करते हुए हम पीछे की ओर हटते हैं। पीछे की ओर हम इसलिए हटते हैं क्योंकि जब जो ही हम दवा का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं ज़मीन पर बुआई के 48 घंटे के भीतर, तो वो जो है एक पतला सा लेयर बना देता है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगा लेकिन एक पतला सा बिल्कुल लेयर बना देगा ज़मीन पर। और जो ही खरपतवार अंकुरण करते हैं उस लेयर को छूते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम जो धान की सीधी बुआई है उसमें पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा सीधा बुआ हुआ धान लगभग 20 से 25 दिन का हो जाता है उसमें हम दूसरी प्रकार की खरपतवारनाशी दवाएं प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड। क्योंकि इन सभी दवाओं का प्रयोग हम खरपतवार तथा फसल की जमाओं के बाद करते हैं इसलिए हम इनको पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं। तो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड में हम प्रयोग कर सकते हैं, सबसे अच्छी दवा है बिसपायरीवेक सोडियम। क्योंकि बिसपायरीवेक सोडियम एक ऐसी दवा है जिसका मात्र 40 ग्राम सक्रिय तत्व, 40 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं और प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसको भी हम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के वहीं 20 से 25 दिन बाद हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इससे जितने भी सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं ये सब लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। सिर्फ मोथा जो है या मोथा कुल का दूसरा खरपतवार है तो ये नियंत्रण में नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पर हमें दूसरी दवा प्रयोग किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग पाइरोजोसल्फ्यूरॉन ले सकते हैं। पाइरोजोसल्फ्यूरॉन जो बाजार में साथी के नाम से भी उपलब्ध है और जो बिसपायरीवेक सोडियम हमने बताया वो बाजार में नामनी गोल्ड और ओडीसी के नाम से भी उपलब्ध है। क्योंकि वो 10% का आता है तो हमने बताया था बिसपायरीवेक सोडियम का 40 ग्राम सक्रिय तत्व लेना है, अर्थात जो बाजार का प्रोडक्ट होगा 10% वाला उसका 400 ml मात्रा हो जाता है प्रति हेक्टेयर के लिए। उसको हम 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उसका 20-25 रुपये छिड़काव कर देते हैं। दूसरी दवा हम बोल रहे थे पाइरोजोसल्फ्यूरॉन जो बाजार में साथी के नाम से उपलब्ध है, तो पाइरोजोसल्फ्यूरॉन का 20 ग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रखिए मात्रा बहुत कम है, मात्रा मात्र 20 ग्राम सक्रिय तत्व है और उसको 1 हेक्टेयर अर्थात 10 हजार मीटर स्क्वायर एरिया में या 2.5 एकड़ में आपको देना है। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले 20 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा जो है जो बाजार का प्रोडक्ट है साथी के नाम से वो 10% का आता है तो उसका 200 ml मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर पड़ जाता है प्रोडक्ट का। जो ब्रांड है जो प्रोडक्ट है साथी नाम का या और भी किसी नाम से ब्रांड से आएगा 10% का है अगर तो 200 ml प्रति हेक्टेयर लगेगा। इसको भी आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए और बुआई के बाद आप 20 से 25 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखिए चाहे बिसपायरीवेक सोडियम या पाइरोजोसल्फ्यूरॉन दोनों में से किसी एक को ही देना है और इसका छिड़काव करके हम जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं एवं साथी देने से क्या होता है जो मोथा कुल के खरपतवार है अगर नरम अवस्था में है मोथा तो लगभग वही 50 से 60% नियंत्रण में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम धान की जो सीधी बुआई है उसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों कभी कभी ये देखा गया है कि
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
8: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ?
5: अरे बचो,
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
8: Sir.
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर।
4: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगा।
5: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट

0: और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी जनाब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
6: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
6: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
6: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
6: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है।
2: गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
4: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 5 से 9 अगस्त के दौरान दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की और साथ ही मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। हालांकि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, धान की रोपनी का काम जितनी जल्दी हो सके अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही पूरी कर ले, नहीं तो पैदावार में 15 से 20% तक की कमी हो सकती है। अच्छी उपज के लिए धान की रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने नर्सरी में लगे पौधों का उपयोग करें और पौधों के बीच की दूरी घटाकर 15x15 सेंटीमीटर करें। धान की रोपाई के समय सामान्य से अधिक स्वस्थ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पौधों की संख्या बनी रहे और नमी की कमी से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके। जो अरहर या मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पारंपरिक धान गेहूं के फसल चक्र की जगह फसल विविधीकरण को अपनाएं और ऊपरी भूमि या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान की जगह आप अरहर लगाएं। अरहर की उन्नत किस्में जैसे मालवीय 13, IPA 203, पूसा 992, UPAS 120, राजेंद्र अरहर 1 बहार, ये किस्में आप लगा सकते हैं। बुआई के समय ध्यान रखें कि बीज दर में 15 से 20% की वृद्धि कर दे। आपको बता दें कि मेड़ नाली विधि से बुआई करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन अरहर की खेती मेड़ों पर भी कर सकते हैं और अरहर के साथ मिश्रित खेती भी अपना सकते हैं, जैसे अरहर मक्का अनुपात होगा 1:1, अरहर तिल अनुपात होगा अरहर का 2 भाग तिल का 1 भाग, और अरहर के साथ आप उड़द भी लगा सकते हैं, इसका अनुपात होगा 1:2, यानी कि 1 भाग अरहर का और 2 भाग उड़द का। और इसके अलावा भी कुछ वैकल्पिक फसलों को जैसे कि मक्का, मक्का की अच्छी किस्में हैं DKC 9081 और सूखा सहनशील हाइब्रिड DHM 117, HQPM 1, HQPM 5, शक्तिमान 1, शक्तिमान 4। वहीं आप रागी भी लगा सकते हैं, रागी की अच्छी किस्में हैं BLM 389, RU8, वांकुला, ये किस्में आप लगा सकते हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। मानसून के दौरान प्याज की नर्सरी को खरपतवार मुक्त रखें, जहां जरूरत हो वहां समय पर निराई गुड़ाई करें। किसान भाई बहनों, तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए नर्सरी क्यारी के ऊपर 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट जरूर लगाएं। मिर्च, अगात गोभी, टमाटर की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, ये समय आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300g फास्फोरस, 700g पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। ध्यान दें कि वर्तमान समय में केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई कर लें और लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे कि ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, इन किस्मों का आप चयन करें। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500g अरंडी की खली, 300g सिंगल सुपर फास्फेट, 100g यूरेट और पोटाश और 10g कार्बोफ्यूरान मिलाएं। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बेंडाइजिम 2g प्रति लीटर पानी से उपचारित करना ना भूलें। और टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है, तो आप टिश्यू कल्चर पौधों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक होता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के अगर लक्षण दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें और उनके पीने के लिए साफ और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इसे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
3: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं, उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोंटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है। पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
2: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्त चलित जो मशीनें हैं वो कितने तरीके मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्त चलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
3: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पीठ पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पीठ पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे तभी हम पीठ पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की असल शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
2: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
3: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं और जिनको धूल फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों की सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।
2: जी,
3: भुड़काव यंत्रों को हस्त चालित रोटरी या हस्त चालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्त चालित रोटरी भुरकाव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है
2: जी।
3: इसीलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह
2: जी।
3: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हत्थे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहां पे भी अलग से हम
2: डाल सकते हैं जी।
3: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं, और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकलकर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
2: जी।
3: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
2: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचालित, जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं, उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनके प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को जरूर अवगत कराएं।
3: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
2: यानी समय का बहुत महत्व है,
3: बहुत ज्यादा महत्व है
2: जी।
3: उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है ठीक है, अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
2: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
3: ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
2: जी,
3: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
2: सेट हो सकता है, चिपक सकता
3: हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से
2: जी।
3: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
2: जी,
3: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
2: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
3: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए। ठीक है, और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है।
2: जी, डब्बे पे भी लिखा होता है, एक उसमें कॉशन
3: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी उस तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
2: जी,
3: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर खुले में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
2: जी,
3: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
2: जाने अनजाने में उसको कोई
3: उसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
2: जी।
3: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि वो अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। ये नहीं कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा
2: जी।
3: कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
2: जी ना चलाएं
3: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
2: पड़े, फंस जाए अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
3: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
2: जी। तो किसान भाई ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में 2 या 3 बार या 5 बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
3: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर 1 यह है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए, हाँ हाथ हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके
2: जी,
3: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं, उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें
2: जी।
3: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
2: जी,
3: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए, उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें
2: जी।
3: अगर वो फट गया या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा
2: जी।
3: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें, ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है
2: जी।
3: फिर है हस्तदाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, 2/3 भाग तक ही भरना चाहिए
4: ताकि प्रेशर बने,
3: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो 2/3 से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्तदाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया हो तो
2: जी,
3: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
2: जी,
3: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
2: जी।
3: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
2: जी।
3: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं
2: जी।
3: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को खराब कर देगा
2: जी,
3: ठीक है। तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
2: बिल्कुल,
3: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के 2 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
2: जी,
3: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
2: जी,
3: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
2: बंद कर देगा
3: ठीक है। और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
2: जी,
3: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डी कार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें
2: जी।
3: सख्ती चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़ी देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को न जमने दें, ठीक है। अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
4: जी।
3: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग, जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
2: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्तचालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
3: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
4: जी।
3: फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को अब पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं, उपयुक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं।
2: जी, तो किसान भाई डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं। तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं, लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
2: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं। आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात न करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: तो मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
1: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है, और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन न समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है। होगी नहीं या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है, जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ के क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
0: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
1: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाव की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड